सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप

0: बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

सभी देवताओं में पूजित अग्रगण्य मंगल मूर्ति मनवांछित फल देने वाले सुख की वर्षा करने वाले सिद्धि विनायक भगवान गणपति के आइए हम सब मिलकर के भी द्वार चलें। उनसे बस यही काम छत्र छाया बना करके रखें।

खुदा बंदे करीम, हम तेरी दरगाह में सर झुकाए खड़े हैं। तू अपने बंदों पर रहमो करम की बारिश कर दे।

देवी माँ के अनेक रूप हैं। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत्तम में देवी को अनेक नामों से पुकारा गया है। महामाया के रूप में वही तृप्ति है, वही तृष्णा भी, वही हमारे कष्ट मिटाएगी, वही हमारे बिगड़े काम बनाएगी।

हे माँ, आपकी लीला अपरंपार है। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आज की वंदना में कलाकार थे बेला सुलाके, विपिन सचदेवा, महेंद्र कपूर, भाई रविंद्र सिंह रागी, अनुराधा पुडवाल और साथी। इसी के साथ आज की वंदना अब संपन्न होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: पूर्व काल में संयुक्त परिवारों में जहां एक ओर संस्कारों का पोषण होता था, वहीं गुरुकुल परंपरा, धर्मानुगामी पठन पाठन, संस्कारित और समाजोन्मुखी शिक्षा पद्धति से विद्यालयों में भी बालकों के जीवन मूल्यों का संस्कार पोषित होता था। परंतु आज की स्थिति इसके विपरीत है। सामाजिक संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना लाभ हानि का विचार करती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वे समाज की सेवा ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मूल्य का अवमूल्यन हो चुका है। एक वाक्य में कहें तो आज का समाज और समाज में रहने वाले व्यक्ति उच्च विचारों को छोड़कर, भावनाओं से मुंह मोड़कर, चिंतन को नकार कर एक मशीन के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे समाज का परिवेश, समाज की संस्कृति और संस्कार तथा मूल्य विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समाज का परिवेश पाश्चात्य अनुकरण से प्रभावित हो चुका है। आज आवश्यकता है कि हमारे उत्तम समाज के लिए नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पोषण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से किया जाए, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को प्रकृति से जोड़ा जाए, ईश्वर में आस्था, धर्म में निष्ठा, हाथों में परोपकार, हृदय में दया करुणा, सहयोग की भावना, वाणी में माधुर्य और देश हित सर्वोपरि, ऐसे मूल्यों का संस्कार देने की आज आवश्यकता है, जिससे मूल्ययुक्त समाज विश्व में अपना आदर्श स्थापित कर सके। इससे समाज में अपराध नहीं होंगे तथा विभिन्न प्रकार के संकटों से छुटकारा मिलेगा और समाज अपने लक्ष्य में सफल होगा। संस्कार युक्त समाज अपने लक्ष्य में सदा अग्रसर होता है। इसलिए कहा गया है कि हमारे ऋषि मुनि संस्कारित मूल्यवान जीवन निर्वहन करते हुए मोक्ष मार्ग पर गए और वही ही हम सबका लक्ष्य। संस्कारों के माध्यम से ही मनुष्य का जीवन सफल, धन्य और सार्थक हो सकता है। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो आज संसार में भ्रष्टाचार उन लोगों ने नहीं फैलाया जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं है, या पहनने को कपड़ा भी नहीं है, या रहने को मकान भी नहीं है। भ्रष्टाचार उन लोगों ने फैलाया है जिनके पास सब कुछ है और पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए समझना यह भी पड़ेगा कि मूल समस्या रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, मूल समस्या संस्कारों की है। वैदिक संस्कृति का मूल मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ ऐसी योजनाओं को भी हाथ में लेना था जिससे नव मानव का निर्माण संभव हो सके। जीवन मूल्यों को समृद्ध बनाने के लिए संस्कारों द्वारा मानव का निर्माण करना, सुसंस्कृत मानव बनाना था। जैसे बीज में वृक्ष समाया होता है, वृक्ष बीज का ही फैलाव है, इसी प्रकार संसार में सारे मनुष्य कर्मों में ही समाहित रहते हैं। मनुष्य के जो संस्कार बन जाते हैं, जो प्रवृत्तियां बन जाती हैं, जो स्वभाव बन जाता है, वह एक कर्म का परिणाम नहीं होता, अपितु भिन्न भिन्न कर्मों का परिणाम होता है।
0: ये था आज का चिंतन। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा।
2: आज जिस बीमारी पर हम या जिस समस्या को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं, उसका विषय है बढ़ती उम्र में नींद की समस्या और होम्योपैथिक चिकित्सा। हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु शेखर रथ, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक है, विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। नींद को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, विशेष रूप से जो उम्र अधिक हो जाती है, ओल्ड एज में ये समस्या ज्यादा होती है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति में नींद कैसी होनी चाहिए।
3: जिंदगी का 1/3 समय एक व्यक्ति का नींद में व्यतीत होता है। एवरेज 7 से 9 घंटा नींद होता है, एवरेज 8 आवर्स, रेंज 7 to 9 आवर्स पर डे। ये जब इंसान थक जाता है सेरोटोनिन बनता है बॉडी में, वो नींद प्रोड्यूस करता है, और हमारा शरीर पिनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जो सिर्काडियन रिदिन को मेंटेन करता है। सिर्काडियन मतलब दैनिक चक्र, जिसमें हमारा नींद, सोना, जागना, विभिन्न कार्यक्रम जो टाइम पर बॉडी में होता है वो सिर्काडियन रिदिन होता है। तो ये दोनों हार्मोन का बड़ा रोल होता है नींद में।
2: अच्छा,
3: जो आज के समय में जो वृद्धा लोग है उनको ये समस्या बहुत आक्रांत करता है, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसा अवस्था है जिस समय इंसान का रोजगार कम हो जाता है, इसका बीमारी बढ़ता जाता है, उसके ऊपर जो मनी का इन्फ्लेशन उसका समस्या आ जाता है, परिवार का बोझ बढ़ जाता है, ये सब स्ट्रेस इसको माइंड को इतना इफेक्ट करता है, अनिद्रा एक बहुत बड़ा बीमारी आ जाता है। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, आस्थमा एवं विभिन्न समस्या रोग इसको आक्रांत करता है, जिसके प्रभाव में भी ये समस्या बहुत गुणित हो जाता है।
2: डॉक्टर साहब, अनिद्रा की एक बात की जाती है, नींद ना आने की समस्या कई प्रकार की होती है, कुछ को कम नींद आती है, कुछ लोग बीच में जग जाते हैं या इस प्रकार की, ये कितने प्रकार की किस होती है?
3: प्रकार भेद के अनुसार ये अनिद्रा, यदि इसको हम टाइम ड्यूरेशन देखे, इसको एक्यूट एवं क्रॉनिक बोला जाता है। एक रात से लेकर कई हफ्ते तक नींद नहीं आना को एक्यूट इंसोम्निया बोला जाता है। ऐसे ही हफ्ते में 3 रात नींद नहीं आकर ऐसे यदि लगातार 3 महीना तक आता है, इसी को क्रॉनिक इंसोम्निया बोला जाता है। ऐसे ही कारण के अनुसार यदि नींद नहीं होने का कारण पता चलता है, इसको सेकेंडरी इंसोम्निया बोला जाता है। जहां कारण पता नहीं चलता है, इसको प्राइमरी इंसोम्निया बोला जाता है।
2: अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि नींद कम आ रही तो कोई बात नहीं चलता है, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3: अगर नींद नहीं हुआ, विभिन्न बीमारी उसको आक्रांत करता है, जैसे हाई ब्लड, उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, ऐसे मोटापा बढ़ जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि बीमारी आता है, उसका मानसिक कार्यदक्षता कम हो जाता है, उसका मूड फ्रेश नहीं रहता है, तो ये सब समस्या उसको आक्रांत करता है।
2: जी, अब व्यक्ति क्या करे?
3: प्राथमिक उच्चार कहने से पहले मैं उसको थोड़ा इसका कारण के संबंध में बताता हूँ, ताकि इसका प्राथमिक उपचार इसी अनुसार ही पालन किया जाएगा। अगर इंसान का कहीं दूर देश चला गया, इसको बोलते हैं जेट लैग, जो बहुत सारी भौगोलिक रेखा पार करके चला जाता है, वहां का जो समय का जो घड़ी का चक्र इंसान का अपना बॉडी का जो सिर्काडियन रिदम के साथ मैच नहीं करता है, तो कुछ दिन वहां अनिद्रा आता है। तो वहां जब कुछ दिन रहेगा, धूप को थोड़ा जाएगा बैठेगा कि चलेगा, और वहीं का लोकल टाइम के अनुसार वो सोएगा, तो ये एडजस्ट हो जाता है थोड़ा दिन में। दूसरा उसका जो कारण है, अनकंफर्टेबल बेड, अनकंफर्टेबल स्लीपिंग एनवायरमेंट। अगर बिस्तर सही नहीं है, और बिस्तर में जो खटमल है, कि मच्छर लगता है, कि वहाँ नॉइज साउंड ज्यादा होता है, कि यहाँ ज्यादा गर्मी है, कि ज्यादा ठंड है, कि वहाँ ज्यादा लाइट है, तो कि ज्यादा ऑफेंसिव जो दुर्गंध युक्त गैस है, तो ये सब जो जो फिजिकल प्रेजेंट का प्रभाव यदि अनिद्रा करता है, इस सब को दूर कर देने से तो वो निद्रा सही आता है। नेक्स्ट, यदि उसी का मानसिक कारण से होता है, जैसे कोई सोशल स्तर पर किसको ऑफेंस का शिकार होना पड़ता है, कि उसका डिग्निटी घट गया, कहीं उच्च पद में था चला गया, ये सब मानसिक प्रभाव, कि कोई व्यक्ति मर गया, तो मर गया तो पहले कुछ तो दिन आएगा, उसका इलाज भी होगा, नहीं तो धीरे धीरे उसका सेट हो जाता है, कि कोई बिछड़ गया, दूर हो गया, कोई डिसअपॉइंटमेंट आ गया कोई कारण से, ये सब मानसिक स्थिति सोशल स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में जो इसको अफेक्ट करता है, ये सब धीरे धीरे सेट हो जाता है कुछ दिन होने के बाद। अगर नहीं होता है, उसको मेडिसिन करना पड़ता है।
2: डॉक्टर हिमांशु शेखर रथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आने के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। सवेरे 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल। इसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। लखनऊ से ही सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान के 343वीं भाग संख्या। 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहतनामा। इसमें आज गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा इस विषय पर वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर कुलदीप सिंह। 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे 102.9 मॉर्निंग हिट्स। नई फिल्मों का आप आनंद ले सकेंगे इस कार्यक्रम में सवेरे 8:45 पर। 10 हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनहरा दौर। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सवेरे 10:30 पर। दिन में 11 धरोहर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटक रोशनी के दिए। 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन गीत आपके नाम। ईमेल आप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:10 पर। 1:15 पर लोक गीतों का कार्यक्रम होगा धरती गाती है। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी मधु वर्मा। 1:30 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा आंचल। इसमें आज चर्चा के अलावा बहनों के मनोरंजन के लिए लोकगीत भी सुनवाया जाएगा। 2:30 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5 हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कम्पेट कार्यक्रम आज शाम। 5:15 पर युवा दोस्तों का दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत और 6:20 पर आप सुनेंगे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। इसमें आज फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग इस विषय पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। साथ ही खन्ना फसलों के साथ गुलाब की खेती इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। मौसम की जानकारी भी आपको इसी कार्यक्रम में दी जाएगी और मनोरंजन के लिए आपको लोकगीत भी सुनवाया जाएगा। शाम 7 आप सुनेंगे विविधा के अंतर्गत एक वार्ता। विषय होगा सकारात्मक

पत्रकारिता आज की आवश्यकता। वार्ताकार होंगे आलमगीर मुजाहिद खां। 7:31 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी रुचि शुक्ला। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस। कलाकार होंगी गीतिका गुप्ता। और रात 10:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज 343वीं भाग संख्या।

सवेरा होते ही रावण एक बार फिर युद्ध के लिए आ पहुंचता है। वानर भालुओं की सेना विकराल रूप धारण कर उस पर टूट पड़ती है। विभीषण को रावण के न मरने का रहस्य मालूम है, उसकी नाभि में अमृत है। विभीषण से ये भेद पाकर श्री राम ने जैसे ही वाण संधान करना चाहा कि चारों ओर भयावह अपशकुन होने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की 343 विभाग संख्या। कलाकार थे रविंद्र साठे और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षी अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति।

0: अस्ति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्ते अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 7 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहतनामा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह चौहान से की गई भेंट वार्ता। विषय है गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपना ख्याल। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
2: आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में समय समय पर हम विभिन्न बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं और उनसे संबंधित विशेषज्ञ को बुला करके उसका निदान करते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं। आज हमारा विषय है मौसम के हिसाब से गर्मी के मौसम में कैसे स्वस्थ रहें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप चौहान, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं रामपुर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, गर्मी की शुरुआत होते ही लोग चिंतित होना शुरू हो जाते हैं कि अब गर्मी का मौसम है, कैसे समय पास होगा। और वास्तव में जब तापमान बढ़ना शुरू होता है तो लोग विचलित होने लगते हैं, कई कई कई टाइप की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इस मौसम में गर्मी की वजह से, थोड़ा सा बताएं।
3: जैसे हमारा शरीर जो है वो एक निश्चित तापमान रहता है हमारे शरीर में स्वास्थ्य के हिसाब से
2: जी,
3: और जब वो निश्चित तापमान में अंतर आना शुरू हो जाता है तो जो है दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। अब जैसे मौसम है, हमारे शरीर को एक ऑटोमेटिक तरीके से बना हुआ है, कुदरत ने ऐसा बनाया हुआ है
2: जी,
3: कि हर परिस्थिति को बहुत जल्दी एडजस्ट करता है। अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो उसको शरीर जो है हमारी अपने जो उसी जैसा बाहर उससे टेम्परेचर मिलेगा, तो अंदर से उसी हिसाब से मैनेजमेंट उसका हो जाता है टेम्परेचर के हिसाब से। और ठीक उसी तरीके से अगर सर्दियां शुरू होती हैं तो वो अंदर के जो तापमान मैनेजमेंट जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके हिसाब से मैनेज करता है
2: जी।
3: तो शरीर अपने आप में सक्षम है मौसम के अनुसार ढलने में।
2: लेकिन आवश्यकता से अधिक जब तापमान बढ़ने लगता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है शरीर में और कौन कौन सी समस्याएं हैं, यदि सावधानी व्यक्ति नहीं करता है तो उनसे ग्रसित हो जाता है।
3: बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि जो स्वाभाविक तापमान होता है नेचर के तरीके से, तो जो व्यक्ति नेचुरल लाइफ जी रहा है, जैसे कि एसी में नहीं रह रहा है, सिंपल जो है एडजस्ट पहले से वो अपने क्लाइमेट में रह रहा है जो नेचुरल है, तो उसको इतनी परेशानी नहीं होगी। चाहे प्रकृति कितना भी जो है टेम्परेचर को चेंज करे या फ्लेक्सिबिलिटी हो टेम्परेचर में, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम नेचुरल तरीके से अपनी जीवन शैली नहीं अपनाते हैं। तो ऐसे में एकदम से जब टेम्परेचर बदलता है तो जो है दिक्कत आती है, स्वाभाविक है।
2: घर से बाहर निकलना स्वाभाविक है क्योंकि कामकाज के लिए निकलना पड़ता है, ऐसे में क्या सावधानी बरतें। और पानी की चूंकि कमी रहती है और पानी अधिक पीने के लिए डॉक्टर कहते हैं, कितनी आवश्यकता होती है पानी की, और यदि पानी कम हो जाए शरीर में या पानी कम पिए व्यक्ति, क्या समस्या बढ़ती है।
3: पानी जो कि स्वाभाविक तौर पर शरीर में जो है अधिक जो अधिक मात्रा है वो पूरे शरीर में अगर देखा जाए टोटल तो पानी की मात्रा अधिक रहती है
2: जी।
3: और अब चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, देखो हर व्यक्ति को पता होता है कि उसकी शरीर की क्षमता क्या है। जैसे दो पहलवान हैं, एक पहलवान को अपनी क्षमता पता है, दूसरे पहलवान को अपनी क्षमता पता है। जब वो लोग लड़ते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार लड़ते हैं
2: जी।
3: इसी तरीके से जब हम चूँकि बाहर हमें काम भी करना है, कई बार ये देखा जाता है कि अभी इस इन दिनों जो गर्मी पड़ रही है उसका तापमान जो है 47 से 48 डिग्री तक है, और अगर हम पॉल्यूशन को भी जोड़ दें तो 50 तक भी पहुंच जाता है
2: जी।

0: ऐसी स्थिति में जब भी घर से बाहर निकलें तो एहतियात जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी ना हो पाए। तो अगर हम ये मैनेज करते हैं तो हम इस गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं।
1: अक्सर कहा जाता है कि घर से बाहर निकलो तो सावधानी बरतो, नहीं तो लू लग जाएगी। ये लू क्या चीज़ है, कैसे लगती है, कैसे व्यक्ति पहचाने कि उसको लू लग गई है, इस प्रकार की कोई समस्या हुई है?
0: देखिए, लू लगना ये होता है कि वही बात आ गई टेम्परेचर की। एक्चुअल में क्या है कि जब हम बाहर निकलें तो सावधानी कुछ होती हैं, और हमने पहले भी देखा होगा बुजुर्ग लोग सूती कपड़े की पगड़ी बांध के निकलते थे, और कुर्ता और पैजामा मतलब पूरा कवर्ड रहते थे। ऐसा नहीं है कि आप आधे बांह की जो है शर्ट पहन के जा रहे हैं, और कपड़े का चयन तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हम धूप से और छतरी या अगर संभव हो तो छतरी का प्रयोग करें, तो तेज धूप से बचने के लिए पहली बात है कि बचाव के साथ बाहर निकलें तो हम लू से बच सकते हैं। दूसरी बात है कि लू जब लगती है तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है एकदम से जो है असममित मतलब बैलेंस खो देता है, तो वो और ब्लड प्रेशर जो है
1: बढ़ने लगता है।
0: हाँ तो उसमें जो है घटने या बढ़ने मतलब नॉर्मल रेंज से गड़बड़ा जाता है, तो और पानी की कमी एकदम से होगी। तो ऐसी अवस्था में को मैं लू लगना ही होता है, जिसमें जो है उसे बचाव रखना जरूरी होता है। और इसके पहचान यही है कि मुंह में बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होगी होठों में, और आपको जो है शरीर की जो त्वचा है जैसे पेट को अगर हम चुटकी से खींचेंगे तो वो त्वचा जो है बहुत धीरे धीरे वापस जाएगी, यानी कि शरीर में पानी की कमी आ चुकी है। ऐसा लू लगने के कारण भी होता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि कामकाज खेतों पर करना होता है और खेतों पर धूप की बचाव के साधन भी कम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी पानी भी हमारे किसान भाइयों को कम मिल पाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। वहां सावधानी क्या बरतें ताकि इस समस्या से बच सकें?
0: किसान भाइयों से और हमारे जो ग्राम समुदाय के लोग हैं उनसे तो विशेष तौर से मेरा यही कहना है कि पहली बात तो है कि बीमारी से पहले उसका बचाव ज़्यादा उत्तम है। तो अगर कभी वो अगर वो घर से बाहर निकलते हैं खेत पे जाते हैं तो एक तो नंगे पैर ना जाएं, और कपड़े जो हैं पूरे मतलब
1: बांध
0: ढीले
1: के
0: ढीले कपड़े पहने, मतलब वो बहुत से चिपकने चिपकने वाले जो बॉडी से कपड़े होते हैं वो ना पहने, और कवर्ड हो पूरे फुल आस्तीन के ही, मतलब कमीज या कुर्ता हो और पैजामा हो, और सिर को जो है पगड़ी से कवर्ड रखें। इसके अलावा जब भी घर से बाहर निकले तो भोजन करके निकले, खाली पेट ना निकले, ये बहुत ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी धूप से जब जल्दी में आते हैं तो अचानक प्यास लगती है, और कभी कभी जितना पानी हो अधिक से अधिक पीने की कोशिश करता है व्यक्ति, तो ये है कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है?
0: हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि शरीर जो है एकदम से टेम्परेचर को बदलने की अवस्था में होता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए। तो जब भी एकदम से कोई धूप से बाहर घर के अंदर आता है, प्यास उसे तेज़ लगी होती है, तो उसे सब्र दिखाना जरूरी है, ताकि शरीर के जो है वो जब धूप से अंदर घर आया तो घर के ताप टेम्परेचर से नॉर्मल हो जाए, वो उसके बाद ही पानी पीना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वो नुकसान दे सकता है। इस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इस समय जो है एसी का प्रयोग बहुत हो रहा है, तो एसी से बाहर निकलते समय उससे पहले 5 मिनट पहले एसी को बंद कर दें, उसके बाद ही बाहर निकलें। और जब आपको अंदर जाना हो तो पहले आप नॉर्मल टेम्परेचर में रहें, उसको एसी को पहले चला दें, उसके बाद अंदर जाएं। तो ये कुछ चीज़ें भी ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि एसी का बहुत कम प्रयोग करें, इसलिए क्योंकि एसी जो है वो पानी को मतलब जो अंदर के क्लाइमेट में डिहाइड्रेशन पैदा करता है, तो आपके शरीर के अंदर भी डिहाइड्रेशन पैदा करेगा। तो अगर जो एसी में ज़्यादा रह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए
1: जी,
0: और एसी का प्रयोग भी कम करें।
1: बहुत अच्छी बात बताई है कि तापमान के बदलाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर अधिक तापमान से कम तापमान पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा रुक करके तब आए, अन्यथा शरीर को नुकसान हो सकता है। और कभी कभी अचानक ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर पेट में दर्द भी बढ़ जाता है, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। खान पान का भी जिक्र आपने किया, और ऐसे में खान पान में क्या सावधानी बरतें, क्या खाएं और क्या ना खाएं?
0: हाँ, खान पान बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें खान पान का इसलिए भी रोल है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि

0: ये गर्मी में जो है हमारे शरीर के अंदर का पानी जो है वो मैनेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि जो भी आप भोजन लें, जैसे हरी सब्जियां हैं, लौकी तुरई है और दालें हैं, ये तो आपको लेना ही है। इसके साथ साथ ऐसे फल हैं जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है और खरबूज है, ये जो वाटर लेवल जिन जिन फलों में ज़्यादा हैं उनका ज़्यादा सेवन करें। आम इन दिनों काफ़ी फ़ायदा करेगा, ये मौसमी फल है, उसका सेवन करें। पुदीने का अगर पानी हो और छाछ, ये इस्तेमाल अगर आहार में लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा।
1: शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम का अक्सर जिक्र किया जाता है। तो ये किस प्रकार से करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे और उनका मन भी अच्छा हो जाए?
0: हाँ, योग जो है वास्तव में एक अपने शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली बढ़ाने का सबसे स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीका है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि योग का मतलब कसरत है, तो मैं बता दूं कि योग कदापि कसरत नहीं है। योग तो एनर्जी जनरेट करने की एक युक्ति है। तो योग में क्या है, प्राणायाम जो है वो बहुत बेहतरीन, सरल और सहज है, कोई भी व्यक्ति एक बार सीखने के बाद कर सकता है और नियमित करे तो ज़्यादा बेटर है। योग से यह है कि आपका इम्यूनिटी, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, क्योंकि गर्मियों में जो है पाचन प्रणाली काफ़ी प्रभावित होती है, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम प्राणायाम के जरिए जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका जैसे कुछ जो आसन हैं वो हम करते हैं, तो वो हमारे शरीर को जो है इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत बनाता है,
1: जी,
0: तो वो उसे भी सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, प्राणायाम, खान पान और मौसम के हिसाब से दिनचर्या निभाएं तो इस गर्मी क्या, जाड़े क्या, हर मौसम में अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। गर्मी के मौसम में कैसे स्वस्थ रहें, इस विषय पर डॉक्टर कुलदीप चौहान जी आपने बेहतर जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी सुनने वाले इन बातों का ध्यान रखेंगे, जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो ये सावधानी बरतेंगे ताकि वो बीमार होने से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।
2: गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य का कैसे रखें ध्यान, आपने भी इस विषय पर डॉक्टर कुलदीप चौहान से की गई ये भेंट वार्ता सुनी। आपसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा।
3: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
4: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
3: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
4: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
5: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
6: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
7: से नो टू प्लास्टिक।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
9: मुझसे।
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
8: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700014242 पर।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की बनी मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर

0: AIRnews_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस में जल्दी ही प्रोसेसिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ वहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुईं। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान के मामले में कल पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी करके तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कल से प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। कल पहले दिन बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। वहीं आज से 3 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ये दवा पिलाएंगी। अभियान के पहले दिन कल विभिन्न जिलों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो से बचाव का संदेश दिया। गोरखपुर के सदर सांसद रविकिशन शुक्ल ने जिला महिला अस्पताल से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों पहले पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने गोरखपुर के नवाचार मैटरनल इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर टाइमली रेफरल एंड इंटेंसिव सर्विसेज मातृ सेवा का भी शुभारंभ किया। इस नवाचार के जरिए मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ

पल्स पोलियो अभियान आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सभी सुनने वालों को सुनील सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, हमें विश्वास ही नहीं आप इस समय सुबह उठ करके अपने दैनिक कार्यों से निपट करके आज पूरे दिन भर आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम आपको सबसे पहले निपटाने हैं, इसकी पूरी दिनचर्या आपके दिमाग पे होगी। हमारे बहुत से सामयीन ऐसे भी हैं कि जो कल थकान की वजह से आज हो सकता है कि वो रेस्ट करने के मूड में भी हों, और कुछ श्रोताओं के मन में ये भी चल रहा होगा कि आज किस तरीके के कामों को प्रायोरिटी दी जाए, कौन से काम सबसे पहले किए जाएं। यही सब बातें सुबह सुबह मन में आती रहती हैं और पूरे दिन भर चलते रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुबह की दिनचर्या बहुत मायने रखती है। सुबह आप क्या कर रहे हैं, कितने बजे सोकर उठ रहे हैं और उठकर कैसे अपनी सुबह बिता रहे हैं, सब आपके भविष्य को तय करने में अपना रोल निभाती हैं। सुबह जल्दी उठने के वैसे तो कई फायदे हैं, लेकिन जल्दी उठकर अगर सही काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु और महाज्ञानी सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने की अति महत्वपूर्ण बताते हैं। मेडिटेशन करने से मन न सिर्फ एकाग्र होता है बल्कि इसके अन्य भी कई एक फायदे होते हैं। मेडिटेशन का अभ्यास करना एक ऐसी साधना है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। खासकर सुबह ध्यान लगाने के बहुत सारे फायदे हैं जो हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी इसका फायदा पहुंचता है। अगर भविष्य में सफल होना है तो सबसे पहले मानसिक शांति और मन की स्थिरता बहुत जरूरी है। मन बड़ा चंचल होता है, जिसने इसे नियंत्रित कर लिया वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है और कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन साहब, ये इतना आसान भी नहीं है। मन की गति इतनी तेज होती है कि इस पर कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यही कारण है कि बड़े बड़े ज्ञानियों ने ध्यान को मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा टूल बताया है। ध्यान लगाने से मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन बड़े से बड़े फैसले करने में सहज और सक्षम होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो कितनी भी सफल क्यों ना हो जाओ, कोई फायदा नहीं है।

सुबह सुबह जो लोग प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन ना करने वालों के मुकाबले बीमारियों से बहुत अधिक दूर रहते हैं। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। सुबह सुबह आप जो भी करेंगे उसका असर आपके पूरे दिन पर रहता है। इसलिए अगर आप खुद से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद को जान सकें, तो सुबह ध्यान ज़रूर लगाइए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ये पूरा दिन आपको आपके कनेक्शन को बनाए रखेगा। ध्यान आपको स्वयं को बेहतर ढंग से समझने, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप खोजने, दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाओं और कार्यों को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

आपका मन कहीं और चला जाए तो खुद पर कभी भी कठोर मत होइएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि आपका मन कहाँ भटक गया। अपने इष्ट देव को इस विश्वास के साथ याद कीजिए कि वो हर समय आपके साथ है। आपके विश्वास बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे। श्रोताओं, आज 29 जून है। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत सरकार 2007 के बाद से हर वर्ष महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती यानी कि 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर मनाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में महालनोबिस के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस ने ही 17 दिसंबर 1931 को देश के पहले भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की नींव रखी थी। सांख्यिकी दिवस समारोह का उद्देश्य आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। साथ ही सरकार इसे लेकर जनता को यह समझाने का भी प्रयास करती है कि नीतियों को आकार देने और तैयार करने में सांख्यिकी कैसे मदद करती है। सामान्य तौर पर सांख्यिकी गणित का एक हिस्सा है जिसमें डेटा यानी कि आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण, उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र और समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, स्पष्टीकरण या फिर कहें व्याख्या की प्रस्तुति की जाती है। हालांकि सांख्यिकी का उपयोग केवल उन्हीं अध्ययनों में किया जा सकता है जिनमें तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करना होता है। सांख्यिकी आर्थिक योजनाओं और नीतियों को बनाने में मदद करती है। ये तथ्यों को सटीक और निश्चित रूप से प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सामाजिक सर्वेक्षण करने में भी मदद करती है। ये भी गणित का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन बहुत आसान हो जाता है। हमारे वो सभी साथी, वो सभी सामाइन जो गणित विषय में विशेष अपनी रुचि रखते हैं, वो सांख्यिकी को लेकर के अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसे चल रही हैं। सरकारी विभागों में, मंत्रालयों में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिलती है। इसके अलावा बैंक, बीमा और वित्तीय संस्थानों में भी डेटा विश्लेषक एवं जोखिम विश्लेषण के रूप में भी सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है। जो लोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों में जा सकते हैं, वो शोध और विश्लेषण कार्यों में भी इसका महाविद्यालयों में अध्यापन और शोध के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। आप तैयारी अच्छे से करिए, सांख्यिकी के रोल में अपना अहम योगदान दीजिए और भविष्य को आप अपने उज्जवल बनाइए।

बिल्कुल साहब, अगर आपके अंदर इस तरीके का कॉन्फिडेंस होगा तो यकीन मानिए जिंदगी में चाहे कोई सी भी परीक्षा हो आप उसमें निश्चित तौर से सफल होंगे। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, किसी भी पास क्या घटित हो रहा है या फिर इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं आज दर्ज हुई हैं, इसकी जानकारी भी आपको होना बेहद ज़रूरी है। आज आपको बताते हैं कि हमारे रामपुर और यहाँ के आसपास के हमारे वो छात्र जिन्होंने इंटर किया है या फिर इस वर्ष इंटर की परीक्षा उन्होंने दी है और वो अब आगे चलकर के स्नातक करना चाहते हैं, तो उसके लिए पंजीकरण की जो तिथि है वो 30 तारीख तक कर दी गई है। गुरु जम्वेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध रामपुर के सभी महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है। रजा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य जागृति मदान ने बताया कि अब छात्र समर्थ पोर्टल के माध्यम से 30 जून तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वो सभी छात्र जो 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के हैं और माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं

उनके लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की ऑनलाइन तिथि भी 31 जुलाई। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती अंजलि अग्रवाल ने बताया कि विद्यालयों में अध्ययनरत 5 से 18 वर्ष तक के छात्र छात्रा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक अब आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि परिषदीय विद्यालय अब खुल चुके हैं और सुचारू रूप से इन विद्यालयों में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है कि इस गर्मी की वजह से 1:30 बजे तक विद्यालय खुलना बहुत मुश्किल सा लगता है। इस गर्मी को देखते ही जनपद में जो हीट बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश के अनुसार जनपद में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक संचालित होने वाले समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक सहायता प्राप्त और सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन का समय अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा एक बात और भी आपके लिए जरूरी है कि बहुत से विद्यालयों में जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उसमें हाफ टी शर्ट या फिर कहें कि हाफ शर्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब फुल बाजू की शर्ट और पैंट पहनकर ही स्कूल आएंगे बच्चे। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थी फुल बहा की शर्ट व फुल पैंट पहनकर ही विद्यालय आएंगे। ये इसलिए कहा करा गया है कि मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए स्कूल के शिक्षक बच्चों और अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण और 11 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरू करवा है। जनपद में लगभग 1596 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें करीब 1,41,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के संचारी रोगों से बचाने के लिए परिषदीय विद्यालयों में जुलाई माह में विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान चलाया जाएगा। 1 से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण में 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी चलेगा। इसमें शिक्षक बच्चों व उसके अभिभावकों को दिमागी बुखार, जलजनित रोग, साफ पीने का पानी, शौचालय के प्रयोग, बुखार होने पर क्या करें क्या ना करें इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि आप अपने बच्चों को अब फुल बाह की शर्ट या टी शर्ट पहन करके ही विद्यालय में भेजिएगा। श्रोताओं, जो लोग शाहबाद की ओर जाना चाहते हैं या शाहबाद मार्ग से किसी अन्य जनपद में जाना चाहते हैं, मुरादाबाद है, बिलारी है, उनके लिए हम आपको बता दें कि कल थोड़ा सा रूट में परिवर्तन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को शाहबाद आ रहे हैं। ये उनका सरकारी कार्यक्रम है। वहां वो बहुत सी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके मद्देनजर देखते हुए रूट डाइवर्जन की व्यवस्था चौक चौबंद की गई है। रामपुर शाहबाद, शाहबाद बिलारी, इन मार्गों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। रामपुर से शाहबाद की तरफ जाने वाले वाहन जो बिलारी की ओर जाते हैं उन्हें शाहबाद बाईपास पुल के नीचे से मुरादाबाद होकर बिलारी की ओर भेजा जाएगा। अगर आप भी इस ओर जाने का अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसी के अनुसार अपने प्रोग्राम को अपना नाम दीजिएगा। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं आज 29 जून है और आज के दिन इतिहास में और भी घटनाएं घटित हुई। कौन सी हैं वो प्रमुख घटनाएं, आइए आपको बताते हैं। इवान विवोस्की के नेतृत्व वाली यूक्रेन की सेना ने 1659 में प्रिंस तुम्रेवकाय के नेतृत्व में रूसी सेना को युद्ध में पराजित किया था। यूनान, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया और उस्मानी शासन के साथ बुल्गारिया का युद्ध 1991 के बाद पूर्वी देशों के सहयोग संगठन कामकोन को 1991 में भंग कर दिया गया था। विश्व की प्रमुख कंपनी IBM द्वारा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर 2000 में निर्मित किया गया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कोलोनोसी उपचार होने की वजह से उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने 2002 में

ढाई वर्ष तक कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। भारत और अमेरिका में 2005 को समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ था। आज ही के दिन यानी कि 29 जून 2007 में सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप के दूसरे मैच में आंद्रे नील की गेंद पर वनडे कैरियर के 15,000 रन पूरे किए थे। भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीता था। दुनिया के पहले 2008 में बेटी को जन्म दिया था। इसके अलावा बात करें आज उन व्यक्तियों की जिनका आज जन्म हुआ, उनमें प्रमुख हैं हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक देवकीनंद खत्री का जन्म आज ही के दिन 1861 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं 1793 में हुआ था। इसके अलावा भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक रहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 1901 में हुआ था। कुछ आज के दिन दुनिया को अलविदा कह गए, उनमें प्रमुख भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक एवं प्रथम रक्षा मंत्री रहे सरदार बलदेव सिंह का निधन आज ही के दिन 1961 में हुआ था। श्रोताओं, ये थी इतिहास से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, और अब लेते हैं यहां पर एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।

कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से पुनः स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि परिषदीय स्कूल तो हमारे खुल चुके हैं और उनमें शैक्षिक सत्र भी आरंभ हो चुका है, लेकिन 1 जुलाई से माध्यमिक विद्यालय भी अब खुल जाएंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो ग्रीष्मकालीन आपको होमवर्क विद्यालय में सबमिट करना होगा और साथ ही अपने कैरियर को बनाने के लिए नई उड़ान भी बनना होगी। याद रखिए, हर नया सत्र अपने साथ नई सीख, नए अवसर और नई सफलताओं की संभावना लेकर आता है। छुट्टियों की मधुर यादों को संजोए भी रखिए, लेकिन अब समय है अपने लक्ष्य की ओर पूरे मन से आगे बढ़ने का। नियमित अध्ययन, अनुशासन, समय का सदुपयोग और शिक्षकों का सम्मान आपके जीवन में

स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज जितने भी काम आपने सोचे हों वो सारे काम आपके पूरे हों। और हाँ, दुआओं में हमें याद रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की सुनील सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार

0: प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल दैथिन स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता मिलने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112341444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगे।

0: की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
1: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहां दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशीबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर जरूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहां पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराहे रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाए अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिल की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम मुआहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, PM मोदी को सेशेल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन-उल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी मुहिदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: कार्यक्रम का अगला गीत विधु विनोद और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है जीरो से रीस्टार्ट।
1: इस अंधेरे में सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए आप सोचिए कि जब आपने अपना पहला सपना देखा था
2: कि मां मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, तो आप पूरा देश बेच डालूंगा। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। तू हंस के जी या रो के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है। जो झूठ के पीछे भागे तू, हर मोड़ पे झूठ को सहना है। जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है। चल फिर खुशियों से मिलते हैं, चल यार खुद से मिलते हैं, चल वापस उस जीरो पे चलते हैं।

एम संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। इस समय आप आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सचेत टंडन की आवाज में, फिल्म का नाम है सुखी।

आपने भी हरिहरन, गायत्री और साथियों को सुना। फिल्म थी समारा। कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जवान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार का।
2: जनपद हमीरपुर की राड विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 21 जून के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के तहत आए और उन्होंने

0: हमीरपुर की दोनों विधानसभाओं को 636.82 करोड़ की लागत की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री मुद्रा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कुल 12 लाभार्थियों को मंच से डेमो चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मान और प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड के लोग पानी और रोजगार की समस्या को लेकर पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन अब नमामि गंगे मिशन जल शक्ति के चलते हर घर नल जल से जल मिल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक माह में कम से कम 4 बार रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नामी गिरामी कंपनियां प्रतिभाग कर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। बिना किसी जात मजहब को दरकिनार कर सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर कार्य किया जा रहा है। जनपद हमीरपुर को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सौगात के तहत बेतवा नदी में 650 मीटर लंबा पीपा पुल बनाने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों को जाम की झाम से निजात के साथ 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों को भी सहूलियत मिलेगी और कानपुर जालौन जाने में भी सहूलियत रहेगी। सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने बताया कि मेरे द्वारा 4,16,00,000 की कार्य योजना बनाकर शासन को स्वीकृत के लिए भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है और मंजूरी मिल गई है। बरसात के बाद पैटून पुल का निर्माण कराया जाएगा। जनपद हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय 12वें योग दिवस को उत्साह और व्यापक जन भागीदारी के साथ राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम में मनाया गया, जहां बच्चे बूढ़े जवान सभी ने योग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, नोडल अधिकारी भूतत्व निदेशक माला श्रीवास्तव, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद सहित अन्य लोगों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल सांस्कृतिक धरोहर है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में प्रभावी माध्यम है। बुंदेलखंड के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधापूर्ण माहौल उपलब्ध कराने के लिए 31,48,00,000 रुपए की लागत से 2 भव्य व अत्याधुनिक छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावासों में रहने से बुंदेलखंड सहित अन्य जिलों के अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा की राह सुगम और आसान होगी। जनपद हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। वर्ष 2021 की अपेक्षा 2026 में लगभग 5% मतदाताओं की वृद्धि विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद हुई है। 2026 की मतदाता सूची में 34,495 नए मतदाता शामिल हुए हैं, वहीं 4,556 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम डिलीट भी किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष पुनरीक्षण डुप्लीकेट मतदाता सत्यापन के बाद अब जनपद हमीरपुर की नई मतदाता सूची में 7,28,518 मतदाता हैं, जिसमें 3,26,350 महिला मतदाता और 4,01,762 पुरुष मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनपद हमीरपुर में 7 विकास खंडों की 330 ग्राम पंचायतों में कुल 524 मतदान केंद्र और 1214 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जनपद हमीरपुर का किसान पारंपरिक खेती के साथ कैश क्रॉप की तरफ तेजी से रुझान बढ़ा है और फायदा भी मिला है। जिला उद्यान अधिकारी सौभाग सिंह ने बताया कि किसानों को भीमा सुबर प्याज की खेती करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें निशुल्क प्याज का बीज दिया गया, जिससे किसानों ने प्याज की खेती करके नासिक प्याज के ऊपर निर्भर न रहते हुए अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं।
1: NHRDF द्वारा उपलब्ध उच्च प्रजातियां का निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मुख्यतः एग्रीफाउंड लाइट रेड, भीमा सुपर, भीमा राज, भीमा शक्ति जैसी प्रजातियां किसान भाइयों को निःशुल्क दी जाती हैं, जिनका जमाव और उत्पादन दोनों ही बहुत अच्छा हुआ है।
2: हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
3: इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए DBA सभागार में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी बीमारियों के एक दर्जन से अधिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने परीक्षण किया। मेडिकल कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज रजत सिंह जैन ने फीता काट कर किया। इटावा में 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित समारोह में 14 टॉपर्स को 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। अन्य मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन लखनऊ से लाइव प्रसारण को भी देखा गया। विधायक सरता भदौरिया ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने भी छात्रों को मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के सम्मान की सीख दी। इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक जनपद एक नदी, डिजिटल लाइब्रेरी, जीरो पॉवर्टी अभियान समेत कई योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सिरसा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए फिल्टर चैम्बर प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन में नए पात्रों को शौचालय से जोड़ने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सामुदायिक शौचालय बनाने को कहा। 117 डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी पुस्तकें रखने और जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवारों को राशन, हर घर नल का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इटावा में उद्यमी संवाद कार्यक्रम हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि 12 साल में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। इटावा के अंगोछा, बेडशीट, खीर मोहन जैसे उत्पादों को भी नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि ODOP योजना में 2000 लोगों को टूल किट, विश्वकर्मा योजना में 5,805 को प्रशिक्षण और युवा उद्यमी अभियान में 1,937 युवाओं को 74 करोड़ से अधिक ऋण मिला। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने भी युवाओं से नवाचार के साथ आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में लाभार्थियों को ऋण चेक और टूल किट वितरित की गई। इटावा पहुंची महिला कल्याण मंत्री बीबी रानी मौर्य ने केंद्र की 12 राज्य और 9 साल के सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, अपराधी जेल में है, महिला सुरक्षा प्राथमिकता है, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इटावा में यमुना और सिरसा नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने बड़ी पहल की है। DPRO रोहित कुमार ने बताया कि यमुना किनारे के 10 गांव में फिल्टर चैम्बर बना दिए गए हैं। 10 ग्राम पंचायतों में 16 फिल्टर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12 तैयार हो चुके हैं। सिरसा नदी का जीर्णोद्धार भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से यमुना और सिरसा नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा और गांव का गंदा पानी नदियों में जाने से रोका गया है।
4: हमारे 10 गांव से जिनका गंदा पानी यमुना नदी में जा रहा था, तो जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में उनमें हमने फिल्टर चैम्बर बनाए गए। 10 गांव जो हमारे थे कवर किए गए, अब उनमें जो है पानी साफ तरीके से लगभग जा रहा है।
3: जनपद इटावा में 285 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 21 राजकीय, 54 सहायता प्राप्त और 210 वित्त विहीन विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में 1,29,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जनपद में 5 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। इटावा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,31,97,000 रुपए कीमत के मादक पदार्थ नष्ट किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 7 केसों से जुड़ा 1,772 किलो गांजा चरस डोडा कानपुर देहात के अधिकृत प्लांट में जलाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई। इटावा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने यह कार्रवाई की। NDPS एक्ट के तहत विभिन्न थानों पर पंजीकृत 7 अभियोगों से संबंधित कुल 1,772 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहुंचे ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने नुमाइश पंडाल में पहुंचकर योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए यह प्रारंभ किया है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के बाद इटावा प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी संगठनों और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कोचिंग मॉल और प्लाजा में फायर सेफ्टी मानकों का 100% पालन हो, शॉर्ट सर्किट रोकने को अच्छी वायरिंग MCB लगाएं। SSP ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्वामी विवेकानंद का प्रेरक प्रसंग।

0: यह था कि इस प्राच्य सन्यासी ने स्त्रियों को पहले स्थान दिया था और सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानकर सबका स्वागत किया था। भारतीय संस्कृति में निहित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को सूझा नहीं था इससे पहले। इस बात का अच्छा असर पड़ा, जनता मुग्ध भाव से उनको सुनती रही। बोलने के लिए निर्धारित 5 मिनट की अवधि कब बीत गई, लोग मंत्रमुग्ध से बंधे बैठे रहे और उनसे बोलने के लिए अध्यक्ष कार्डिनल गिबन्स ने अनुरोध किया। स्वामी जी 20 मिनट से भी अधिक देर तक बोले। स्वामी जी की सारे अमेरिका में धूम मच गई। अखबारों ने अपने अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा कि आज तक अमेरिका की धरती पर ऐसा कोई अद्भुत महापुरुष नहीं आया। देखते ही देखते उनके हजारों शिष्य बन गए। और तो और, सम्मेलन में कभी भी शोर शराबा मचता तो ये कहकर श्रोताओं को शांत कराया जाता कि आप चुप रहेंगे तो स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान सुनने का आपको अवसर दिया जाएगा। सुनते ही सारी जनता सांस रोककर बैठ जाती। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति सर्वधर्म संभाव का अनुपालन करती है, किसी की निंदा या अवमानना नहीं। इस तरह से इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समुद्र पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई थी। स्वामी जी के अमेरिका प्रवास की ही बात है। एक दिन वो बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक अंग्रेज महिला की उन पर नजर पड़ी। उसने स्वामी जी को गौर से देखा, इटलाती हुई बोली, आप अन्यथा न ले तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं। स्वामी जी बोले, हाँ हाँ जरूर प्रश्न पूछिए। उसने कहा, स्वामी जी आपका सारा परिधान तो भारतीय है, पर आपके कपड़े के जूते भारतीय नहीं है, फिर आपने ये क्यों पहन रखे हैं? स्वामी जी सहजता से बोले, ये जूते जिनकी देन है, मैं उन्हें यहीं तक रखना चाहता हूं, मैं इसीलिए इन्हें पहनता हूं। महिला शर्म से खड़ी हो गई। कहां तो चली थी स्वामी जी को भारतीयता का पाठ पढ़ाने, पर उसे अब अपनी श्रेष्ठ जाति की महत्ता का पता चल गया था। स्वामी जी ने अपने संस्मरणों में जीवन की एक सीख भरी घटना का भी उल्लेख किया है। वो बनारस की गलियों से निकल रहे थे, तभी एक बंदर उनके पीछे दौड़ा। स्वामी जी भागने लगे, बंदर उनके पीछे पड़ गया। सारा दृश्य देख रहे एक साधारण से व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी भागते क्यों हो, पीछे मुड़कर मुकाबला करो। स्वामी जी पीछे मुड़कर खड़े हो गए, बंदर भाग खड़ा हुआ। स्वामी जी लिखते हैं कि इस घटना का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, एक साधारण से व्यक्ति ने मुझे सीख दी।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद का प्रेरक प्रसंग। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किया जाएगा।

लिए पेश कर रही हूँ एक दिलचस्प और सबक आमोज दास्तान, जिसमें इश्क, वफा, आजमाइश और किस्मत के अजीब रंग नुमाया है। ये किस्सा है एक ऐसे शहजादे का जो मोहब्बत की शिद्दत में दुनिया से बेनियाज हो गया, और एक दरवेश का जिसने उसके दर्द को अपना दर्द समझकर उसकी मदद का अहद किया। तो आइए सुनते हैं दास्तान बाग बहार का अगला हिस्सा, सैर दूसरे दरवेश की।

पहले दरवेश की कहानी खत्म हुई तो दूसरे दरवेश की बारी आई। वो चारों के दरमियान बैठा और बोला, ऐ यारो, इस फकीर का माजरा सुनो। मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो। जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपटला दवा सुनो। दूसरा दरवेश अपनी दास्तान

अभी आप सुन रहे थे जीएन गोस्वामी से राग छाया में उनका बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पे थे मुन्ने खां। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

सभी सुनने वालों को सुनील सक्सेना का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विरक, जीतेक विरक और मीका विरक, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, यहीं से ही डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया शुएब खान, पोत्रा से मुस्तफ़ा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके बहुत सारे साथी, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत एकांश गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी धुनी गवाणकर और इनके बहुत सारे साथी, बस्तौर जिला मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकाश सैनी, मानवी, तक्ष, विक्की, रुद्र, छवि, काव्य, खमानी सिंह, मझौली से हीरावती देवी और इनके परिवार के सभी सदस्य, भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल पोहरकार, अंश पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार, लेवाखेल मोहल्ला चांदूर विश्वा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी, संगमित्रा श्रोता संघ पोफाली जिला जमतमाल इथुन से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर, वंदना शुक्ले, अर्पिता, समस्त सिंगण परिवार के लोग। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है राजा और रंग। आप सभी की फरमाइश आप सभी के रेडियो सेट पर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर मोहल्ला हलवाईवान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खां, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास रामपुर से गज्जन खां, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलफशाह, शहनाज बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और इनके साथ में हैं हबीब अहमद इदरीसी। जरूर फरूर महाराष्ट्र से बाबा साहब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानिरे, कार्तिक सुब्राजन और इनके बहुत सारे साथी। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, साथ में इनकी वाइफ नगमा नाज मंसूरी, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और आशु भाई। मोहल्ला मज़ार चांद शाम मियाँ रामपुर से मोहम्मद रमज़ान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, आशु भाई, बहन अनमता राहिमीन और साथ में हैं रफत साहब। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम थापा, दीपा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वरी डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, अल्लाह उस्मा बेलदार। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन, नाजिम अली और इनके बहुत सारे साथी। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। परीमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती सुहागी प्रयाग चौधरी। पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या प्रियंका, बीटी बाड़ोदे, चंद्रप्रभा बाड़ोदे और इनके परिवार के सभी सदस्य। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमसू से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। जतुका किशनपुर से आलम दिशकल, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही और साथ में इनके फिरोज आलम, नाज परवीन। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, निरम गुड़िया, शेब खान। सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी, साथ में इनके परिवार के सभी सदस्य। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और आशु गौतम। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है आशा भोसले को। फिल्म का नाम है गौतम गोविंदा।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निबान शर्मा। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और इनके साथ में है मुस्कान मालाकार। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गा राम साहू और इनके बहुत सारे साथी। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड बंद्रा नगर इंदौर से राम लक्ष्मण और इनके परिवार के सभी सदस्य। अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, यहीं से ही संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी और इनके बहुत सारे साथी। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, आशु नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, पवन कुमार शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख। कुवात बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। नूर महल महसूल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्बिल बाबू। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परिसंजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक महिंग मूड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूड़त। पुणे से पंकज बाड़ोते, आर्या प्रियंका, बीटी बाड़ोते, चंद्रप्रभा बाड़ोते। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबासेर। एमआईडीसी चंदन नगर सोतारा से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे और श्रमीण वाघमारे। कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्वी चौहान, अंकिता चौहान, अनिकेत चौहान, माए चौहान और इनके बहुत सारे साथी। बीट शहर से प्रकाश पगरिया, पराग पगरिया, प्रदीप पगरिया और केशव पटेल। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।

कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे खुर्दी रोड मानपुर से, विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद डोगर गांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मे गजबिये। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है कर्तव्य।

इसी गीत के साथ ही आज का आपकी अनुरोध पर कार्यक्रम समाप्त करने की सुनील सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरा दौर।

आज के इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं 60 के दशक के कुछ सदाबहार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है दोस्ती।

आपने भी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुना। फिल्म थी दो रास्ते। कार्यक्रम के अगले गीत में मोहम्मद रफ़ी का साथ दे रही हैं आशा भोसले। फिल्म का नाम है राम और श्याम।

आपने भी लता मंगेशकर को सुना। फिल्म थी, उनका अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है संगम।

अभी आप सुन रहे थे सुनहरा दौर में 60 के दशक के फिल्मी गीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक जिसका विषय है रोशनी के दिए।

0: चंपा, ओ रे चंपिया, कहाँ चली गई रे चंपा? अरे यहाँ आंगन में भी ना ही है, तो फिर गई कहाँ? कुइया पर से तो मैं ही आ रही हूँ। फिर चलो दद्दा से ही पूछो। दद्दा,
1: हाँ?
0: ये चंपिया सुबह सुबह कहाँ चली गई?
1: अभी तो यहीं थी।
0: यहाँ तो कहीं नहीं है, मैं तो ओसारे से लेकर आंगन तक सभी जगह देखा ही दद्दा।
1: अरे किसी काम से छत पर तो नहीं चढ़ी बैठी है?
0: ना, वहाँ भी सब सूना सपाट पड़ा है।
1: हैं? पता नहीं इधर तेरी सहेली को क्या हो गया है, जब से ससुराल से आई है बड़ी चुप चुप रहने लगी है। जरा पूछ के तो देख।
0: ओहो, मैं समझ गई।
1: क्या समझ गई?
0: अब तुम्हें क्या बताएं दद्दा, जरूर चीचा की कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई होगी, बस इसी से। पर गई कहाँ? कहीं पीछे की बगिये में तो नहीं बैठी अपनी रात रानी के नीचे?
1: हो सकता है, पर कह देना उससे शंकर मिला था, अभी रात को आया है शहर से, जमाई बाबू से भेंट कर आया है, सो सब राजी खुशी है।
0: अच्छा दद्दा, देखो तो वो महारानी है कहाँ। अरे चंपा, तू यहाँ बैठी है अकेली, मैं कब से तुझे खोजती फिर रही हूँ, चल झूठी कहेगी। तेरी सो पुष्पा रज्जू बसंती सबको पनघट पे छोड़ के भागी चली आ रही हूँ तेरे लिए।
2: क्यों?
0: अरे क्यों क्या, शहर से वही बड़ी वाली मोटर आई है, वो का कहे फैमिली प्लानिंग वाली। हाय दैया, कैसे बड़े बड़े रंगीन फोटो लटक रहे हैं, और वो भोपू से ऐलान भी हो रहा है कि शाम को बायोस्कोप दिखाएंगे, चल कहीं आगे ना निकल जाए वो लोग।
2: मैं नहीं जाती।
0: चल ना, गांव के सभी लोग तो जुटे हैं वहाँ, बड़ी चहल पहल हो रही है।
2: कहा ना, मेरा मन नहीं करता।
0: हाँ री, अब तेरा मन क्यों करेगा, अब तो तू शहर वाली जो हो गई है ना, लगता है 4 दिनों में ही जिज्जा ने अपना जादू चला दिया है तुझ पर। अब तुझे क्यों अच्छे लगे ये गांव गवई के खेल तमाशे, अब तो तू रोज हाल में बैठ के नई नई पिक्चरें देखेगी जिज्जा के साथ। हाय, तुझे कितना मजा आया करेगा ना। क्यूरी, तुझे कौन सा हीरो सबसे अच्छा लगे है? मैं तो जितेंद्र की फैन हूँ, कैसा स्मार्ट लगे है कि जी करे।
2: तो फिर डाल देना जाके उसके गले में बहे, कौन मना कर रहा है तुझे।
0: हाय दैया, कैसी बेशरम हो गई है तू। क्यूरी चंपा, गए हैं शहर में सांझ होते ही दिवाली से जगमगाने लगे, और दिन से भी कहीं ज्यादा उजाला हो रात में, हाट बाजार भी एक एक दो दो बजे तक खुले रहे।
2: हाँ, तेरे जीजा भी बता तो रहे थे।
0: हाय दैया, तो लोग बाग सोते कब होंगे, और मेरी लाडो क्या क्या बता रहे थे हमारे जीजा।
2: मैं नहीं बताती, मुझे नहीं मालूम।
0: कैसे लजा रही है हमारी बन्नो रानी। मैं बताऊं, जिज्जा ने घूंघट उठा के कहा होगा, चंपा तू तो बिल्कुल पूनो की चांद है, तुझे पाकर तो मैं निहाल हो गया, अब तो मैं अपने दिल की प्यारी को राजरानी बना के रखूंगा, और फिर कमर में हाथ डालकर।
2: हाय राम, तुझे ये सब कैसे मालूम, तू कोई अंतर्यामी है क्या?
0: यही समझ ले चंपा, सचमुच तू बड़ी भाग वाली है। जरूर पिछले जन्म में तूने बहुत पुण्य किए होंगे जो ऐसा अच्छा घर वर मिला।
2: हाँ सो तो है कमली, तेरे जीजा सचमुच बहुत अच्छे हैं, जी जान से चाहते हैं मुझे। मैं तो ना मन ही मन बहुत डर रही थी, लेकिन लेकिन उनसे मिलने के बाद तो
0: क्या हुआ, उनसे मिलने के बाद सारी दिन दुनिया ही भूल गई क्यों? चल अब तेरा प्रेम पुराण फिर सुनूंगी फुर्सत से, इस बखत तो चल मेरे साथ, वहाँ बैठी बैठी सब जनी मुझे जी भर के गलिया रही होंगी। दद्दा, चंपा मेरे साथ जा रही है, संध्या तक लौटेगी, तुम फिकर ना ही करना, मैं खुद छोड़ जाऊंगी, चल अब तो जल्दी से चल।
2: हाँ चल।
1: बिटिया, अरियो बिटिया, चिट्ठी है तुम्हारी, ले लो बिटिया।
3: आती हूँ काका।
2: लो, कहाँ से आई है काका?
1: कानपुर से है। क्योरी, तेरा दूल्हा भी तो कानपुर में ही काम कर रहा है?
2: हाँ काका, ये तो बिजली के दफ्तर में काम करे हैं।
1: अच्छा अच्छा, अब भगवान खूब तरक्की दे। अरे तेरे दूल्हा की पहली पहली चिट्ठी लाया हूँ, तो क्या ऐसे ही खाली लौटा देगी अपने काका को? ला जरा मुंह मीठा तो करा।
2: तुम यही खाट पर बैठो काका, मैं अभी शरबत लाई।
1: दद्दा नहीं दिखाई दे रहे, कहीं गए हैं का?
2: मास्टर साहब के पास गए होंगे, बस एक वो ही तो ठिकाना है उनका।
1: वैसे मास्टर आदमी वाकई बहुत अच्छे हैं।
2: मैं अभी आई काका।
1: ओहो, पैर दुख गया आज तो, पर अभी तो ये इतनी सारी चिट्ठियां बांटने को पड़ी हैं, लगता है ये सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, जैसे भगवान की मर्जी।
2: लो ये लो काका शरबत।
1: जीती रहो बिटिया। क्यों री, कानपुर कब जा रही है?
2: जब जेल निवाने आ जाएंगे काका तभी जाना होगा।
1: हाँ सो तो है, पर शहर जाके जरा होशियारी से रहना बिटिया।
2: वो क्यों काका?
1: ये शहर ऊपर से देखने में ही इतने ठाट बाट के लगे, पर अंदर से सब ढोल में पोल हो रहे।
2: सो कैसे काका?
1: अरे बिटिया वहाँ के लोग भोग सब टेढ़े मेढ़े हो में।
2: अच्छा?
1: हमारी तरह सीधी सच्ची ना होती वहाँ की जिंदगी। अब चाहे रूखी सूखी खा के गुजारा करें, पर हमारे अंदर मोह ममता तो है। शहर में तो कोई अपने पास पड़ोस की भी खोज खबर ना रखता।
2: अच्छा तो क्या शहर के लोग हमारी तुम्हारी तरह नहीं होते हैं काका?
1: तूने वो सिनेमा का गाना तो सुना होगा, ये शहर का बाबू छैला, तन का उजला मन का मैला, सो वहाँ तो सब माया ही का ही काला खेल है। तू जाएगी तो अपने गांव की थोड़ी सी मिट्टी भी बांध के ले जाना।
2: क्यों काका, क्या वहाँ मिट्टी भी मोल मिलती है?
1: यही तो बात है बिटिया, वहाँ मिट्टी तो क्या धूप हवा पानी तक का मोल भाव होवे। पैसा होए तो आदमी का खून और जान भी खरीद लो।
2: हाँ तब तो सचमुच बड़े खराब होते होंगे वहाँ के रहने वाले।
1: ना ऐसी कोई डरने की बात ना है, बस जरा आँख कान खोल के रही हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वैसे तो अब हफ्ता 10 दिन में फेरा होता ही रहेगा तेरी चिट्ठी पत्री के कारण। क्यों
2: काका तुम भी बस। अच्छा राम राम काका।
1: अरे बिटिया सुनियो तो सही।
2: क्या बात है काका?
1: ये चिट्ठी तुम पढ़ोगी कैसे? तूने तो अभी पाठशाला में पैर रखा ही नहीं, कहे तो मैं पढ़कर सुना दूं।
2: तुम ना अभी रहने दो काका।

0: किससे पढ़वाओगी? गांव में तो सिवाय मास साहब के कोई भरोसे का आदमी है ना ही।
1: उन्हीं के पास चली जाऊंगी।
0: ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, ले सांकल लगा ले।
1: अच्छा, राम राम काका।
0: जीती रहो।
1: जाने क्या लिखा होगा चिट्ठी में, कैसी भीनी भीनी इतर की खुशबू आ रही है, लिखावट भी तो मोती जैसी है। लेकिन लेकिन मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, मां साहब के पास भी जाऊं तो कैसे, लाज लगती है। हाँ, कमली से पूछूंगी, वो बड़ी चौवाइन है, उसे सब पता होगा कि पहली पाती में ये बरहत लोग क्या क्या लिखते हैं। मैं भी कैसी बावली हूँ, कमली क्या जानेगी, बेचारी कौन उसका ब्याह हो गया है। क्या जाने मुझे लिवा जाने की तारीख लिखी हो। सच, कितने अच्छे हैं ये, कैसे सलीके से धीरे धीरे समझा कर बात करते हैं। कितना कितना घबरा रही थी मैं पहली रात को, पर पाती छूक है कितना अच्छा लग रहा है। जब वो मेरे पास होंगे तो जो मैं होती राजा बन की कोयल।

0: का हो, अच्छे तो हो मिश्री लाल। हाँ जरा बाजार तक गया था। अरे कमली, ओ कमली तू कहाँ भागी जा रही है?
1: अम्मा का जी ठीक नहीं है, सो बैद जी को बुलाने जा रही हूँ दादा।
0: अब मैं तो उधर से ही आ रहा हूँ और राम प्रसाद बैद तो रिश्तेदारी में गया है। वैसे बेटा देख ले और ना मिले तो डॉक्टर बाबू के पास चली जा।
1: पर दादा डॉक्टर बाबू तो घर आने की फीस लेते हैं ना।
0: अच्छा तो तू चल अपनी महातारी के पास जाके बैठ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ।
2: राम राम दादा।
0: अब भैया राम राम। ठीक तो हो बंशीधर? हमारी तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं है।
2: एक लिफाफा था दादा, बिटिया को दिया आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा, और तुम्हारे लड़के का कोई काम धाम लगा?
2: अभी कहाँ, अभी तो पापड़ ही बेल रहा है दादा। अब मेरे पास तो देने को रिश्वत ना, करवाने को सिफारिश, सो काम धाम मिले भी तो कैसे, हम तो भगवान के ही आसरे हैं।
0: अच्छा देखो मैं मास्टर साहब से बात करूंगा, शायद काम बन जाए।
2: ऐसा हो जाए तब तो मेरी नैया ही पाल लग जाएगी, सारी उम्र आपकी दया माया नहीं भूलूंगा दद्दा।
0: अरे भैया दया तो ऊपर वाले की ही चाहिए, वैसे एक दो दिन में मिल लेना।
2: जरूर दर्शन करूंगा दद्दा। अच्छा राम राम।
3: नमस्ते दादाजी।
0: नमस्ते नमस्ते। कहिए मास्टर साहब, इस समय इधर कहाँ से तशरीफ जा रही है? स्कूल बंद हो गया है क्या?
3: हाँ आज छुट्टी है।
0: अच्छा तब तो आज आप पूरी फुर्सत में हैं। चलिए मेरे घर ही चलिए।
3: चलिए चलिए,
0: थोड़ी देर गपशप ही रहेगी और रास्ते में डॉक्टर बाबू से भी कह देंगे।
3: क्यों, चंपा तो ठीक है?
0: हाँ वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर बाबू को कमली के यहाँ जाने को कहना, उसकी माँ बीमार है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: चंपा बिटिया, ओ चंपा बिटिया, देखो मास्टर साहब आए हैं, कुछ ठंडा भिजवा दो।
1: अच्छा दादा अभी भिजवाती हूँ।
0: और सुनाइए मास्टर साहब, आपका स्कूल कैसा चल रहा है, कुछ और बच्चों ने आना शुरू किया कि नहीं?
3: नहीं दादाजी, लोग किसी तरह बच्चों को भेजने के लिए राजी ही नहीं होते।
0: आखिर कहते क्या हैं?
3: उन सबके पास तो बस एक ही सवाल है दादाजी, कि दिन भर बच्चों को पाठशाला भेजने से उन्हें क्या मिलेगा।

0: कहीं मेहनत मजूरी करेंगे तो चार पैसे तो घर को लाएंगे, और कुछ नहीं तो ढोर डंगर चराने को भी तो कोई चाहिए।
1: कहते तो ठीक हैं बेचारे, अब वैसे भी रोजमर्रा की इतनी परेशानी है इन लोगों के सामने कि लिखने पढ़ने की बात उन्हें बेकार की लगती है।
0: यही तो समझाना है इन्हें, यही समझाना है दादाजी कि तालीम और तरक्की का बड़ा गहरा रिश्ता है, और पढ़ाई लिखाई से ही इनकी मुश्किलें दूर होंगी। शिक्षा ही तो सारे विकास की नींव है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मास्टर साहब, अब पर इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सोच को बदलने में काफी वक्त लगेगा।
0: हाँ, वक्त तो जो लगना है वो लगेगा ही, पर शुरुआत तो हो दादाजी।
1: कौन, क्या बात है कमली? तेरी माँ तो ठीक है?
2: हाँ अम्मा तो डॉक्टर बाबू की दवा खाते ही सो गई। मैं तो माँ साहब से कारट पढ़वाने आई हूँ, अभी काका ने दिया है।
0: लाओ लाओ। तेरे मामा ने लिखा है तेरी माँ के नाम, परसों किसी को साथ लेकर आएंगे। अभी जमीन का कुछ नहीं हुआ है, और लिखा है परसों तुम घर पर ही रहना।
2: अच्छा माँ साहब, चलती हूँ।
1: कमली के शादी ब्याह की बात है क्या?
0: हाँ, साथ ही किसी मुकदमे का जिक्र भी है।
1: अरे बेचारी किस्मत की मारी है कमली की माँ भी। अब मुखिया ने कमली के बाप से कोरे कागज पर अंगूठा लगवाकर उसकी जमीन का टुकड़ा टुकड़ा अपने नाम चढ़वा लिया है।
0: यही तो मैं कह रहा था दादाजी कि हम अब भी इन अक्षरों का मूल्य नहीं समझना चाहते। ये अक्षर ही तो हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं, और केवल इन्हीं से हम अपने हक की लड़ाई पूरी कामयाबी से लड़ सकते हैं। आप देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा शोषण अनपढ़ों का ही होता है।
1: हाँ, बनिया हो चाहे मुखिया, सब बेचारे इन बेपढ़ों का ही खून चूसने को तैयार हैं।
0: अनपढ़ आदमी तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, और कभी कभी तो अपनी अज्ञानता से अपनी ऐसी अनमोल चीज गवा बैठता है कि फिर सारी उम्र सिर धुन धुन कर पछताना पड़ता है।
1: अब हमारे जमाने में तो मास्टर साहब आज की तरह गांव गांव में स्कूल भी नहीं थे, दूर दराज कहीं तहसील में एक दो होते थे, सो सबके लिए वहां पहुंचना भी आसान नहीं था।
0: लेकिन अब तो हर जगह पढ़ने की सहूलियत है, फिर भी लोग लकीर के फकीर ही बने रहना चाहते हैं। खास तौर से लड़कियों को तो स्कूल भेजना पाप समझते हैं, जबकि एक पढ़ी लिखी लड़की अपने सारे परिवार को सही रास्ता दिखा सकती है दादा।
1: बात यह है मास्टर साहब कि लड़कियों को तो दूसरों की अमानत समझकर शुरू से ही पाला पोसा जाता है, सो ऊंच नीच के डर से उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते।
0: पर अब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है दादाजी, और शिक्षा पर तो लड़का और लड़की दोनों का एक सा अधिकार है। मैं तो एक बार नहीं 100 बार एक ही बात कहता हूँ, कागज पर छपे ये अक्षर केवल स्याही के छोटे बड़े निशान ही नहीं हैं, ये तो आसमान के तारों की तरह जमीन पर रोशनी के नन्ने नन्ने दिए हैं। जब तक आदमी ने अपने घर की चौखट पर नहीं जलाएगा, इसी तरह जानलेवा अंधेरों में भटकता रहेगा।
1: ये आपने बहुत जोर की बात कही मास्टर साहब, वाकई ज्ञान के बिना आदमी बिना सींग पूंछ का अंधा जानवर ही है, जो चाहे उसे गड्ढे में धकेल दे।
0: ये अक्षर हमारे कल के सपने हैं, और निरक्षरता कोई दैवी विधान नहीं है दादाजी। हम आप सब इस बुराई के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि हम खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी अपना फर्ज समझकर पढ़ाएं।
1: अगर ऐसा हो जाए तब तो बड़ी जल्दी सबको तालीम मिल जाएगी।
0: दादाजी, हमें उजाला पाने के लिए अपनी वर्णमाला जाननी ही होगी, और अपने मन के आंगन में जलाने ही होंगे ये दिए, ये अक्षरों के दिए, ये रोशनी के दिए।
1: कितनी खुशी की घड़ी होगी वो जब सब लोग ये बात समझने लगेंगे।
0: हाँ, तभी सब अंधेरे दूर होंगे, कोने कोने में शिक्षा की दिवाली जगमगाएगी, हम खुशहाल होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी होगी, और हमारा देश महान बनेगा दादाजी।
1: सच मास साहब, आपके सपने बड़े ऊंचे हैं, भगवान आपको कामयाब करे। मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताइएगा।
0: आप जैसे लोगों की वजह से ही तो मेरी उम्मीदें कायम हैं, और मैं यहाँ इस गांव में टिका हुआ हूँ। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
1: कभी कभी आ जाया कीजिए, मैं खुद तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मगर आपसे बातें करके ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है।
0: ये तो आपका बड़प्पन है दादाजी।
1: अरे हाँ, मैं तो भूल गया, आपको अपने स्कूल के लिए किसी आदमी की जरूरत तो नहीं है। वंशीधर अपने लड़के के लिए कह रहा था, वैसे लड़का ईमानदार और मेहनती है।
0: ठीक है ठीक है, आप वंशीधर को मेरे पास भेज दीजिएगा।
2: दद्दा, दद्दा, अरे ओ दद्दा, वो कमली की अम्मा है ना।
1: क्या हुआ कमली की अम्मा को? क्या हुआ?
2: कमली की माँ को कुछ नहीं हुआ दद्दा, लेकिन लेकिन वो कमली का रिश्ता पक्का कर रही है।
1: पर इसमें अचरज की क्या बात है? बिटिया तो दूसरों की ही अमानत होती है, उन्हें तो वक्त आने पर विदा करना ही पड़ता है और यही दुनिया की रीति है।
2: ये बात नहीं है दद्दा, उस आदमी के पहले से ही 3 बच्चे हैं।
1: अच्छा, तब तो काफी उम्र होगी।
2: हाँ बिल्कुल बुढ़ा लगता है। और यहाँ ये भी चर्चा हो रही है दद्दा कि उसने अपनी पहली औरत को जलाकर मार डाला है।
1: अरे राम राम राम, तब तो आदमी भी अच्छा नहीं लगता।
2: यही तो दद्दा, मुझसे कमली का रोना देखा नहीं गया दद्दा, तभी तो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आई। कुछ करो ना दद्दा, कुछ करो।
1: लेकिन मैं क्या करूं बेटिया?
2: दद्दा अगर तुम बीच में नहीं पड़े तो गांव में और कोई तो बोलने से रहा, और वो कमली तो कुएं में कूद कर जान दे देगी दद्दा, और ये रिश्ता मंजूर नहीं करेगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, कमली को बचा लो ना दद्दा।
1: अच्छा बिटिया, तो जाता हूँ, शायद बंसीधर के लड़के से उसकी बात बन जाए।
2: हाँ तब तो कमली की जिंदगी सवर जाएगी। ये आदमी तो पूरा का पूरा कसाई लगता है, कसाई। अब जल्दी से जाओ दद्दा, और हाँ कमली को मेरे पास भेज देना।
1: कमली? कमली तो इधर ही आती लग रही है, वो देख तो।
2: हाँ हाँ है तो कमली ही। कमली आजा आजा इधर आजा। अरे तू रो क्यों रही है? ऐसे मत रो बहना, ऐसे मत रो। देख दद्दा तेरी यहाँ ही जा रहे हैं, और दद्दा की बात तेरी अम्मा कभी नहीं डालेगी। अब चुप हो जा मेरी लाडो, ले ले ये ठंडा पानी पी ले, कुछ खाएगी
3: नहीं।
2: देख रो मत, आराम से बैठ जा खटिया पे।
3: चंपा
2: हुँ?
3: हम लोगन की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हम तो पंख कटी चिड़िया है, सारी उम्र एक बहेलिए से दूसरी बहेली के हाथों में फड़फड़ाते रहते हैं।
2: सो तो है,
3: उड़ने के लिए तरसते हैं, पर कोई भी तो ढील नहीं देता।
2: हारी कभी कोई ये नहीं सोचता कि हम भी औरों की तरह हाड़ मास के बने हुए हैं, हमारा भी कोई मन है।
3: हम तो जन्म लेते ही कर्मजली और कुलक्षणी बन जाते हैं, चाहे नेहर में रहे चाहे सासुरे में, रात दिन चूल्हे चक्की में ही पिसना है, और ऊपर से सबकी दुत्कारें भी सहनी पड़ती हैं। कोई दो प्यार के बोल हमसे ना बोलता। अब भगवान ने हमें लड़की बना के पैदा किया, तो इसमें हमारी क्या गलती है चंपा?
2: गलती किसी की भी हो बहना, सजा तो हम ही को भुगतनी पड़ती है। जन्म देने वाले माँ बाप तक तो दुश्मन बन जाते हैं।
3: अब अम्मा को भी क्या दोस्त हूँ चंपा, वो तो खुद ही बेचारी दुख की मारी है। बापू जब छोड़ के गए तो उम्र ही क्या थी उनकी, तब से मेरा ही मुंह देख के जिंदा है। वो क्या नहीं चाहती कि उनकी कमली के लिए कोई राजकुमार डोली लेकर आए, पर दिन भर मेहनत मजूरी के बाद 2 जून की रोटी तो जुटती नहीं, दान दहेज के लिए भरी थैली कहाँ से लाए।
2: हाँ कमली, सारे फांसी के फंदे हम औरतों के लिए ही हैं, मर्दों को किसी बात की मनाही नहीं, जो मर्जी हो सो करे।
3: ये तो अपना अपना भाग है चंपी, विघना नहीं हमारा तुम्हारा भाग आंसुओं की स्याही से लिखा है, तो कोई क्या करेगा। सुना है शहर की औरतें तो पढ़े लिखे भी हैं और मर्दों की तरह घर से बाहर काम भी करे हैं।
2: हाँ तेरे जिज्जा बता रहे थे औरतें भी दफ्तरों में बड़ी बड़ी अफसर हैं।
3: पर हमें क्या, हमें तो जन्म भर पैरों की जूती ही रहना है, हमारी बिथा कथा तो द्रौपदी का चीर है, कब तक कहे सुनेंगे। चल छोड़ भी, ला कुछ खाने को ला, बड़ी भूख लाग रही है।
4: बिटिया, ओ चंपा बिटिया, चिट्ठी ले लो।
2: आई काका।
3: ये जीजा की पहली चिट्ठी है क्या, इतने दिनों बाद आई?
2: नहीं, इससे पहले भी 2 आ चुकी है।
3: पर तूने तो नहीं बताया, तू तो बड़ी घुन्नी निकली, किससे पढ़वाई?
2: किसी से नहीं।
3: क्या चिट्ठियां अब तक किसी से पढ़वाई ही नहीं? अभी तक बंद ही पड़ी हैं सब, माँ साहब के पास न जाया गया। अरे इतने घर घुसने कब से हो गई?
2: अरे मुझे लाज लगती थी ना।
3: हो जरा लाजवंती को तो देखो, क्या जाने जिज्जा ने अपने आने की ही खबर भेजी हो, काका से ही पढ़वा लेती ना। भगवान ना करे ऐसी वैसी बात हो तो तुझे पता भी ना चलेगी।
5: देख कमली, तेरी बातों से तो मेरा जी अभी अब थक थक करने लगा है। कमली ऐसा कर, ये तीनों चिट्ठियां तू रख ले, माँ साहब के पास चली जाना और उनसे पढ़वा लेना, ठीक है ना?
3: ठीक है ले आ। लेकिन माँ साहब तो दो दिन के लिए शहर गए हैं ना, वो राजू कह रहा था स्कूल आज और कल बंद है।
5: फिर क्या करें?
3: फिर क्या, जहाँ इतने दिन तक सबर किए बैठी रही वहाँ दो दिन और सही।
5: तो परसों सुबह सुबह तू आ जाएगी ना कमली?
3: आ जाऊंगी मेरी लाडो, आ जाऊंगी। चलो चल कर देखूं मेरी किस्मत का क्या फैसला हुआ, कोई साथ ना देगा तो क्या, गांव की नदी तो कहीं नहीं गई ना।
5: छी, कैसी पागलपन की बातें करती है तू।
1: चंपा, ओ चंपा बिटिया।
2: काहे दादा?
1: अभी शहर जाना है, जमाई बाबू से भी मिलता आऊंगा, अब पता नहीं कितना वक्त लगे, ना हो तो दो चार रोटी सेक दे, खाता ही जाऊंगा।
5: अभी लो दादा, बस जरा मैं मंदिर तक हो आऊं।
1: क्यों, आज कोई तीज त्योहार है?
5: वो सकट देवता का व्रत है दादा, आज बगल वाली भौजी भी जा रही है, बस मैं अभी गई और अभी आई दादा।
3: चंपा चंपा चंपा कहाँ है दादा?
1: मंदिर तक गई है, आती ही होगी। अरे बेटा तू बैठ जा, अब तेरी माँ कैसी है?
3: अब तो ठीक है दादा।
6: टेलीग्राम दादा, टेलीग्राम है कानपुर से।
1: टेलीग्राम? जरूर जमाई बाबू का होगा, आने की तारीख लिखी होगी। और हाँ भाई ठीक है, शादी के बाद कौन लड़कियों को माँ बाप के घर छोड़ता है, जरा पढ़ना तो वंशीधर, कब आने को लिखा है?
7: अरे अरे दादा, ये तो बड़ा भारी गजब हो गया दादा।
1: क्या हुआ, क्या हुआ वंशीधर, तुम चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं कि क्या लिखा है? जमाई बाबू तो ठीक है ना? वंशीधर बोलो वंशीधर, क्या लिखा है टेलीग्राम में?
7: दादा, महेश एक्सपर्ट यस्टरडे।
1: महेश? अरे महेश ही तो मेरे जमाई का नाम है, क्या हुआ उन्हें?
7: महेश नहीं रहे दादा, कल शाम गुजर गए।
1: क्या? ये क्या कह रहे हो तुम वंशीधर, जरा ठीक से पढ़ो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भला?
7: मैंने ठीक ही पढ़ा है दादा, यही लिखा है, तार शंकर ने दिया है।
1: आए भगवान, ये तूने क्या किया, किस पाप की सजा दी है मुझे? हाय मेरी फूल सी बच्ची, हाय मेरी चंपिया का क्या होगा?
5: दादा, ओ कमली, दादा को क्या हुआ? अभी तो भले चंगे थे। काका, कमली, बताओ ना दादा को क्या हुआ? काका तुम ही बताओ ना। अरे तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? कमली तू बोलती क्यों नहीं? कमली बता ना क्या हुआ है, क्या हुआ है?
3: हाय रे चंपा, तू लुट गई बहना, जीजा नहीं रहे।
5: क्या क्या?
3: हाय दादा,
5: हाय दादा, अब मेरा क्या होगा दादा?
3: दादा दादा, चंपा तो बेहोश हो गई, मैं पानी लाती हूँ।
7: मगर ये सब हुआ कैसे, बीमारी तक की कोई खोज खबर नहीं थी, एकदम से ये टेलीग्राम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
8: चिट्ठी तो मैं परसों ही दे गया हूँ बिटिया को, उससे पहले भी दो या तीन लिफाफे दे चुका हूँ।
7: अच्छा,
3: पर सबकी सब चिट्ठी ऐसे ही बंद रखी है, चंपा ने किसी से पढ़वाई ही नहीं, बोली माँ साहब के पास जाते मुझे लाज लगती है, मैं वही चिट्ठियाँ लेने तो आई थी दादा।
7: अरे तो अब ले आ जल्दी से।
3: अभी लाई ली, ये लो।
7: लो वंशीधर, पढ़ना तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले परसों वाली पढ़ दो।
3: ये रही काका,
8: शंकर की है, लिखा है दादा, महेश भैया का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती है, हालत ठीक नहीं है, तुम चंपा को लेकर फौरन शहर आ जाओ, रुपयों का इंतजाम करते लाना।
7: हाँ, सारी बातें तो खुलासा लिखी हैं शंकर ने, और बेचारा करता भी क्या, पर हमारी खोटी तकदीर वंशीधर,
1: तुम ही उस वक्त पढ़कर बता देते तो ये पहाड़ तो ना टूटता।
8: मैंने तो बहुत कहा बिटिया से।

0: हे भगवान, मेरा बुढ़ापा बिगाड़ कर तुम्हें क्या मिला।
1: आज को चंपा बिटिया अगर चार अक्षर पढ़ी होती तो यह अनहोनी क्यों होती। बखर से खबर मिल जाती और जो बनता वो कोशिश भी होती। लेकिन
2: मगर अब क्या हो बंशीधर, अब मैं किसे दोष दूं, किस मुंह से बिटिया को धीरज रखने को कहूंगा, कैसे समझाऊंगा उसे। अब मैं क्या करूं बंशीधर, क्या करूं, मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही।
1: विपत्ति भी तो ऐसी पड़ी है दद्दा, पर हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी।
2: हाँ बंशीधर, कलेजे पर पत्थर तो रखना ही पड़ेगा, पर मास्टर साहब ठीक ही कहते थे।
3: अनपढ़ आदमी अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारता है दादाजी, कभी कभी तो इस अज्ञानता से अपनी ऐसी अनमोल चीज गंवा बैठता है कि फिर सारी उम्र सिर धुन धुन कर पछताना पड़ता है।
2: वही हुआ वंशीधर, आज हम अपनी ही करनी का नतीजा भुगत रहे हैं। हमारे लिए तो काला अक्षर बैस बराबर था ही, अगर वक्त रहते हमने इन अक्षरों की कीमत पहचान ली होती तो यह अनर्थ ना होता। मास्टर साहब ने कितना समझाया हम लोगों को।
3: दादाजी मैं एक बार नहीं 100 बार एक ही बात कहता हूं, कागज पर छपे ये अक्षर केवल स्याही के छोटे बड़े निशान ही नहीं है, ये तो आसमान के तारों की तरह जमीन पर रोशनी के नन्हे नन्हे दिए हैं। जब तक हर आदमी इन्हें अपने घर की चौखट पर नहीं जलाएगा, इसी तरह जानलेवा अंधेरों में भटकता रहेगा, भटकता रहेगा।
2: हम भटक तो रहे हैं मास्टर साहब, अब इन अंधेरों के अलावा हमारी जिंदगी में रह ही क्या गया है। काश हम आपकी बात मान लेते।
3: दादाजी हमें उजाला पाने के लिए अपनी वर्णमाला जाननी ही होगी, अपने घर आंगन में जलाने ही होंगे ये दिए, ये अक्षरों के दिए, ये रोशनी के

अभी आप सुन रहे थे धरोहर कार्यक्रम में नाटक, जिसका विषय था रोशनी के दिए। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम में रिजवान का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के गाए हुए कुछ गीत। पहला गीत यादें फिल्म से, जिसको गाया है हरिहरन ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: आपको सुनवा रहे हैं मन भावन कार्यक्रम में गायक हरिहरन के गाए हुए कुछ गीत। अगला गीत खामोशी फिल्म से, जिसमें आवाजें हैं हरिहरन और अलका याग्निक की, जिसको संगीत से सजाया है जतिन ललित ने और जिस गाने के गीत लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।
1: मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन में गायक हरिहरन के गाए हुए कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है कुछ तुम कहो कुछ हम। गायक कलाकार हैं हरिहरन। इसको संगीत से सजाया है अनु मलिक ने और इस प्यारे से गीत को लिखा है समीर ने। तो आइए साथियों सुनते हैं ये गीत।

0: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं गायक हरिहरन के गाए हुए कुछ गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपने दोस्त रिजवान के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत जुदाई फिल्म से, इसमें आवाजें हैं हरिहरन और अलका याग्निक की।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्य फिल्म से। इसमें आवाजें हैं हरिहरन, शंकर महादेवन, सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, कुणाल गंजावाला, विजय प्रकाश की, और इसको म्यूजिक से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने, और इस गीत को शब्द दिए हैं जावेद अख्तर ने।

अभी आप मन भवन कार्यक्रम में गायक हरिहरन के गाए हुए कुछ गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं, ये समय है गुमशुदा सूचनाओं का।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजय पुत्र श्री भूरे, जो कि निवासी केशोपुर रसेटा से हैं, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, इनका हुलिया रंग गोरा, कपड़े पैंट शर्ट पहने हुए हैं, बाल काले हैं, लंबाई 5 फुट, उम्र करीब 21 वर्ष है। यदि किसी को भी इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो इन नंबर्स पर सूचना देने की कृपा करें। उपनिरीक्षक दिवेंद्र कुमार, थाना बहजोई, जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9219713377, प्रभारी निरीक्षक थाना बहजोई, जनपद संभल 9454404030, क्षेत्राधिकारी बहजोई, जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9454455659। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनोखी, उम्र करीब 47 वर्ष, पत्नी श्री होमपाल, निवासी ग्राम ईसापुर सुनवारी, थाना नखासा, जिला संभल की रहने वाली हैं, जो दिनांक 27 जनवरी 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया, उम्र लगभग 47 वर्ष, रंग सांवला, हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं, पैरों में जूती हैं, बादामी कलर की जर्सी पहने हुए हैं। यदि किसी को भी इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो इन नंबर्स पर सूचना देने की कृपा करें। उपनिरीक्षक श्री अरुण कुमार, थाना नखासा, जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9012176188, प्रभारी निरीक्षक थाना नखासा, जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9454404053, क्षेत्राधिकारी असमोली, जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9453805413। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम में हमारे पास पहला मेल आया है ज़िला मुरादाबाद से। फरमाइश करने वाले हैं रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, मोहम्मद रियाज, नूरी आफिया नूरी, और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौंडा, सीटी दीवाना। और साथ ही साथ इस गीत की हमें फरमाइश लिखकर भेजी है ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमज़ा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा। और हमारे पास अगली फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और साथ ही साथ फरमाइश भेजी है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफरा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया। और हमारे पास अगली फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज़ नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। और साथ ही साथ हमें इस गाने की फरमाइश लिखकर भेजी है ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलिम आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान, अनाविया सिद्दीकी। तुलसी

मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिहान खुराना। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल। फ्रेंड्स कॉलोनी करगान करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मरविंदर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया। सादुल शहर राजस्थान से राजकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी, इशरत परवीन। बोरखेड़ा पितरमाला जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंग मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूड़त। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पुप्पी भाटिया। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक अलौकिक चंसोलिया। मेहरनगर उमड़खेड़ से अभिजीत गौहड़कर राही, श्रीमती सरिता गौहड़कर, प्रिंस एकांश गौहड़कर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गौहड़कर, सिद्धांत गौहड़कर, अर्जुन गौहड़कर, टुक टुक। अकारा हाइट बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गौहड़कर, सुमित गौहड़कर, कुमारी ध्वनि गौहड़कर, परी। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है धांडी नादूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल बाठे। देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया, और पोता मास्टर अल कबीर। ये ख़त आया है हमें कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सर फारूक, फराज शेख, गुल फराज शेख, बेबी मुस्कान। ये ख़त आया है हमारे पास गंज डुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। बबलू ठेकेदार, शेख वज़ीर, सोहेल शेख, मोताला बाज़ार से। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, झज्जर हरियाणा से। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुरा महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिल शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, साहिबा मुजावर, मिखाइल मुजावर और ज़ैनब मुजावर। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है सदर बाज़ार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीता कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। तो आइए साथियों सुनते हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में हमारे पास अगला मेल आया है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, और साथ ही साथ फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमीला और अनुश्री सैनी, महादेव पारा से मीरा, सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक 65 से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, और साथ ही साथ हमें इस गाने की फरमाइश मेल द्वारा लिखकर भेजी है। करणवीर हाउस भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौंडा,

मनजीत कौर जौंडा, करणवीर करण, दीपिंदर विपिंदर, कुलदीप सीमू एकम, दमन और अभिजोत। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षदा देशमुख। रेलवे रोड।

वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, शेरवानी स्कूल गंजरद्वारा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, वारली मुंबई से, नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर, अमरावती से, सिद्धार्थ, अर्चना, प्रणय और हीरामन।

पंकज वडोड़े, आर्या, प्रियंका, बीटी वडोड़े, पुणे से। गांव जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। शाहूनगर यवतलाम से राहुल, मनवर, सरला, मनवर रोशनी, चेतन मनवर, विशाल मनवर, बेबी प्रियांशी। नूरमहल महसोली सीतमगढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहां, शाजिया, नाजिया। निगमनाबाद ज़िला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। और साथ ही साथ हमें इस गाड़ी की फरमाइश लिखकर भेजी है, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रज़िया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा खान, सुभान खान और फिरोज़ खान। ग्राम व पोस्ट हर हरपुर मटकली ज़िला बरेली से शहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। तो आइए साथियों सुनते हैं केके और सुजैन की आवाज़ में हॉन्टेड फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

हमारे पास गाने की फरमाइश लेकर अगला मेल आया है महाराष्ट्र से, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षता लोखंडे, भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीति वर्मा, रुद्र वर्मा, दतरेंगी से। छत्तीसगढ़ से कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, यूसुफ आसमा, चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटाओ, फातिमा जाटाओ, डब्लू वली जाटाओ, सोनम वली, रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल बाबू, प्रियांश भाव्या देवांगन, बिलाई छत्तीसगढ़ से। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोर्ड। और साथ ही साथ हमें फरमाइश लिखकर भेजी है। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीबा,

ग्रामवा पोस्ट, मुंगीसा कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश बधू, निशा कठेरिया, प्रज्ञा फात प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया और समत कठेरिया परिवार। बक्सर विहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू। डुमराऊँ बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर दानिश अंसारी, श्रद्धा नंद आर्या, अभयानंद आर्या और परमानंद आर्या। गोला बाजार बक्सर से सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमनदीप अफरीदी। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, सई राज सपकाल और विशाल सपकाल। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और बेटी सुशांत नायक। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान बेबी, गर्वी बेबी, हिमाक्ष। इंदिरा बिहार दिल्ली से याकूब आसमा फ़कीर, यूसुफ आसमा, असलम आसमा और अकरम आसमा। सरगुजा मैनपेट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, दीबा थापा, रेशमा कुमारी, वली थापा, कुमारी डब्लू थापा। लालकृति रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिका वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा ज़िला गाज़ीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रंजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से फातिमा वली बेलदार, अदीबा वली बेलदार, रेशमा वली बेलदार और डब्लू वली बेलदार। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, झारखंड से। पुराना तालाब डुमराव से मोहम्मद सुल्तान अंसारी और आसमा नाज अंसारी। रेलवे कॉलोनी नागपुर से कानपुर से आफ्ताब उल्ला डोम, वली उल्ला डोम, डब्लू उल्ला डोम। इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम, बेबी अंसारी डोम। बिलराम गेट काजगंज से एम असलम सैफी, जैबुन निशा बेगम, सद्दान सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, मोहम्मद नसीब पलक, लुबना यंश मंसूरी। यवतलाम से जयराम, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। एटा से जलालाबाग वेस्ट से
सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया और निमिता आहूजा। छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश, सुषमा, प्रांजल, सोहम, स्वीटी, अंशु, बेबी, ओवी। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान, नगमा नाज मंसूरी। वसीम अकरम, साहिल खातून और गुड़िया खातून, बेताब रेडियो लिसनर क्लब, पटना बिहार से। ज़िला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे। तो आइए साथियों सुनते हैं राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में इश्किया फ़िल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

हमारे पास मेल के माध्यम से अगली फरमाइश आई है। बेताब रेडियो लिसनर क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, साहिल खातून और गुड़िया खातून, साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है। अजय राठौर, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियांश, प्रियंका और शिवाय राठौर, तहसील स्वार, मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफा खान, निखत परवीन, महसूल सीतमगढ़ी बिहार से चाहा है। सुरेश डोकर और डोली, प्रेमी प्रेमा रानी।

जाटाओ राजकोट से, गुजरात से प्रमीला राजसोनी, श्वेता राजसोनी, चमनपुरा मोरबी से प्रमीला जेटली, दीपक और अंशु जेटली, राजद्वारा रोड मीठेकुआ रामपुर से आकाश रस्तोगी और दीपक रस्तोगी, पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग, जेल रोड झांसी से महेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, नरेंद्र डोम और कशिश डोमनी, उमरखेड़ से वैशाली जाटव और शैलेश जाटव, नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रुमा, माहिरा शेख, नुमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम, वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, चंदर नगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, अंशु नारंग, सोनाली शेख, अब्दुल्ला बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, एस के सरगम, फिरोज़ खान, अहमद मोंगा, इकबाल मोंगा और जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव, बुलंदशहर से राधिका शाक्या और दिव्या अग्रवाल, मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नाजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम, शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नज़ारा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी, असद बाबू, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली बरेली से शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीता, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शैफाली, शैफी, डेविल, विमला और सतीश अनेजा, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानी तानिया नारंग, और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन, मुंबई सिटी से बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, व्हाइट फील्ड बेंगलोर से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृत और पैरुष, शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी और असद बाबू, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिख के और भेजी है नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविका सिक्का, कलनौर से राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित, ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से।

अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, ज़ियाउल हक डावर, संजय कॉलोनी नागचुन से। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अज़ीज़ भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूखी फूल वाले, सईद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन और शेख सलीम। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिक हर्षित और खुशी गोस्वामी। डोंडी लोहारा से प्रभा जामोरिया, अनुश्री जामोरिया, पूजा डॉली जामोरिया। चंदनगर सहारनपुर से सोनाली डोमन और पृथिक डोमन। दतरंगी भाटापारा से सोनम बेलदार, फातिमा बेलदार, आसमा सरफुद्दीन फ़कीर। सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा गुलिस्ता रानी, नंदिनी और

बहनों में जो ध्यान रखना है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वे उबासी तो ना है। जैसे बहनों उल्टी गैस पेट दर्द जैसी समस्या ही सकते हैं, तो जैसे बचन के लिए बहनों खान पान को खास ख्याल रखें।

0: वस्त्र धारण करें जमें ज्यादा जो ज़्यादा गर्मी ना लाग है। हल्को पीलो, हल्को गुलाबी, हल्को आसमानी और सफ़ेद रंग को वस्त्र अगर आप पहनेंगी तो आपको ज़्यादा गर्मी ना लगेगी। बहनों कपड़े जे रंग वाले हैंगे लेकिन जे कपड़े सिंथेटिक फैब्रिक हैंगे, आपने टेरिकॉट कपड़े पहन ले हैंगे तो बहनों जामे तो हवा पास ना है और पसीना आने पर जो कपड़े सोखत भी ना हैं, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, मतलब कीटाणुओं के बढ़न से संक्रमण बढ़ जाते हैं और पसीने को गंध आते और त्वचा संबंधी समस्याएं होने लगते हैं। देखो तेज हरा, बहनों नीला, मैरून रंग पहनने से गर्मी ज़्यादा लगते हैं और हमारी कुछ बहनों को काला रंग पसंद होता है। वे काला रंग पहनते हैं लेकिन बहनों काला रंग सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और गर्म रहते तो बहनों जैसे गर्मी में काले रंग के कपड़े ना पहने। और बहनों सफ़ेद रंग कैसे गर्मी में अच्छे रहते आओ जान ले। वो बहनों गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े की सतह पे जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो होत का है तो सफ़ेद रंग को सतह सूर्य के प्रकाश को विकिरण द्वारा वापस लौटाए देते हैं। जाको मतलब है बहनों सफ़ेद रंग को कपड़ा सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं और जाही लें सफ़ेद रंग को कपड़ा ठंडो रहते हैं। बहनों गर्मियों में मलमल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो नरम मुलायम और ठंडो रहते हैं। जाके अलावा बहनों लिनन भी अच्छो है। लिनन के कपड़े तापमान को नियंत्रित करते हैं और जाको पहनन से ठंडक को एहसास होते हैं। और गर्मी में घर के बाहर अगर आप जा रहे हैं तो दुपट्टे से सिर ढाक लें और साथ ही साथ कुछ ढीले कपड़े पहनें और मौसम के हिसाब से वस्त्रन को चुनाव करें। बहनों कपड़न को तो बात समझ आई और यहीं पर बहनन के खान पान के बारे में जानते हैं कि ग्रामीण महिलाओं को घर द्वारे के अलावा खेत खलिहानन के बहुत सारे काम करने होते हैं लेकिन हमारी बहनन को पोषण कितनों मिलते हैं जय जानन के लिए आओ बहनों डॉक्टर आंचल गुप्ता से सुनते हैं एक वार्ता जिसको विषय है पोषण की दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति।
1: भारत गांवों का देश है। आज भी भारत देश की 70% आबादी गांव में रहती है, इसलिए ग्रामीण विकास देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी दयनीय है। वर्तमान में जहां एक ओर शहरों में विकास के मानक तीव्रता से बदल रहे हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम विकास हो रहा है। स्वाभाविक रूप से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएं भी विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते समय हम महिलाओं की सभी संसाधनों की पूर्ण और समान पहुँच की बात करते समय पोषण की आवश्यकता को अधिकांश समय नज़रअंदाज करते हैं। खासतौर से ग्रामीण महिलाओं की पोषण संबंधी समस्याएं भी महत्वपूर्ण चुनौतियों की तरह हैं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार पोषण की स्थिति को सुनिश्चित करने के साथ शुरू होता है तथा यह महिलाओं के अपने बच्चों और परिवारों के लिए प्रदाता होने के साथ जारी रहता है। ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करती हुई संतुलित एवं पोषित भोजन के अभाव में अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। वे शिक्षा एवं चेतनता के अभाव में इस बात से अनभिज्ञ रहती हैं कि अपने दैनिक कार्य करने, बीमारियों की रोकथाम तथा सुरक्षित व स्वस्थ प्रसव के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। इसने विश्वभर में महिलाओं को ही अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की तुलना में कुपोषण का अधिक सामना करना पड़ता है। भोजन में पोषण का अभाव, थकावट, कमजोरी, खून की कमी एवं अशक्तता बुरे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो आज भी हमारे स्वास्थ्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही हैं। ये अलग बात है कि अति व्यस्त जीवन में इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इन्हीं सब बीमारियों में एक कुपोषण भी है जो विशेषकर ग्रामीण बालिकाओं, किशोरियों एवं महिलाओं में अधिक पाया जा रहा है। इस समस्या की नज़रअंदाजी से निसंदेह इसका नकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलेगा। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार ये ज्ञात होता है कि पोषण की दृष्टि से किशोरावस्था हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण

चरण है। यह तो जीवन की प्रत्येक अवस्था में पोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन पोषकता की दृष्टिकोण से किशोरावस्था जीवन में विशिष्ट स्थान रखती है। यद्यपि इस अवस्था के दौरान किशोर एवं किशोरियां दोनों ही भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से लड़कियों को महावारी तथा प्रजनन जैसे कार्यों हेतु अधिक शारीरिक समस्याओं तथा कमजोरी का सामना करना पड़ता है। इस कारण ही उन्हें स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तविकता में पोषित भोजन ग्रहण करने के मामले में इनकी स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। पोषण के अर्थ की बात करें तो शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार ही पोषण है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। बालपन से ही गृह कार्य जैसे दूर दराज से पानी लाना, खाना बनाना, सफाई, छोटे बच्चों की देखभाल, कृषि कार्य में अधिक श्रम एवं संतुलित भोजन के अभाव के कारण बालिकाओं और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसी कारण वे सरलता से कई बीमारियों की शिकार बन जाती हैं। इसका मुख्य कारण लैंगिक भेदभाव भी है, जो कि भारत के अधिकांश गांव जैसे राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में व्याप्त है। लैंगिक भेदभाव से तात्पर्य भारत में पितृसत्तात्मक समाज की प्रचलित मानसिकता के कारण पुरुषों को श्रेष्ठ स्थान देना है। इसी कारण महिलाओं को उनके घरों तक सीमित रखा जाता है। उन्हें परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय, चुनाव, चर्चा आदि में भाग लेने जैसी किसी भी गतिविधियों में भाग लेने की प्रायः अनुमति नहीं होती। इसी कारण महिलाएं कहीं पर संसाधनों की अपर्याप्तता, पारिवारिक दबाव तो कहीं परंपरागत रूढ़िवादी सोच का परिपालन करते हुए तभी भोजन करती हैं जब पुरुषों व बच्चों ने खा लिया हो, अर्थात वे प्रतीक्षा करते हुए समय पर न भोजन करके अंत में खाती हैं। इसलिए अनेक बार पोषित भोजन घर में सबको तो परोस दिया जाता है तथा अंत में बचे हुए अन्न से वे अपना भोजन कर लेती हैं। इसलिए ग्रामीण इलाकों में इस मानसिकता से बाहर निकलना भी बहुत आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्रामीण महिलाओं में भुखमरी तथा कुपोषण की समस्या का तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता जब तक जमीन व अन्य संसाधनों का न्यायपूर्वक वितरण होने के साथ साथ महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिलता। महिलाओं की स्वयं की भी जिम्मेदारी है कि सजगता से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि न केवल ये उनके अपने स्वास्थ्य का प्रश्न है अपितु उनकी भावी पीढ़ी को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनकी पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रचार के प्रचलित साधनों जैसे रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों आदि के द्वारा कम संसाधनों में अधिक पोषण कैसे प्राप्त करें जैसे कार्यक्रमों का प्रसार किया जाना बहुत आवश्यक है। पोषण का संबंध पैसे से न होकर चेतनता से अधिक है। अनेक ऐसी बातें हैं जिनका पालन करके कम पैसे में भी बेहतर भोजन प्राप्त किया जा सकता है एवं यथासंभव पौष्टिक भोजन खाकर भी अपनी सामर्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं। यह भी सर्वथा सत्य है कि जब महिलाओं का पेट भरा होगा तो वे बच्चे, परिवार के सदस्य व समुदायों की आवश्यकताओं पर न केवल ध्यान लगा सकती हैं अपितु उनमें परिवर्तन लाने के लिए भी प्रयासरत हो सकती हैं। मुख्य खाद्य पदार्थ एवं सहायक खाद्य पदार्थ विश्व के अधिकांश भागों की तरह भारत में भी बहुत लोग लगभग प्रत्येक भोजन में कोई सस्ता मुख्य खाद्य पदार्थ खाते हैं। यह मुख्यतः उनके क्षेत्र की पैदावार पर निर्भर करते हुए गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा या आलू हो सकता है। ये सभी मुख्य खाद्य पदार्थ ही शरीर की अधिकतर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि केवल ये मुख्य खाद्य पदार्थ अकेले ही व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक सहायक खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स व खनिज तत्व, जो शरीर की रक्षा और मरम्मत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पौष्टिक भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इनमें कुछ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ तथा विटामिन युक्त ताजे फल व सब्जियां होती हैं। यूं तो प्रतिदिन हमें वसा व चीनी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि किसी भी कारण पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने की समस्या है तो बेहतर होगा कि हम कम भोजन के बजाय वसा व चीनी युक्त खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाएं। कोई भी महिला स्वस्थ रहने के लिए अपनी आदत के अनुसार तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध एक मुख्य खाद्य पदार्थ एवं साथ में सहायक खाद्य पदार्थ खा सकती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने हेतु 5 महत्वपूर्ण विटामिन व खनिज हैं जैसे लौह तत्व, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन तथा विटामिन ए, जिनकी महिलाओं को अत्यधिक आवश्यकता होती है। इनमें भी विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। इन तत्वों की खून को स्वस्थ रखने व एनीमिया की रोकथाम करने के लिए आवश्यकता होती है, विशेषतः उस समय जो व्यक्ति जब स्त्री गर्भवती हो या उसे महावारी हो रही होती है। वैसे तो लौह तत्व फलियां में मटर, अंडे, मछली, मांस, रागी, बाजरा, पत्तेदार सब्जियां, गुड़, पत्ता गोभी, आलू, शलगम, सूरजमुखी व कद्दू के बीज, अनानास आदि में पाया जाता है। लौह तत्वों की प्राप्ति के लिए उपरोक्त सभी को खाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु सुलभता के आधार पर आप कोई भी सामग्री खा सकती हैं। यदि आप लोहे के बर्तनों जैसे कि कढ़ाई में खाना पकाएं

0: तो खाना खा पकाते समय यदि उसमें टमाटर या नींबू का रस, जिसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है, डाल दें तो लोहे के बर्तन से अधिक लोह तत्व खाने में मिल जाएगा। फॉलिक एसिड भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी जरूरत शरीर को स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए होती है। इसकी कमी से नवजात शिशुओं में गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं। गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियाँ, मूँगफली, अंडे, मछली, मशरूम, मटर, फलियाँ, चोकर युक्त अन्न आदि फॉलिक एसिड के अच्छे स्रोत हैं। यूं तो प्रत्येक मनुष्य को मजबूत दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, परंतु महिलाओं व लड़कियों को अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम चाहिए होता है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चों की हड्डियां और उसकी खुद की हड्डियां व दांत मजबूत रहें। दूध, दही, पनीर, बादाम, सरसों, झींगा मछली, तिल, रागी, सीताफल, मौसम्बी, बाजरा, सोयाबीन आदि कैल्शियम प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। भोजन में उपस्थित आयोडीन घेंगा तथा अन्य समस्या की रोकथाम करता है। अगर किसी महिला को गर्भावस्था में पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलता तो उसके पैदा होने वाले शिशु मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो सकता है।
1: पोषण की दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति जा विषय पे बहनों, अभी आपने डॉक्टर अंचल गुप्ता से वार्ता सुनी। जो तो रही बहनों ग्रामीण महिलाओं के पोषण की बात, तो बहनें ध्यान रखें, अपने खान पान पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार लें। हम आशा करते हैं जो वार्ता सुन के आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी। और अब आओ बहनों चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे, गांव की बातों के अंतर्गत सुनते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम जिसको विषय है अंधविश्वास प्रगति में बाधक। बहनों हमने रीना बहन से बात करी और वो का बात करी, आओ सुनते हैं।
2: का है
3: रीना,
2: गांव को नाम
3: आगापुर है।
2: परिवार में कौन कौन है?
3: मैं और मेरे बच्चे ही हैं, एक लड़का है और दो लड़कियां हैं।
2: देरानी जिठानी
3: वो है, चार
2: साल
3: चार हैं हम सब।
2: रीना बहन, आज हम आपसे अंधविश्वास के बारे में जानना चाहेंगे। अंधविश्वास फैलत जा रहे भारत गावन को देश है, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार, संस्कृति भारत को पहचाने, लेकिन कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो ठीक ना है, जो विकास में बाधक होते हैं। कई बार हम जो देखते हैं कि सवेरे सवेरे हमारी काऊ बहन ने दूध भरो बाल्टी देख लाई या पानी भरी बाल्टी देख लाई तो बहन खुश ही जाते हैं।
3: अगर बाल्टी खाली देख लाई तो वो अंधविश्वास है, क्या अब हमारा दिन खराब है और हमारे लिए गलत हो गया, अशुभ माना जाता है। भरी हुई देखेंगे तो खुश मानते हैं और खाली बाल्टी देख लेंगे उसे मानते हैं अशुभ।
2: लेकिन ये एक अंधविश्वास है,
3: ये अंधविश्वास है, कोई इसमें ये थोड़ा कि तुमने खाली बाल्टी देख ली तो तुम्हारा दिन खाली ही जाएगा, ऐसा कुछ ना।
2: दिव्यांग व्यक्ति मिल जावे अच्छा ना मानते हैं। काव को चलन में परेशान
3: है, अगर यहाँ किसी काने व्यक्ति को देख ले जिसकी आँख खराब है उसको ज्यादा अशुभ मानते हैं गाँव में।
2: तो एक आँख ना है ऐसे व्यक्ति को मिलना अपशकुन मानते हैं।
3: हाँ, जिसकी एक आँख खराब है उसको तो अशुभ मानते हैं गाँव में, कह रहे आज कानो देख लो हमने, अरे आज हमारा दिन खराब जाएगा।
2: बहन हमने देखो है कि घर परिवार में वो बीमारी ही जाते तो कछु बहने का करते हैं, डॉक्टर के पास ना जाए के झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं और बीमारी बढ़ जाते हैं।
3: ऐसा ना है, जैसे कोई भी है, कोई भी बीमारी पे कम अंधविश्वास का ज्यादा विश्वास करता है गाँव में, कि जैसे अब टाइफाइड हो गया तो हमारे शरीर में जो टाइफाइड है वो एकदम से तो निकलेगा नहीं, कि अरे जहाँ पे काउन कुछ करवा दो जाको बुखार ना जा रहा हो, ये अंधविश्वास है।
2: हाँ रीना बहन, वैसे तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे, कहन को तो भारतीय समाज आधुनिक और विकसित मानो जाते हैं। हम हर दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम चांद और मंगल पर जीवन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, फिर भी लोग अंधविश्वास और रूढ़ियों के चक्कर में।
3: तो जो हमारे आधे गांव है वो सब अंधविश्वास में ही तो मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो अंधविश्वास पे जिंदगी जी रहे हैं।
2: हाँ, ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो उनके चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। चलते समय छींक दे या बिल्ली रास्ता काट दे,
3: अगर बिल्ली ने रास्ता काट दी तो अंधविश्वास जरूरी थोड़ी ना, बिल्ली तो रास्ते में जाएगी, अगर तुम्हारे साथ गलत होना है तो वैसे ही हो जाएगा, बिल्ली के काटने से थोड़ी ना होगा, जानवर का रास्ता काटना वो तुम्हारी जिंदगी में ना कि अशुभ या अशुभ है।
2: लेकिन मैंने जय सोचा थे कि अब हमारे काम में बाधा आवेगी,
3: ऐसा कुछ नहीं है, बिल्ली काटने से कोई बाधा ना आता,
2: वो बीमार पड़ गई, स्वास्थ्य खराब है तो भी काम रुक जाएगा, अगर समस्या आ गई फिर अगले दिन और बाद दिन भी कोनो समस्या आ गई तो क्या कर लेंगी?
3: कुछ नहीं, अंधविश्वास का कोई इलाज नहीं है,
2: चक्कर में ना पड़े है ना?
3: ना मतलब ही नहीं, अंधविश्वास तो सबसे खतरनाक चीज है। इसमें तो पछताने के अलावा है क्या? पछताओगे आखिर में? काम पूरा वैसे भी नहीं होगा तुम्हारा, शुभ या अशुभ की वजह से थोड़ी ना हो रहा है, काम गलत होगा तो फिर वैसे पछताओगे।
2: रीना बहन, पूजा को दिया बीच में बुझ गयो, विधवा स्त्री को दर्शन ही जाए तो भी अशुभ मानो जाते हैं।
3: ऐसा कुछ नहीं है, विधवा स्त्री का दर्शन तो शुभ है, अशुभ नहीं है। अच्छा वैसे अगर विधवा स्त्री सपने में देख लोगे तो कहे अरे हमने देवी देख ली, और तुम्हारी पूजा में बैठ गई तो अशुभ है? आप सपने में देख रहे हो तो विधवा स्त्री शुभ है, कह रहे हमने देवी मैया देख ली, विधवा को देख लिया, और वही विधवा स्त्री तुम्हारे घर में शुभ काम में आ गई तो वो अशुभ है, तो ये कैसा अंधविश्वास?
2: मतलब ये बेकार को बात है।
3: ये सब बेकार की बातें तो है।
2: ये सब अंधविश्वास बौद्धिक कमजोरी का सबूत देते हैं कि बाने कुछ सोचो ना समझो, बस मान बैठो।
3: मान बैठो, अंधविश्वास तो यही है। अभी तुम जाओ किसी से कहते अरे ये ऐसा हो गया तो बहुत जल्दी मान जाएंगे तुम्हारी बात है। तुम अगर किसी भी स्त्री को गांव की तुम अंधविश्वास की वो डालो तो वो तुम्हारी बातों में तुरंत आ जाएगी कि हाँ ये बहन सही कह रही है।
2: और कहूँ कहूँ तो देख के बस हंसी आए जाते, घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल लटकाए देते हैं,
3: इससे कोई नजर थोड़ी ना लग रही है।
2: अपने द्वारे पर नींबू मिर्ची लटकाए देते हैं, कहूँ कहूँ तो कुछ लिखो होते
3: इसमें तो जैसे बस ट्रक में तक लिख देते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जो ये नकारात्मक बातें रखता है, चाहे गांव का है शहर का भी, ऐसे नहीं है कि सारी बातें गांव के ही रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काला रंग है सब उसको दोष भी मानते हैं, तो फिर शनिदेव की पूजा क्यों करते हैं?
2: जो बात भी ठीक कह रही,
3: जब काला दोष काला कपड़ा खराब है या सफेद कपड़ा खराब है तो तुम सफेद कपड़े का दान क्यों करते हो?
2: फिर भी काले रंग को अशुभ मानो जाते हैं और 3 और 13 की संख्या को अशुभ मानते हैं।
3: जब

0: अच्छी है वो संख्या।
1: सही बात कह रही, मतलब जय है कि इन संख्यान को बिल्कुल भी अशुभ ना
0: नहीं माना जा सकता है। ना काले कपड़े को अशुभ मानो, ना सफेद कपड़े को अशुभ मानो। सफेद कपड़ा तो शांति का प्रतीक है।
1: 3 या 13 दिन आकर में को काम अगर करना है तो कर लें, मन में भय ना करें ना। कि
0: बिना भय के तुम करो कोई काम, तुम्हारा कुछ अशुभ नहीं हो सकता। दिमाग में से भय निकाल दें, अंधविश्वास निकाल दें।
1: बिल्कुल, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे
0: तो वही 13 तारीख आपके लिए शुभ बन जाएगी। सफलता तो तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी मेहनत से है, ना कि संख्याओं से है, ना कि कपड़ों से है, ना कि रंगों से है और ना संख्याओं से है।
1: रीना बहन, अंत में आप हमारी बहनन को का संदेश देना चाहेंगी?
0: अंत में तो मैं यही संदेश दूंगी कि अंधविश्वास से दूर रहे, कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उसको नजरअंदाज करके अरे क्या होता है इससे, मैं तो बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ नहीं, हम तो चले जाते हैं। गलत होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा, बिल्ली के काटने से ही थोड़ी ना होगा। यही कहूंगी मैं कि कोई अंधविश्वास में ना पड़े, अपनी मेहनत अपना कर्म करे और समय और धन बर्बाद ना करें, समझदारी से काम लें, सच्चाई को जानने की कोशिश करें, जीवन में आगे बढ़े।
1: ठीक है रीना बहन, धन्यवाद।
2: अंधविश्वास प्रगति में बाधक। जाय विषय पर बहनों, अभी आपने गांव की बातों के अंतर्गत क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुना। हमारे साथ बात कर रही हैं रीना बहन। तो बहनों, अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, ये बात आपने जान ली। और अब आओ बहनों, करते हैं थोड़ा सो मनोरंजन। मीना की आवाज में सुनते हैं जय लोकगीत।

अभी बहनों ने लोकगीत सुना। लोकगीत को अपनी मधुर आवाज दे ही बीना ने। और बहनों अब बारी है हमारे कार्यक्रम को पता लिखन की, तो जल्दी से कॉपी पेन लाएं और लिख लें हमारो कार्यक्रम को पता। बहनों पता है आंचल कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। बहने एक बार पता और समझ लें। बहनों पता है आंचल कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। जाई पते पर पत्र लिख के बहने कार्यक्रम आंचल के बारे में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और खुश रहें। जाई के साथ ही साथ बहने दें अपनी बहन गुलफिशा को अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आंचल। कार्यक्रम पेश कर रही थीं गुलफिशा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने वाले हैं, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: This is Akashvani, and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current Class 10 batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and UT Police at 5 p.m. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. President Murmu had earlier conferred gallantry awards at the Defence Investiture Ceremony Phase 1 at Rashtrapati Bhavan on the 8th of this month. Prime Minister Narendra Modi today visited and offered prayers at the Navasakti Vinayagar Temple in Victoria, Seychelles, on the third day of his visit to the African country. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park today. He has since departed for India after concluding his successful three-day visit to Seychelles. Yesterday, Prime Minister Modi attended the National Day celebrations of Seychelles, marking the 50th anniversary of independence of the country. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi's three-day visit to Seychelles marked a significant step in strengthening bilateral ties. During the visit undertaken at the invitation of President of Seychelles, Dr. Patrick Harmony, the two leaders held wide-ranging talks covering cooperation in healthcare, education, capacity building and maritime security and defense. They also discussed regional challenges in the Indian Ocean region, including illegal fishing, drug trafficking and piracy. Several MOUs and agreements in areas such as UPI, health, agriculture, shipping, space cooperation, extradition and line of credit were also exchanged between the two countries. Mr. Modi was also conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. He also addressed a special sitting of the National Assembly, becoming the first Indian Prime Minister to do so, reaffirming India's commitment to its long-standing partnership with Seychelles. With Ankit and Vishnu, this is Vishal Das, Akashvani News, Delhi.
0: The Central Board of Secondary Education, CBSE, today issued guidelines on the three-language policy. In a statement, the board said the current batch of Class 10th will not have to follow the new language policy. It also said the current batches studying in Class 7th, 8th and 9th will also not be required to give the board examination in the third language when they reach Class 10th. CBSE has further stated that students in the 7th, 8th and 9th classes who have already opted for two foreign languages will be allowed to continue with the same while studying one additional native Indian language. The board said the grade-appropriate resource material will be made available in a time-bound manner. The government has introduced The improvement notice mechanism under the Legal Metrology Act 2009 through the Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2026. Under the new mechanism, businesses committing specified first-time procedural or regulatory non-compliances will be given an opportunity to rectify the deficiency before penal proceedings are initiated. The Ministry of Consumer Affairs said the reform aims to promote ease of doing business by encouraging voluntary compliance, reducing unnecessary litigation, and supporting a more trust-based regulatory framework while maintaining strong consumer protection. The ministry highlighted that under the new mechanism, a legal metrology officer can issue an improvement notice to businesses committing specified first-time procedural or regulatory violations, giving them reasonable time to correct the deficiencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities in donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. A Delhi court today extended till July the 11th the judicial custody of 10 accused in the NEET UG 2026 paper leak case being investigated by the Central Bureau of Investigation, CBI. The accused were produced before the Rouse Avenue court through video conferencing on the expiry of their earlier judicial custody. Earlier on June the 15th, the Rouse Avenue court had extended the judicial custody of the 10 accused till today. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involved in procuring and circulating NEET UG question papers ahead of the examination. Congress President Mallikarjun Kharge today took oath as a member of the Rajya Sabha at the Parliament House in New Delhi. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan administered the oath to Mr. Kharge, who got re-elected to the upper house from Karnataka. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, Health Minister Jagat Prakash Nadda, senior Congress leaders Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi were present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah today chaired a meeting on signing of a water-sharing agreement between Haryana and Rajasthan in New Delhi. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil, Chief Minister of Haryana Naib Singh Saini and Chief Minister of Rajasthan Bhajan Lal Sharma were also present at the meeting. Addressing the event, Mr. Patil said under the agreement, Rajasthan's share of water will be supplied from the Hathni Kund barrage via an underground pipeline routed through the Western Yamuna Canal system during the monsoon season. He said this will ensure a long-term solution for drinking water needs in Churu, Sikar, Junjunu and other water-stressed regions of Rajasthan. He said continuous dialogue and efforts have taken place on this matter over the past few years and a consensus on the project's implementation framework was reached between the two states during a meeting held on the 23rd of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters under Special Intensive Revision SIR in the National Capital Territory of Delhi will begin tomorrow. Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, announced this while briefing the media in New Delhi today. He said booth-level officers will visit every household from tomorrow till the 29th of next month to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. Mr. Kumar said that claims and objections can be filed between the 5th of August and the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October.
2: Around over 13,000 PLOs have been deployed for this exercise and enumeration forms have already been provided to all of them. The PLOs will begin the distribution drive from tomorrow morning. In addition to the physical distribution, electors also have the option of filing and submitting the enumeration form online.
0: In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha performed the Pratham Puja at the holy cave shrine of Sri Amarnath Ji, marking the ceremonial start of the annual pilgrimage. The annual Yatra will officially begin on July the 3rd and is scheduled to culminate on August the 28th. After the special prayers, Mr. Sinha said, the administration, Sri Amarnath Ji Shrine Board, Army, Police, Security Forces, local community, service providers and volunteers were working in complete synergy to ensure a safe, hassle-free and memorable pilgrimage for the Yatris. Mr. Sinha added that the authorities and people of the UT were fully prepared to welcome the Yatris and significant facilities have been put in place for smooth conduct of the pilgrimage. In Odisha, the sacred city of Puri today resonated with unparalleled spiritual fervor as lakhs of devotees gathered for the annual Devasnan Purnima, the ceremonial harbinger of the world-famous Rath Yatra. Our correspondent reports on one of the most significant observances in the Jagannath tradition. More from our correspondent.
3: Lakhs of devotees witnessed the sacred Devasnana Purnima of Lord Jagannath at Puri today, marking the ceremonial commencement of this year's Rath Yatra festivities. Amid an atmosphere of profound devotion, Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan were ceremonially escorted in the traditional Pahandi Vijay procession from the Sanctum Sanctorium to the Snana Mandap, accompanied by the reverberating strains of conch shells, cymbals and temple percussion. In accordance with centuries-old temple traditions, the deities were ritually bathed with 108 pitchers of sanctified fragrant water drawn from the sacred Sunakua or golden well within the temple precincts. Following the elaborate ablution, the deities were adorned in the distinctive Gajanana or Hathi Vesa. They will now remain in ritual seclusion during the fortnight-long Anasara period before reappearing for the Navajovana Darsana ahead of the annual Rath Yatra scheduled to commence on the 16th of next month. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
0: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said, during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The delegation will also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has said she will return to Bangladesh before the end of this year, despite facing legal cases, a death sentence, and a ban on the political activities of the Awami League. Raising fresh questions over the exclusion of one of the country's largest political parties from the political process. In an interview with a TV channel, Hasina described the cases against her as politically motivated and accused the current authorities of using the judiciary to eliminate the Awami League from Bangladesh's political landscape. Hasina's remarks came as the Awami League observed its 77th founding anniversary amid a nationwide ban on its activities and extensive security measures. China has imposed new export controls on 40 Japanese entities, accusing them of contributing to Japan's remilitarization as tensions between the two countries continue to rise. China's Commerce Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL, seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
7: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
4: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा सातवीं, आठवीं और नवीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
8: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
4: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
9: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
4: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
10: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
4: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवजौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
4: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
4: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
4: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए

0: उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी।
2: आ, इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
3: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो
2: मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
3: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं
0: है?
3: कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
3: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
3: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा,
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा चुप्पा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश राजा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी गहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत ये कुल्हाड़ी है ना वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना हाँ? वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो वो तो अभी पूरा बड़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं कितने सुंदर हैं ये पेड़। अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
0: है भी काफी पुराना फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है। कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
2: ये देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़ और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
2: आई
0: क्या हुआ चुप्पा
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया आई।
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो ये चीड़ देवदार ओक खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है बरखा होती है बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं ना फल है ना फूल है कुछ भी नहीं है उसमें और ना ही उससे कोई लाभ है उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
2: समझ गई है।
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे, हाँ पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।
2: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। संध्या के 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब से लेकर शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

0: सखी सहेली
1: की सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना।
2: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
1: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती है कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
2: जी,
1: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
2: जी।
1: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
2: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूछकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले
1: उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहाँ पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नेहा
2: जी। बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
2: भाई देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं, रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
1: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आज की कसर।
0: जी
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ

0: सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
2: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है, केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है।

0: लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
2: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
0: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
0: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
3: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ठाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
0: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
4: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
0: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
3: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
5: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
3: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे, निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया, झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
0: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
1: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
1: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहां भी चलते हुए।
0: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहां पाया?
5: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
0: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
5: मुझे मेज पर नहीं मिला।
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूं, तुम भी याद करोगे।
1: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आने चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
1: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
3: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
1: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
2: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ।
4: मक्कार का मुंह काला।
1: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
7: तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
8: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
7: जी।

0: तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए।
1: भाई बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर
0: जी
1: समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है,
0: जी
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता
0: जी
1: है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे
1: बिल्कुल
0: संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: एक कार्यक्रम
1: सखी
0: सखी
1: सहेली,
0: सहेली।
1: और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, तो
0: हाँ
1: नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर
0: हाँ
1: ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं।
0: जी
1: लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं, वो इतनी न्यूज़ सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी, वो
0: जी
1: लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए।
0: हाँ
1: और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये
0: जी
1: फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए,
0: जी
1: लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए, जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये
0: जी
1: बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें,
0: और
1: है ना।
0: कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे
1: बिल्कुल
0: बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है। ऐसा लगता है कि वाह, कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है, उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं
1: लिखे
0: कि क्या क्या
1: ऐसा
0: नुकसान हो
1: नुकसान
0: सकते हैं
1: दे।
0: उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं
1: बिल्कुल
0: तो। बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना
1: दिखाते हैं।
0: लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक किरदार को दिखाया जा रहा है,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: और
0: इस
1: नेहा
0: किरदार में आपको क्यों ढलना है।
1: क्यों ढलना है, और
0: जी
1: नेहा जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है, वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो
0: जी
1: उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप
0: जी
1: अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब
0: हाँ
1: घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं, उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी में देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है, जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने
0: जी
1: अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की, संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस
1: बिल्कुल
0: उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बिल्कुल
0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी

0: उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए। यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है। तो
1: बिल्कुल
0: एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल
1: बिल्कुल
0: तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उस ओर बढ़ा जाए। तो
1: हाँ
0: वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना थोड़ा
1: छोड़े रहना
0: मुश्किल है, तो
1: मुश्किल
0: वहां
1: है
0: संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी
0: जी
1: बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है कथा सुधा, एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना
0: बिल्कुल।
1: ही दी
0: तो ये सब
1: है
0: तो
1: ना।
0: हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की
0: भाई,
1: बात बताता ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी।
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: यह है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो
0: बिल्कुल,
1: सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं, एक खास
0: बिल्कुल,
1: उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें
0: बिल्कुल,
1: स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी अच्छा
1: सब
0: है।
1: है
0: और दोनों को
1: जी।
0: पहल करनी पड़ती है इस
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी में नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी
1: जी
0: जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये
1: जी
0: नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है
1: जी
0: ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक छोटी सी
0: हाँ,
1: बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना
0: बिल्कुल,
1: जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरदारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है,
0: क्या बात
1: और
0: है
1: वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई एक
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है नेहा।
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं। लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते हैं कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना, और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें। तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत
0: बिल्कुल
1: ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां
0: पूरे
1: रहना है,
0: समय
1: जबकि
0: रहना
1: जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है।
0: जी
1: तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: दे
1: उन
0: दिए
1: पर,
0: जाए तो वो घबरा
1: तो वो एक
0: जाते हैं।
1: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो
0: बिल्कुल,
1: एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद
1: हाँ
0: भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि
1: जी
0: ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों
1: जी
0: पे
1: जी
0: खरी
1: जी जी
0: उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा।
1: जी
0: और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो
1: तो
0: नेहा
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें
0: बिल्कुल
1: भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जरदारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला
1: जी,
0: संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती तो हम संभालते हैं। तो
1: जी
0: कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप
1: जी
0: सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है,
1: जी
0: तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे, या
0: बिल्कुल
1: ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र
1: विवाह को अच्छी
0: है
1: तरह से
0: जी।
1: बंधन नहीं है, लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो, विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए अच्छा अच्छा
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना।
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा

0: लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूनें जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक, जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ये
1: हाँ,
0: क्या बना
1: तो
0: दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक का आपके स्वाद के अनुसार। अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए, तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है, कचौरियां तो बन ही चुकी हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए,
0: हाँ
1: छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को
0: बिल्कुल
1: मिलाकर खाइए।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो
1: तो
0: अब
1: बस हम
0: कार्यक्रम
1: चले,
0: से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जाँच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं, फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
1: हाँ, तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज़्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता।
0: जी
1: एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से भी किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस।
0: जी
1: अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
0: जी तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है, और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
0: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना
1: बिल्कुल
0: आप कहें तो हम सुनवाएं,
1: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों हो
1: अल्सर।
0: रहा है?
1: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते
0: जी
1: हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें? मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है? क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा।
0: जी
1: कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
0: जी
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
0: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है, और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है, कुछ ऐसा?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी

0: इम्पॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है, जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते
1: जी
0: हैं। तो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: कर
0: कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही।
0: दही से अच्छा कोई
1: हाँ
0: प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्स का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना एक
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या? किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम
0: जी
1: ना,
0: जी
1: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
1: हाँ
0: है?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और
0: डेंजरस
1: नुकसान डेंजरस होता है,
0: होता
1: उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज़्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफ़ी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: जो
0: जी
1: हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, हमारे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है, कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने
0: जी
1: कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी और एक बात डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज, खास तौर से जो योगा करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट भार आ जाता है ज़्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज़्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
0: जी तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है।
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई वो कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? तो
0: हाँ
1: बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ,
0: जी
1: पेशेंट
0: जी
1: का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
0: जी
1: पानी
0: जी
1: नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए।
0: ओके
1: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
1: बिल्कुल,
0: ख्याल।
1: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी
1: और
0: क्या
1: काफी
0: बात
1: सुना
0: है
1: है हमने।
0: जी।

0: है, और जब उसको एसिडी लग रही है, हो रहा है, बटन दबाता है, और विद इन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो सिम खाली एक सिम्टम हो सकता है। तो
1: जी
0: उसको 24 आवर पीएच, मैं हम पीएच प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस। ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती
0: तो
1: हैं?
0: कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतड़ी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो आई
0: जी
1: थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड, एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये
1: हाँ,
0: क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और
0: हाँ
1: एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है,
0: जी
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है। तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली हैं, मुझे
0: जी
1: इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये

0: बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि
1: जी
0: एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
1: जी जी
0: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि माइग्रेन ना हो, क्योंकि
1: ओके
0: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज के इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके
1: जी
0: लिए
1: जी
0: आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
0: कुछ
1: कहा
0: तो
1: कि
0: है,
1: जी
0: देर इज सम
1: हाँ
0: कोरिलेशन बिटवीन
1: ओके,
0: डाइट, ई नॉट
1: तो
0: ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है, तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज
1: ओके
0: बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर
1: यस
0: आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो
1: हाँ
0: माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल
1: फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है, तो
0: हाँ।
1: ये
0: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो, और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अल्क कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक
1: जी
0: एंड
1: जी
0: अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे?
1: जी
0: धूम्रपान, टबैको, सेम चीज़। धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज़्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल मेट एएलडी, मतलब जहाँ पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी। डॉक्टर साहब लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफ़ी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खानी खान पान साफ नहीं होता है, तब तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्शुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजुरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही, ये होता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: कॉमन है, वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं।
1: जी।
0: लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है, अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो
1: जी
0: ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपके गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी। और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं है, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ
1: जी
0: नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो IBS की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या
1: जी
0: नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले, अगर वॉमिटिंग इज अ प्रिडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ
1: जी
0: ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो
1: जी
0: बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय IBS की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी
0: हाँ
1: या
0: तो
1: कुछ नहीं?
0: नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है IBS?
0: एक्चुअली IBS में कुछ नहीं आया होता, IBS इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है, इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो,
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

कभी न दुख झेलेंगे।

0: सब आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो। तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहे ये तेल अच्छा है ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाईज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: स्टेरॉइड भी आ रहा है
1: स्टेरॉइड्स
0: आजकल
1: भी
0: आप
1: आता
0: बता रहे
1: है।
0: हैं।
1: और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरल सूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी।

शुभ संध्या। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई से कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी रामपुर से हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

ये आकाशवाणी रामपुर है। सभा के आरंभ में सुनिए फिल्म संगीत का कंपेयर्ड प्रोग्राम आज शाम

आज शाम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, जिंदगी का एक अजीब सा सच है, बचपन में जब जेब खाली होती थी तब हम बहुत अमीर महसूस करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास हंसी थी, दोस्त थे, परिवार था और बेफिक्र होने कर जीने की आज़ादी थी। फिर समय बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी और धीरे धीरे जिंदगी का हिसाब किताब भी बदलता चला गया। अब हर सपना, हर ज़रूरत और हर मंजिल कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ती चली गई। आखिर पैसा इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। बिल्कुल सच बात है, हमारे सपनों को पंख देता है और मुश्किल वक्त में हमारा सबसे मजबूत सहारा बनता है। लेकिन जब यही पैसा इंसान की पहचान बनने लगे, जब रिश्तों की अहमियत उसके कीमत से कम आकी जाने लगे, तब कुछ सवाल अपने आप ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्या किसी की मुस्कान की कोई कीमत हो सकती है? क्या माँ की ममता को खरीदा जा सकता है? क्या पिता के त्याग का कोई मूल्य लगाया जा सकता है? और क्या सच्चे रिश्तों का कोई बाजार हो सकता है? शायद नहीं। फिर भी आज की दुनिया में अक्सर इंसान की बात सबसे पहले उसकी हैसियत देखी जाती है। कई बार सच और झूठ का फैसला भी भारी जेब की गहराई से ही होने लगता है। भारी जेब जब भी होती है तो इंसान की खामियां भी खूबसूरती में बदल जाती हैं। भारी जेब बहुत कुछ दबा ले जाती है, आपकी कमियां खूबसूरती में बदल जाएंगी और बहुत कुछ जो आप में गलत होगा वो सब कुछ एक सुंदरता में तब्दील होता चला जाएगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसा बोलता है, लेकिन ये उतना ही सच है कि पैसे की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, पर दिल की आवाज़ शायद उससे भी गहरी होती है। पैसा आपको भीड़ तो दे सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। पैसा आपको ताली बजाने वाले लोग तो दे सकते हैं, लेकिन मुश्किल समय में कांधा देने वाले नहीं। कहा भी गया है, पैसा कमाइए मगर इस तरह के रिश्ते ना बिकें, कामयाबी पाइए मगर इस तरह की इंसानियत ना छूटे। क्योंकि आखिर में याद बैंक बैलेंस नहीं आता, याद आते हैं वो लोग जिन्होंने बिना किसी मतलब के आपका साथ निभाया था। इन्हीं भावों को, इन्हीं सवालों को और आज के समाज की सच्चाई को अपने अनोखे अंदाज में बयां करता है हमारे कार्यक्रम का ये गीत। ऐसा गीत जो सिर्फ पैसे की बात नहीं करता बल्कि उस सोच का आईना भी दिखाता है जहां अक्सर दौलत की आवाज़ इंसानियत की और इंसान की आवाज़ से ऊंची सुनाई देने लगती है। तो आइए सुनते हैं ये शानदार गीत।

अच्छा, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रामपुर के साथ। श्रोताओं, कहते हैं पैसा बहुत कुछ बदल सकता है, ज़रूरतों को आसान बना सकता है, सपनों को उड़ान दे सकता है और संघर्ष के रास्तों को थोड़ा सा सरल कर सकता है। लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रह जाता है, क्या पैसा समय खरीद सकता है? क्या पैसा बीता हुआ बचपन लौटा सकता है? क्या पैसा किसी अपने को हमेशा के लिए अपने पास रोक सकता है? शायद नहीं। आज की दुनिया में हर कोई कमाने की दौड़ में है, सुबह से शाम तक भागते हुए हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कमाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए मिली है। पैसा कमाना ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी तलाश में हम अपने रिश्ते, अपनी मुस्कान और अपना सुकून ही खो दें। कभी कभी सोचिए ज़रा कि जिस धन को जोड़ने के लिए हमारी पूरी उम्र निकल जाती है, उसे यहीं छोड़ कर जाना पड़ता है। बैंक खाते, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी और न जाने क्या क्या, ये सब यहीं रह जाता है। अक्सर कुछ साथ चलता है तो वो हैं हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और लोगों की दुआएं। तभी तो मुझे कबीर दास जी का एक भाव याद आता है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यानी इतना धन हो कि जीवन में सम्मान से बीते, लेकिन धन का अहंकार कभी मन पर हावी ना हो। क्योंकि सच तो यही है कि पैसा इंसान की ज़रूरत है, पहचान नहीं। और जिस दिन ये ज़रूरत पहचान बन जाती है, उसी दिन जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। शायद इसी गहरे भाव को शब्दों में कहना चाहता है हमारे कार्यक्रम का ये गीत।

हम उम्मीद करते हैं कि इस गीत को सिर्फ आपने सुना नहीं होगा बल्कि महसूस भी किया होगा, क्योंकि ये गीत हमें याद दिलाता है कि दौलत कमाने से पहले इंसानियत कमाना ज़रूरी है। आखिर में तिजोरियां नहीं खुलती, यादों के पन्ने खुलते हैं। बैंक बैलेंस नहीं गिना जाता, लोगों के दिलों में हमारी जगह गिनी जाती है। याद रखिए, पैसा ज़िंदगी जीने का ज़रिया है, ज़िंदगी का मकसद नहीं। और जो इंसान ये फ़र्क समझ गया वही सच में अमीर बन गया। फिलहाल अब आज शाम से इस वादे के साथ अब इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। नमस्कार।

आज शाम अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कम्पेट प्रोग्राम। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। ये समय है युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का। आइए सुनते हैं मोहम्मद आफताब खान और कशिका अग्रवाल के साथ कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सुन रहे होंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट कशिका अग्रवाल।
1: और दोस्तों, साथ हूं मैं आफताब खान। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की आज के सवाल के साथ। हमारा आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना यानी PMSGY के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पर है?
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी PMSGY के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पर है? और हर रोज की तरह आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी रामपुर और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने हैं अपने अपने सही जवाब। फिर हर रोज की तरह सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर।
1: अरे कशिका, आज सुबह मैं एक दोहा पढ़ रहा था तो लगा कि जैसे सदियों पहले कही गई बातें आज भी हमारे जीवन में फिट बैठती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आफताब। और लगता है तुमने संत कबीर दास जी का दोहा पढ़ा होगा। उनके विचार जितने सरल हैं उतने ही गहरे भी। और आज तो संत कबीर दास जी की जयंती भी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा कशिका। और क्या तुम जानती हो, कबीर दास जी का जन्म वाराणसी के लहरतारा क्षेत्र में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया। उन्होंने अपने अनुभव और चिंतन से समाज को अमूल्य ज्ञान दिया।
0: बिल्कुल ठीक कहा। और तुम्हें पता है, संत कबीर ने अपना जीवन बुनकर के रूप में बिताया। वे मेहनत करके आजीविका कमाते थे और साथ ही अपने दोहों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध करते थे। और उनके लिए सबसे बड़ा धर्म मानवता था।
1: बिल्कुल ठीक कहा। और उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोए, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोए। यानी यदि हम पहले अपनी कमियों को पहचान लें तो दूसरों की आलोचना अपने आप कम हो जाएगी।
0: और अफताब, इसी तरह उन्होंने धैर्य का भी संदेश दिया, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये दोहा बताता है कि हर काम अपने समय पर ही होता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा। संत कबीर जी के विचार आज भी हमें प्रेम, सत्य, समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं।
0: बिल्कुल आफताब, यही कारण है कि सदियों बाद भी उनके दोहे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं और जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो आइए श्रोताओं, संत कबीर दास जी की जयंती पर हम उनके बताए मार्ग पर चलने और अपने जीवन में प्रेम और मानवता को अपनाने का संकल्प लें।
0: साथियों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है खास।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, हर वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनकी प्राकृतिक विरासत और उनके संरक्षण की आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
3: साथियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के वे हिस्से हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये क्षेत्र घने जंगलों, नदियों, पर्वतों और समुद्री तटों, अद्भुत जैव विविधता से भरपूर है। दुनिया की अनेक दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव जंतु इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
0: इतना ही नहीं दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी आबादी अपनी आजीविका, भोजन, औषधियों और प्राकृतिक संसाधनों के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर है। उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के जलवायु संतुलन को बनाए रखने और कार्बन के अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: हालांकि जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण इन क्षेत्रों का प्राकृतिक संतुलन लगातार प्रभावित हो रहा है। यदि समय रहते इनके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
0: इस अवसर पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। छोटे छोटे प्रयास जैसे वृक्षारोपण, जलवायु संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
3: दोस्तों, आइए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पर प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित एवं हरित भविष्य सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें। दोस्तों, साथ ही कुछ खास है आज में, आज ही के दिन यानी हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारत के महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने भारत में सांख्यिकी को नीति निर्माण और विकास का एक सशक्त आधार बनाया।
0: दोस्तों, सांख्यिकी केवल अंकों और तालिकाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ये किसी भी देश की प्रगति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है। जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, उद्योग और अर्थव्यवस्था जैसी अनेक क्षेत्रों में योजनाएं विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती हैं।
3: और वो कहते हैं जब आंकड़े सही होते हैं तो सरकारें लोगों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाती हैं और संसाधनों का उचित वितरण कर सकती हैं। यही कारण है कि सटीक आंकड़े किसी भी सफल योजना और प्रभावी निर्णय की नींव बन जाते हैं।
0: आज के डिजिटल युग में डेटा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। शोध, विज्ञान, व्यापार, शिक्षा और तकनीक, हर क्षेत्र में सांख्यिकी की भूमिका लगातार विस्तृत होती जा रही है। यही जानकारी हमें बेहतर निर्णय लेने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सक्षम बनाती है।
3: दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंकड़े केवल संख्याएं नहीं होती बल्कि वे समाज की वास्तविक स्थिति को समझने और विकास की दिशा तय करने का प्रभावी माध्यम है।
0: आइए इस अवसर पर सांख्यिकी के महत्व को समझें और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: साथियों, ये था हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं शानदार सा गीत।

0: आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ में, जिसमें कशिका ने बात की है विशाखा राठौड़ से, जो कि एक शिक्षिका हैं। आइए जानते हैं कि हमारे युवाओं को उन्होंने क्या सलाह दी है।
1: तो साथियों शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ, और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विशाखा जी। विशाखा जी कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो विशाखा जी मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे श्रोता साथियों को अपना परिचय दें, फिर हम जारी रखेंगे हमारी बातचीत।
2: जी बिल्कुल मैम,
3: मेरा नाम विशाखा राठौर है और मैं रामपुर की ही रहने वाली हूँ, और मैंने अपनी सारी पढ़ाई रामपुर से ही कंप्लीट की है, और हाल ही में मैंने KVS मेंस की परीक्षा दी है।
1: जी विशाखा जी, तो अभी आपने बताया KVS मेंस की परीक्षा के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि इस बारे में हमारे श्रोता साथियों को कुछ बताइए।
3: मैम KVS मेंस केंद्रीय विद्यालय संगठन, मैम ये एक ऐसा संगठन है जो केंद्र स्तर पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें मैंने मैम प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए ये परीक्षा दी है। मैम KVS मेंस में बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है वो 60-40 के रेशियो में डिवाइड होता है। इसमें 60 क्वेश्चंस मैम ऑब्जेक्टिव होते हैं, जबकि 10 क्वेश्चंस मैम सब्जेक्टिव होते हैं। वन क्वेश्चन कंटेन्स 10 मार्क्स।
2: तो मैंने DLED किया है जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होती है, तो मैंने ही।
1: तो जैसे अभी आपने बताया KVS मेंस के बारे में, तो इस वर्ष जो KVS की परीक्षा में कुछ बदलाव आए हैं।
2: जी जी जी मैम,
1: तो इन बदलावों के बारे में हमारे श्रोता साथियों को कुछ बताइए।
2: जी मैम, लास्ट से मैंने परीक्षा दी थी 2018 में, तब उस समय मैम इस परीक्षा में ऑप्शनल क्वेश्चंस होते थे, यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता था, सिर्फ एक एग्जाम होता था, उसके बाद मैम इंटरव्यू।
3: बट मैम 2026 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, और अब इसमें एक प्री, आफ्टर दैट मेंस एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। मैम प्री की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जबकि मेंस की परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होती है मैम।
1: जी, और अब आपका इंटरव्यू बचता है।
2: जी जी मैम, अगर ये क्लियर हो जाता है मैम तब मेरा इंटरव्यू होगा फिर।
1: चलिए बहुत बहुत बधाई आपको इस पूरी स्टेज क्लियर करने के लिए।
2: थैंक यू मैम।
1: विशाखा जी अंत में हमारे युवा साथियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
3: मैम अंत में मैं अपने युवा साथियों से बस यही कहना चाहूँगी, अगर वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो वो अपने लिए एक गोल सेट करें या अपना एक टारगेट सेट करें, जिससे मैम उन्हें किसी भी चीज़ को प्रभावपूर्ण तरीके से करने में हेल्प मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे युवा साथियों को मानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले एक गोल ज़रूर सेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी आपका आकाशवाणी रामपुर से जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू मैम।
0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विशाखा राठौड़ जी को।

साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिन है सोमवार और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट करियर डायरी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सब सेगमेंट जॉब अपडेट्स को।

0: जिसमें हम आपको बताते हैं देश भर की प्रमुख सरकारी नौकरियों की महत्वपूर्ण जानकारी। आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली जॉब अपडेट है SBI PO रिक्रूटमेंट 2026। भारतीय स्टेट बैंक ने 1500 प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 18 जून 2026 से शुरू होकर 8 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क ₹750 है, जबकि SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जा सकते हैं।
1: दोस्तों, हमारी अगली जॉब अपडेट है UPSC PCS प्री रिक्रूटमेंट 2026। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 500 पदों पर PCS प्रारंभिक परीक्षा की भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। अगर बात करें आयु सीमा की तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सामान्य और OBC वर्ग के लिए आवेदन शुल्क ₹125, SC ST के लिए ₹65 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ₹25 है। अभ्यर्थी का स्नातक होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट upsc.up.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: साथियों, हमारी अगली वैकेंसी जुड़ी है UP SSC विधान भवन गार्ड /फायर गार्ड रिक्रूटमेंट 2026। UP SSC ने 170 पदों पर विधान भवन रक्षक एवं अग्निशमन रक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 9 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 29 जून यानी आज ही के दिन है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए ₹225, SC ST के लिए ₹105 तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ₹25 है। साथ ही आपको बता दें, अभ्यर्थी का 12वीं उत्तीर्ण होना तथा वैध PET स्कोर होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: साथियों, हमारी अगली जॉब अपडेट है RPSC RAS प्री रिक्रूटमेंट 2026। आपको बता दें, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती अनुसूचना जारी की है, जिसके आवेदन 4 जून 2026 से शुरू होकर 3 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें आयु सीमा की तो आवेदन करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और आवेदन करने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क ₹600 तथा आरक्षित वर्गों के लिए ₹400 है। अगर बात करें शैक्षिक योग्यता की तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो है rpsc.rajasthan.gov.in।
0: साथियों, हमारी अगली एवं इस सेगमेंट की अंतिम वैकेंसी है भारतीय नौसेना 10+2 BTech कैडेट भर्ती 2026, जिसमें कुल पदों की संख्या 60 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग के लिए भी 30 पद। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को 12वीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कम से कम 70% अंक और कक्षा 10 या 12वीं में अंग्रेजी में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। साथ ही उन्हें वैध अखिल भारतीय CRL रैंक के साथ JEE मेंस 2026 में उपस्थित होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच होना चाहिए। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 19 मई 2026 से अंतिम तिथि 29 जून 2026 यानी आज ही के दिन है। आवेदन शुल्क की बात करें तो किसी भी उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.government.in। तो श्रोताओं, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो इन अवसरों का लाभ अवश्य उठाइए और आवेदन की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखिए। फिलहाल आज के साप्ताहिक रोजगार समाचार में बस इतना ही। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

0: साथियों, अब समय है हमारे दूसरे सब सेगमेंट स्टार्टअप का, और स्टार्टअप में आज हम बात करेंगे शुगर फ्री मिठाइयों की। शुगर फ्री मिठाइयाँ, नाम सुनते ही मन में एक ऐसा मिठाई घर उभरता है जहाँ मिठास तो भरपूर हो लेकिन शक्कर नहीं, जहाँ स्वाद भी मिले और सेहत भी।
1: दोस्तों, आजकल मधुमेह, मोटापा और बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण लोग मिठाई खाना चाहते हुए भी अक्सर खुद को रोक लेते हैं। ऐसे में ये स्टार्टअप एक बेहतरीन और समय की ज़रूरत वाला विचार साबित हो सकता है।
0: दोस्तों, इस स्टार्टअप की शुरुआत बहुत बड़े निवेश से नहीं करनी, बल्कि सही सोच और अच्छी गुणवत्ता से की जा सकती है। शुरुआत में घर से ही सीमित मात्रा में शुगर फ्री मिठाइयाँ बनाकर लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। जब ग्राहकों का भरोसा बनने लगे, तब एक छोटे से आउटलेट या क्लाउड किचन के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
1: इस मिठाई घर की सबसे बड़ी खासियत होगी कि यहाँ चीनी की जगह प्राकृतिक विकल्प जैसे स्टीविया, खजूर, अंजीर या अन्य स्वास्थ्यवर्धक मिठाई मिठास का उपयोग किया जाएगा। साथ ही बाजरा, रागी, सूखे मेवे, बीज और अन्य पौष्टिक सामग्री से ऐसी मिठाइयाँ तैयार की जाएंगी जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण भी दें।
0: और अब सवाल है कि इसे सफल कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले गुणवत्ता और भरोसा। हर मिठाई में अच्छी सामग्री और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर ग्राहक को ये भरोसा हो जाए कि यहाँ की मिठाई स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, तो वही ग्राहक आगे कई नए ग्राहकों को साथ लेकर चलेगा।
1: और दोस्तों, दूसरी बात, प्री ऑर्डर मॉडल। क्योंकि हेल्दी मिठाइयों में ताजगी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अधिकांश मिठाइयाँ ऑर्डर मिलने पर ताज़ा तैयार की जा सकती हैं। इससे बर्बादी भी कम होगी और ग्राहक को बिल्कुल ताज़ा उत्पाद मिलेगा।
0: और साथ ही दुकान में कुछ लोकप्रिय मिठाइयाँ जैसे शुगर फ्री लड्डू, बर्फी, काजू रोल, ड्राई फ्रूट बाइट्स और एनर्जी बोल्स हर समय उपलब्ध रखी जा सकती हैं, ताकि अचानक आने वाला ग्राहक भी खाली हाथ ना लौटे।
1: और साथियों, त्योहारों और विशेष अवसरों पर विशेष गिफ्ट पैक और कस्टम ऑर्डर की सुविधा भी दी जा सकती है। इससे कॉरपोरेट गिफ्टिंग, परिवारों और परिवार आयोजनों से बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
0: और आज के समय में सोशल मीडिया भी किसी दुकान की पहचान बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मिठाइयों की आकर्षक तस्वीरें, उनकी पोषण संबंधी जानकारी, ग्राहकों की राय और छोटे छोटे वीडियो लोगों का विश्वास जीतने में मदद करेंगे।
1: इसके साथ ही प्रत्येक मिठाई की पैकेजिंग पर उसके पूरे पोषण संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए, जैसे एक पीस या 100 ग्राम में कितनी कैलोरी हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसे मीठा बनाने के लिए किस प्राकृतिक विकल्प का उपयोग किया गया है। इससे ग्राहक पूरी जानकारी के साथ अपनी पसंद की मिठाई चुन सकेंगे और उनके मन में उत्पाद के प्रति विश्वास भी अधिक मजबूत हो जाएगा।
0: शुगर फ्री मिठाई की दुकान केवल एक दुकान नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच हो सकती है जो ये संदेश दे कि मिठास का आनंद लेने के लिए सेहत से समझौता करना जरूरी नहीं है।
1: तो अगर आपके पास स्वाद, गुणवत्ता और कुछ नया करने का जुनून है, तो ये स्टार्टअप न केवल एक सफल व्यवसाय बन सकता है, बल्कि लोगों के जीवन में स्वस्थ मिठास घोलने का माध्यम भी बन सकता है। आखिरकार जब मिठास और स्वास्थ्य के साथ, तो हर खुशी बन जाती है और भी खास। साथियों, ये था हमारा सब सेगमेंट स्टार्टअप। हमारे सब सेगमेंट स्टार्टअप में बस इतना ही। आइए बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे इस गीत का आनंद लेते हुए।

0: साथियों, अब समय है प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव का और आज पूछे गए सवाल के सही जवाब को जानने का। और हमारा आज का सवाल था, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी PMSGY के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पर है? और इसका सही जवाब है लखनऊ।
1: जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है लखनऊ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का अग्रणी जिलों में

0: शामिल है। दोस्तों, हैरानी की बात है कि आज हमारे केवल दो श्रोता साथियों ने सवाल का सही जवाब दिया है, जिसमें मिसबा शमसी और राजवीर सिंह यादव जी शामिल हैं। उम्मीद है कि कल के सवाल में आप सभी सवाल का सही जवाब देंगे।
1: दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम, बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केन निदेशक, आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड संख्या 244901।
0: दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: दोस्तों, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9410087876। अब समय है आपसे विदा लेने का। आपकी रेडियो साथी कशिका अग्रवाल को दीजिए इजाजत
0: और आफताब खान को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

आफताब खान और कशिका अग्रवाल के साथ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा

0: साधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
2: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन, मन, धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
3: पानी, पानी
4: कहाँ से लाऊं? पानी,
3: पानी
4: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
3: पानी
4: कई दिन हो गए, पानी हलक से नहीं उतरा।
3: पानी

0: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
1: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
2: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
3: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
2: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
1: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
2: जागिए और जगाइए,
3: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
1: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
2: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
4: से नो टू प्लास्टिक।
5: क्यों करते मुझको बर्बाद, बस इतना तो रखना याद, मेरे बिना संभव न जीवन, सर्व सुलभ मैं हूँ अमूल धन।
6: जी हाँ, पानी है जीवन की आस, जल संरक्षण का करो प्रयास।

0: मैं प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
1: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
0: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
2: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कबीर सिंह इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की आवाज़ में, शब्द लिखे थे कुमार ने और संगीत था अखिल सचदेवा का। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं सत्यमेव जयते। इस फिल्म का गीत आवाज़ होगी आतिफ असलम और तुलसी कुमार की।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं अब किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो हेमपाल भैया, राम राम।
1: राम राम भैया, और हमारे जो कार्यक्रम सुनने वाले भैया बहन हैं उनको भी हम दोनों की
0: राम राम। हेमपाल भैया,
1: हाँ भैया,
0: सबसे पहले तो घर की राजी खुशी सुनाबो।
1: भैया सब ठीक ठाक हैं, लेकिन जो गर्मी पड़ रही है जासे बड़े हाल बेहाल हैं।
0: भैया देखो, गर्मी तो पड़ी रही है, मानसून थोड़ो लेट ही गो है और अब आ रही है कि एक आध दिन की बात है, बस जो आखिरी समय जो होता ना वो भैया सह होना जाते।
1: अरे भैया जय आस में पानी ना लगाओ खेतन पर, और खाद उद सब ऐसे रखो, और उर्वरक वगैरह जो रखें वे सब ऐसे रखें कि कौ वर्षा है। हाँ। और कौ हम जाके जे उर्वरक वगैरह लगावे खेतन में अपने।
0: बस जय तो बहुत बड़ी कमी कर रहे हो, फसल में पानी की बिल्कुल भी कमी ना होनी चाहिए। जब आपको लागे कि बारिश ना ही रही है और हमारी फसल पानी चाह रही है तो बाय लेट मत करो, पानी समय से जरूर लगाओ।
1: भैया जो बात तो आपकी सही है, लेकिन जो एक दो दिन से बादल ही रहे हैं तो हम जैसे सोच रहे हैं कि ना जानी जाए बारिश ही आ जाए, इसलिए रुके पड़े। हाँ। अगर और दो दिन ना भाई तो भैया पानी लगाएगा और फिर उर्वरक डालेंगे।
0: अब भैया देखो, बारिश तो पड़न बारी की संभावना है ही, अब एक आध दिन देख लियो ना, तो भैया पानी गन्ना को जरूर लगाओ। गन्ना की फसल जो है हमारी एक साल की फसल है, और भैया एक साल की फसल में अगर आप ऐसी ढेम ढाल करोगे तो भैया नुकसान ही सकता है।
1: बिल्कुल भैया।
0: और भैया देखो, फसलों में हमारे भैया इस समय खरीफ की मौसम की जो मुख्य फसल है धान, वो लगा ही रहे हैं। और देखने में जब आती है ना कि हमारे किसान भैया एक दूसरे की देखा दानी उर्वरकों को प्रयोग ज़्यादा करते हैं।
1: बिल्कुल भैया, क्योंकि पता है हम का सोचते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी को खेत अच्छा है, अच्छा चल रहा हो, वहाँ मिट्टी की जांच करा लिए और वहाँ बता ही ना, और बाकी खेत बड़ो अच्छा फसल उठ रही है। हाँ। तो हम सोचेंगे अरे जान निरु खाद लगा हुआ है, तो हम जहाँ एक कट्टा लगाने को जा रहे हैं, दो कट्टा तीन कट्टा लगा।
0: भैया देखो, बस होता है कि फसल हमारी जो है ज़्यादा मुलायम जाती है, बड़बड़ अच्छी करती है, रंग बढ़िया जाता है, जातू लगते हैं, लेकिन फसल अंदर से कमजोर हो जाती है।
1: बिल्कुल भैया।
0: और बाकी वजह से होता है कि जो हमारी फसल पे रोग हैं,

0: हैं वे ज़्यादा लगते हैं, और जब वे ज़्यादा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी फसल ज़्यादा जल्दी ख़राब होगी, और संग ही संग हम वापस जो है कीड़न की दवा और बीमारी इनकी दवा बार बार स्प्रे करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल भैया, आपने जो बात सही कही, हम अपनी आप बीती बताओ भैया, तो हमने पिछले साल का करो ना गन्ना को खेतों, हमने वामक कई फेरे यूरिया लगाई और अनाप शनाप लगाई खूब, तो वो का भाव कि खूब बढ़ गई, हमने जिबरेली को वहाँ प्रयोग करो खूब बढ़ गई, जब वो गिरो गन्ना तो बंदवान को वहाँ में समय ना मिल पाओ क्योंकि वो इतो बढ़ गया, अगर बंदवान रहे तो टूट रहे हो, जब वहाँ में भैया जब पैदावार हमने लई ना भाई कटाई करी तो वो कुल 40 को ही कटू।
0: और भैया 40-50 तक अगर गन्ना कट रहे हो ना तो जब मान के चलो आपको जो है लॉस ही रहो, यानी हानि नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: जब तक गन्ना 70-80 को ना कट रहे तो भैया लाभ ना है। जो हर एक चीज़ की जो महंगाई है बढ़ जा रही है, आप देखो जो श्रमिक हैं बेहू पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, खुदाई कितनी महंगी हो गई है, पानी देखो भैया महंगो ही रहोगे, तो ये सारी बातें हैं हमारे किसान भैया इनको ध्यान में रखें।
1: तो भैया मैंने देखो अब आप समझ गए होंगे कि जो हम अपनी फसलों में अनाप शनाप अंधाधुंध उर्वरकों को प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल सही ना है, हम मिट्टी की जाँच करा कर उर्वरकों को प्रयोग कराएँ, और साथियों देखो उर्वरकन को ही प्रयोग करना ही जरूरी ना है कि हम उर्वरकन को प्रयोग करेंगे तभी हमारी फसलें अच्छो पैदावार दें, अच्छी फसलें हुई, उसके साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको भी देना बहुत जरूरी है।
0: भैया देखो अगर हम मिट्टी की जांच कराते हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब हमें मिलते हैं तो वहाँ में सारी चीज़ें होती हैं कि हमारी मिट्टी को पीएच मान कितना है, हमारी मिट्टी की जीवांश कार्बन क्षमता कितनी है, बाकी ईसी कितनी है, पीएच मान के साथ साथ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, सूक्ष्म तत्वों में हम बात करें तो जिंक है, लोहा है, सल्फर है, मैंगनीज है, ये सारी चीज़ें की हमें जानकारी ही जाती है। बाइक के हिसाब से अगर हम अपने खेतन में इन चीज़ों को प्रयोग करेंगे तो हमें आसानी से अपनी फसल से अच्छी लाभ मिल सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भैया जो काम ना कराते हैं, जबकि काम में ज़्यादा मेहनत ना है लेकिन देखा दानी एक दूसरे के बाने एक कट्टा अगर यूरिया डाली तो हम 2 कट्टा डालने को प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और भैया देखो इस बार जो है सरकारों ने जा पर थोड़ा ध्यान दोगे और किसान भाइयों को जो यूरिया है ना वो एक हिसाब से दे रहे हैं जो वैज्ञानिक ने हमारे कही है, बाइक के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को यूरिया खाद जो है मिल रहा है।
1: हाँ, अनाप शनाप डालने के लिए ना मिल रहा
0: है। और जिसके पास जितनी ज़मीन है बाइक के हिसाब से खाद मिलेगा, और हमारे किसान भैया कुछ जो चिंता में लगे हुए हैं कि हम पहले तो खूब फल डालते अब हमारी फसल कैसे अच्छी होगी।
1: बिल्कुल भैया, और भैया देखो जो सीमित मात्रा में ना खाद मिल रहा है, हम तो जाए अपने नतीजा पहुंचे और हमने पड़ोसी इनको भी जाए बताओ कि आप देखो इस बार हमारी सरकार ने कितनी अच्छी सोची है कि हमें सीमित मात्रा में खाद दे रही है, तो हम उसको लाभ उठावें अपनी फसल को, एक बार कम खाद सीमित मात्रा में खाद देकर देखें तो देखो आपकी फसल कैसी हुई। तो हमों ने और हमारे पड़ोस के किसान नऊ इस बार बहुत ही कम मात्रा में यानी सीमित मात्रा से कम में खाद लगा हुआ है तो सबकी फसल अच्छी है।
0: देखो गन्ना की फसल तो इस समय जैसे हमें खाद मिल लो बाइक के हिसाब से डाल हुए, अब धान की फसल शुरू ही रही है तो धान में भी हम अगर जो संतुलित मात्रा में उर्वरक हैं उनको प्रयोग करेंगे, और भैया हम अगर बात करें ना तो 1 एकड़ में 2 कट्टा जो है प्रति एकड़ जो है लगा हमारे किसान भाई यूरिया के तो पर्याप्त है। होता है कि जैसे ही हमने फसल लगाई और 1 हफ्ता की फसल भाई तो लव पूरा कट्टा डाल दो।
1: हाँ, एक बार में एक कट्टा डाल देते हैं।
0: और होता है कि उस समय फसल हमारी सही तरीके से खड़ी ना हो पाती है, यानी कि बाकी जड़ ना जो है जमीन के संपर्क में आ पाती हैं और पौधा जो है बड़बड़ करना शुरू ना करते, तो हमारे किसान भैया एकदम ऐसी करते हैं शुरू में जब खाद डालें तो भैया 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर डालें तो ज़्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल भैया,
0: जैसे ही हमारी फसल जब 15 से 20 दिन की होती है बाद समय जो है आपने देखी होगी कल्ला बनना की अवस्था होती है, बाद समय हमें फसल को अच्छो खाद की आवश्यकता होती है तब आप खाद डालो तो बढ़िया रहता है।
1: और यूरिया खाद तो एक ऐसा खाता है कि हमारे वैज्ञानिक जा कहते हैं कृषि वैज्ञानिक कि आप यूरिया को एक बार में ना जाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब दोगे तो वो फसल को अच्छा मिलता है और उससे फसल भी अच्छी होती है और कीट और रोग भी अधिक ना लगते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर आपने एक बार में यूरिया लगा दी तो उससे खेत में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है यानी कचुआपन ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से कीट हर फसल में ज़्यादा लगते हैं।
0: और अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोगे ना तो पौधे ज़्यादा मात्रा में यूरिया यानी कि जो नाइट्रोजन होते हैं बाको शोषण कर सकेंगे, और एकदम देखो तो वे कम मात्रा में नाइट्रोजन को शोषण कर पाते हैं, जहाँ वजह से यूरिया जो हमारी काफ़ी हद तक बेकार चली जाती है।
1: इसलिए भैया बहनों देखो, अब आप समझ गए होंगे कि हम कि अपने फसलों में अनाप शनाप उर्वरकों को प्रयोग ना करें, मिट्टी की जाँच कराने के बाद ही उर्वरकों को और सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रयोग करें। और साथ ही साथ भैया हम तो यह कहेंगे कि आप रसायनों से बचें और देसी खाद, बर्मी कंपोस्ट खाद या फिर सिटी कंपोस्ट खाद, कोई भी कंपोस्ट खाद को आप खेत में प्रयोग करें। अगर आपके पास किसी भी प्रकार को कोई कंपोस्ट खाद न मिल पा रहा हो तो आप हरी खाद को प्रयोग करें, फसल चक्र को अपनाएं। अगर आप इस तरह से अपनी खेती करोगे तो पैदावार भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा हो, साथ ही साथ हमारी लागत भी कम आवेगी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, हमारे किसान भैया गांठ बांध लें, संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों को प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप जो है देखी होगी ना, जहां हमारे किसान भैया गेहूं धान कर रहे हैं, गेहूं धान ही करते चले जा रहे हैं, जिन खेतों में गन्ना कर रहे हैं वो गन्ने करते चले जा रहे हैं, यानी कि कोई भी फसल चक्र को ना अपनाते हैं, वजह से भी हमारी जो लागत है वो बढ़ रही है और साथ ही साथ जो हमारी उत्पादन है वो कम ही रहे।
1: और जाके संग संग हमारे किसान साथी कहते हैं कि अरे हम फसल से कुछ ना मिलो, यानी खेतों से कुछ ना बच रहा हो। अरे भैया आप जो परंपरागत खेती करते चले आ रहे हो, गेहूं धान गन्ना और कोई सब्जी वगैरह, उनसे हटकर कुछ खेती करो तो आपको मुनाफा अच्छा होगा।
0: अब जैसे सतावर की खेती करके बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं हमारे किसान भैया, शिमला मिर्च की खेती करके अच्छा लाभ मिल जाता है, इसके साथ साथ ड्रैगन फ्रूट है, और भैया हम लोग जब देखिए खरबूज तरबूज और खीरा ये चीज़ें करने से अच्छा लाभ मिलता है, बहुत कम समय की फसल है और अच्छा लाभ मिल जाता है।
1: बिल्कुल, अब तो कई सालन से अपने क्षेत्र में ड्रैगन तो ही रहो, साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी की खेती भी खूब ही रही है और भी कई तरीका की फसलें अपने क्षेत्र में ही रही हैं और अच्छो लोग फायदा भी उठा रहे हैं।
0: तो आज क्यों ना किसान भाइयों को ऐसी संबंध में एक बढ़िया सी जानकारी कर दी जाए।
1: बिल्कुल भैया, तो किसान साथियों हम आज आपको सुनवाते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती कि किस तरह से करें, किन किन बातों को ध्यान रखें और इससे का कितनों लाभ ही जाता है, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हम आपको सुनवाते हैं जो भेंट वार्ता जिसको विषय है ड्रैगन फ्रूट की खेती, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्री हरदीप सिंह गिल और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया प्रवीण कुमार। तो साथियों आप सुनो और हम सुने जो जानकारी।
2: किसान भाइयों आप सब खेतीबाड़ी बहुत समय से करते चले आ रहे हैं और गेहूं धान गन्ने की खेती आप बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना कि हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। साथियों बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो इसके अलावा हटकर कुछ खेती कर रहे हैं। ऐसे ही एक कृषक हैं श्री हरदीप सिंह गिल जी, जो कि ग्राम पिपलिया मिश्र तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर के हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं। हमारे सभी किसान भाई इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर आपके मन में कहां से विचार आया कि इसकी खेती की जाए।
3: देखिए ये परंपरागत खेती जो लगातार करते चले आ रहे थे बुजुर्गों टाइम से, लगभग धान गेहूं गन्ना अरहर,
2: जी जी जी,
3: तो ये लगातार एक ही तरह की खेती करते करते अब उसमें ज्यादा फायदे का सौदा नहीं रहा, खर्चे ज्यादा बढ़ जाने के कारण। तो एक दिन मेरा बेटा बीकॉम करने के बाद बीपीएड कर चुका था, तो अचानक बैठे थे शाम को, उसने कहीं देखा होगा इसके बारे में, ड्रैगन फ्रूट के बारे में कहीं पढ़ा होगा, तो उसने मुझसे कहा कि कुछ अलग करने की सोचें। तो सारी बात जब उसने मुझे इसमें मोबाइल के जरिए मुझे जब बताई
2: जी जी,
3: तो मेरे भी मन में आया कि एक अलग तरीके की खेती की जाए। तो ये सोच के फिर हमने कुछ अलग करने की सोची।
2: जी जी, ये खेती फिर आपने कब शुरुआत करी इसकी?
3: 2019 में हमने पौधे लगाए थे।
2: अच्छा, इसके पौधे फिर कहां से मंगाए?
3: इसके पौधे हमारा बेटा गया था इसके बारे में सर्च करके, डॉक्टर निवासन हैदराबाद, तो हैदराबाद से बेटा बाई एयर लेके आया था।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो वो पौधे लगा के हमने लाके फिर खेत में लगाए थे।
2: जी जी, यहाँ पर ये बात भी आती है कि पौधे वहां से लेकर आए तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा।
3: काफी मतलब ये जो ड्रैगन फ्रूट के जो पौधे हैं ये काफी मजबूत हैं, वैसे इतनी जल्दी खराब नहीं होते, वहां से लाने में एक हफ्ता लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लाके खेत में लगा सकते हैं।
2: यहीं पर हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसका पौधा किस तरीके का होता है, अपने आसपास में इससे मिलता जुलता कोई पौधा हो?
3: हाँ, आपने देखा होगा जैसे नागफनी।
2: जी जी जी,
3: बिल्कुल नागफनी जैसा है पौधा ये, और नागफनी की तरह ही इस पे कांटे हैं।
2: अच्छा,
3: बिल्कुल।
2: अच्छा,
3: जी कैक्टस जैसे कह देते हैं, कैक्टस कह देते हैं।
2: जी जी जी
3: जी।
2: अच्छा, नागफनी जो है बिल्कुल सीधा ऊपर को बढ़ता है, इसी तरीके से ये भी बढ़ता है?
3: जी, ये भी पोल के सहारे ऊपर को जाएगा।
2: अच्छा,
3: इसे पोल का सहारा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो सीमेंटेड पोल बनाए जाते हैं।
2: अच्छा,
3: जिनका मोटाई 4x4 इंच की होगी और लंबाई 7 फीट होगी, 2 फुट जमीन में उसे गाड़ दिया जाएगा
2: जी,
3: और 5 फीट ऊपर रखा जाएगा, उसके चारों तरफ 4 पौधे लगाए जाएंगे।
2: अच्छा,
3: और ये पौधे उसके साथ साथ ऊपर को चढ़ेंगे, साथ साथ इसे प्लास्टिक के डोर से या किसी से बांधा जाएगा ताकि ये बेल ऊपर को चढ़ती रहे इसकी।
2: अच्छा, ये बेल की तरह होता है एक तरह?
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। अगर हम नागफनी की बात करें तो उसकी बेल नहीं होती, वो तो सीधा पौधा जो है
3: वो थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा लूज होता है, तो इसे सहारा देना पड़ेगा।
2: जी जी
3: जी।
2: तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो किस तरह का होता है?
3: स्ट्रक्चर सीमेंट का और बजरी का, मतलब जैसे बजरी वज्रफुट मिला के इसका 4x4 का एक पूरा पोल तैयार करा जाएगा, 4 इंच मोटा 4 इंच।

0: अच्छा नहीं है,
1: अच्छा
0: इसमें दिक्कतें आई हैं। जैसे ही हमारा तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाता है, वहां पर इसे ड्रैगन फ्रूट की फसल को दिक्कत शुरू हो जाती है, इसे सन बर्न आता है, बिल्कुल पीला होना शुरू हो जाता है। उस बचाव के लिए कई बार हमने ग्रीन मेडिकल, एक आता है मतलब स्प्रे का, तो ग्रीन मेडिकल की स्प्रे भी की है, हालांकि वो भी एक इलाज नहीं है, उससे थोड़ा फर्क आ जाता
1: जी,
0: है, बाकी मौसम से थोड़ा दिक्कत है।
1: अगर खेत के चारों तरफ बाड़ा लगाया जाए जिससे कि गर्मी खेत में कम हो तो कुछ लाभ मिल सकता है।
0: हाँ, अब ये भी हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, हर पोल के पास हमने एक पौधा लगाया है, कुछ एक अरहर का जो काफी ऊंची अरहर हो जाती है वो
1: जी
0: वाला,
1: जी जी
0: और साथ में एक पॉपुलर के पेड़ को भी लगाया है, ताकि वो 10 फुट पे या 12 फुट पे जाके उसकी कटिंग कर देंगे, हल्की छाया वहां बनी रहे, ताकि ये धूप का जो असर है
1: हाँ
0: वो इस पे विपरीत असर ना पड़े
1: जी
0: धूप
1: जी
0: का। जी
1: अच्छा, इसके अलावा एक बात हम और जानना चाहेंगे कि जैसे कि जो वातानुकूलित हमारे यंत्र चल रहे हैं, अगर उनको कुछ लगाया जाए तो कुछ तापमान कम हो सकता है आसपास में।
0: नहीं, अब इतने बड़े 2 एकड़ या 1.5 एकड़ में आप खेती करेंगे तो इतना तो नहीं हो पाएगा, वो ये चीज तो बहुत मुश्किल है किसान के लिए
1: जी
0: खासकर।
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: अच्छा, तापमान से तो चलो किस तरह से आप जो है लड़ ही रहे हैं, जितना थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो
0: जी
1: पैदावार
0: जी
1: में उसका
0: हाँ
1: असर पड़ता है,
0: जी जी
1: लेकिन हम अब यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी प्रजातियां भी होती होंगी।
0: जी इसकी प्रजातियां जो इस समय हमारे पास हैं, हमने इसके लिए एक तो एलिस रेड है हमारे पास,
1: अच्छा
0: और एक सी वरायटी है, और एक हाइब्रिड, तीन तरह
1: अच्छा
0: की वरायटियां लगाई हैं। हाइब्रिड तो पिछले साल लगाई है हमने, अभी अभी उस पर फ्रूट जब आएगा तो पता लगेगा कैसा आया है, लेकिन एलिस रेड और सी, ये दोनों
1: जी
0: वरायटियां काफी अच्छी हैं।
1: अच्छा, अच्छी
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा?
0: लगाते समय सबसे पहले तो खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी की निकासी अच्छी हो, अगर पानी इसके अंदर रुक गया तो ये ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है वो खराब हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा
0: जी जी
1: अच्छा किस समय लगाया जाए?
0: इसके लगाने का जो सही समय है वो मार्च का महीना है।
1: अच्छा
0: जी मार्च के महीने में अगर ये लगेगा सबसे बेस्ट, इसका वैसे सितंबर अक्टूबर में ही बताते हैं इसे लगा सकते हैं,
1: जी जी जी
0: लेकिन मार्च में सबसे बेहतर रहेगा ये। जी
1: अच्छा, लगाते समय किन किन खादों की देने की आवश्यकता पड़ेगी?
0: लगाते समय एकदम खाद की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो खेत को बिल्कुल तैयार करने के बाद 4 फीट की चौड़ाई में एक करीब 6 इंच ऊंचा बेड बना दिया जाएगा,
1: जी जी
0: उसके ऊपर पोल लगेंगे, ताकि बरसात का पानी, अगर ज्यादा बरसात भी हो तो
1: हाँ,
0: पानी पेड़ के पास ना रुक
1: पेड़ के ना
0: पाए।
1: पास।
0: बेड बनाने के बाद पोल खड़े कर दिए जाएंगे, पोल के चारों तरफ अपने ड्रैगन फ्रूट के पेड़ लगा दिए जाएंगे,
1: जी जी
0: और उसके जब उसमें से कली देना शुरू हो जाएगा, मतलब पेड़ कली देना शुरू कर देगा ऊपर को, उस समय खाद की जरूरत पड़ेगी,
1: अच्छा,
0: उससे पहले नहीं।
1: तो कौन कौन से खाद लगाए जाते हैं फिर?
0: खाद तो उसे देखिए, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, कैल्शियम और ये सुपर फास्फेट सभी देने पड़ेंगे, शुरुआत में कम मात्रा में, जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाएंगे तो उसकी मात्रा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी।
1: अच्छा, देसी खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद लगाने की आवश्यकता पड़ती
0: सब
1: है?
0: हाँ, देसी खाद तो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छी रहेगी, उसके साथ साथ हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, लाई की खल भी डाली है,
1: अच्छा
0: उससे भी
1: अच्छा
0: बेहतर रिजल्ट हमें मिले हैं।
1: जी,
0: जी
1: सिंचाई की क्या?
0: सिंचाई का इसमें यह है कि इसके जो हमने अभी आपको बताया कि 4 फिट का जो बेड बना दिया जाएगा,
1: जी,
0: उसके बराबर से एक नाली बना दी जाएगी, उस नाली में पानी आएगा, और उसके बाद मतलब लेबर द्वारा या अपने हाथ से डिब्बों से पानी उसे ऊपर डाला जाएगा पेड़ को।
1: अच्छा, मतलब वैसे डायरेक्ट पानी नहीं
0: डायरेक्ट पानी
1: जाएगा।
0: देने से, ज्यादा पानी होने से ऐसे नुकसान हो जाएगा, फंगस आ जाएगी, फंगस से फिर पेड़ खराब हो जाएगा। जी
1: इसकी देखभाल में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? बीमारी लगती हैं, कुछ कीड़े वगैरह भी आते होंगे?
0: इसमें सबसे तो मेन जो है वो फंगस है, फंगस के अलावा और ज्यादा इसमें कोई बीमारी की नहीं है, सनवर्न और फंगस,
1: अच्छा
0: ज्यादा तापमान में सनवर्न और वैसे फंगस आती है, फंगस की तो स्प्रे करनी पड़ेगी, कार्बन डाइजम या जो भी फंगस के जो प्रोडक्ट आते हैं
1: जी
0: वो
1: जी
0: लगाने पड़ेंगे इसे।
1: अच्छा,
0: जी जी
1: तो इसका कितने बार स्प्रे करना पड़ जाता है?
0: ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर,
1: अच्छा
0: अगर मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई, उमस ज्यादा हुई तो फंगस ज्यादा आती है, अगर उमस नहीं है और मौसम ठीक है तो फिर 1 महीना भी निकल जाएगा आराम से, कभी कभी 15 दिन में 2 बार भी करनी पड़ सकती है।
1: अच्छा,
0: जी
1: कीड़े कोई नहीं लगता?
0: ना कीड़ा कोई नहीं, भूरी चींटी जो होती है,
1: हाँ
0: कभी कभी जैसे ही इसमें फ्रूटिंग की गांठ बनेगी
1: हाँ
0: उसमें उसमें हल्का मीठापन आता है ऊपर, चेपा टाइप,
1: जी
0: उस पे कभी कभी भूरी कीड़ी आ जाती है, वो भी ज्यादा नुकसान नहीं करती, बाकी कोई भी मतलब कीड़ा इसे नुकसान नहीं करता।
1: अच्छा, यहीं पे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे जंगली जानवर होते हैं वो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते इसको?
0: नहीं जंगली जानवर, इस पे कांटे हैं,
1: हाँ
0: कांटों की वजह से जंगली जानवर कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, ना नील गाय ना दूसरे जानवर कोई ऐसे इसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: फल कितने समय में आना शुरू हो जाता है?
0: फल लगभग मान के चलिए कि 2रे साल इसमें कहीं कहीं फ्रूटिंग शुरू हो जाती है,
1: अच्छा
0: मतलब एक पेड़ पे किसी पे एक फल, किसी पे नहीं भी आएगा, वरना 2 साल का जब पेड़ पूरा हो जाएगा उसके बाद फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा।
1: अच्छा, अब हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर 1 बीघे खेत के बारे में बात करें तो लगभग कितने पौधे लग जाएंगे?
0: 1 बीघे खेत में ये मान के चलिए कि आप कम से कम 70 पोल लगा सकते हैं लगभग।
1: अच्छा।

0: जी, और 70 पोल का मतलब 280
1: हाँ,
0: पौधे लगेंगे,
1: क्योंकि एक पोल पर
0: एक
1: जो
0: पोल पे
1: है
0: चार पौधे।
1: चार पौधे लगेंगे।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: क्या कॉस्ट मतलब जो खर्च हो जाएगी किसान की?
0: किसान की ये मान के चलिए कि एक बीघे में लगभग 70,000 से लेके 1,00,000 तक।
1: अच्छा,
0: जी
1: अगर वो 1 एकड़ में लगा रहा तो 5-6 लाख रुपए की जरूरत
0: जी 5-6 लाख
1: पड़ेगी
0: की जरूरत पड़ेगी
1: जी
0: शुरुआत में।
1: शुरुआत में। मतलब ये जब तक फल नहीं आएंगे जब तक की है, या जब हम लगा रहे हैं जब ही जब
0: नहीं,
1: आएगा?
0: जब हम लगा रहे हैं
1: अच्छा।
0: उस समय फल तो फिर तो नराई गुड़ाई, ये तो एक साधारण प्रक्रिया है खेती की, नराई गुड़ाई पानी देना तो चलता रहेगा,
1: जी,
0: लेकिन शुरुआत की जो खर्चा है वो ये है
1: ये
0: इसमें।
1: है।
0: जी
1: इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करें तो
0: जी
1: ये सारे काम करने पड़ेंगे।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: और सबसे मुख्य बात ये आती है कि आखिर हमारे किसान भाई इसको तैयार कर लें और फल आना शुरू हो जाए, तो फिर बिक्री की क्या व्यवस्था रहती है?
0: बिक्री की समस्या है इस समय, हमें भी आ रही है, तो हमने तो होम डिलीवरी जो प्रक्रिया अपनाई थी सोशल मीडिया पे डाल के, तो वहाँ से फिलहाल तो हमारा जितना पिछले साल भी फल आया था तो सारा बिक चुका था, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मार्केटिंग की दिक्कत तो है,
1: जी,
0: कहीं भी मंडी में या कहीं पर, मतलब इसके बारे में जानकारी लेंगे, अभी ज़्यादा जानकारी मिली नहीं है। हालांकि फ्रूट तो बिक रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग दिल्ली से मंगा के बेच रहे हैं, तो धीरे धीरे आढ़तियों से संपर्क करना पड़ेगा, तो ये खैर हो जाएगा, वो भी उसका भी कोई ना कोई समाधान।
1: अच्छा, फल कितने समय में आना शुरू हो जाता है फिर, और कब तक आता है?
0: ये मई के लास्ट से फ्रूटिंग इसमें शुरू हो जाएगी,
1: अच्छा
0: लगभग 15 जून या 20 जून 25 जून के आसपास पहला फल आपको पक्के तैयार मिल जाएगा,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: उसके बाद दिसंबर, लास्ट दिसंबर तक फल रहता है। लगभग 6 महीने इसमें फल आते रहते हैं।
1: अच्छा।
0: इसमें बेब आती हैं, पहली बेब आई वो पक के तैयार हो गई, आपने तोड़ ली, पीछे फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, फिर
1: अच्छा।
0: फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, फ्लावरिंग होने वाले फिर उसकी फ्रूट बन जाएगा, फिर उसे तोड़ लेंगे। इस तरह 5 से 7 बेब आ जाती हैं।
1: जिस तरीके से हमारे अमरूद में आती हैं 2 बेब,
0: जी
1: एक
0: जी
1: बरसात
0: जी
1: का और एक जाड़ों
0: जी जी
1: का,
0: जी जी
1: इसमें इस तरीके से 6 बेब आती।
0: 5 से लेके 7 तक।
1: अच्छा।
0: हाँ, अगर मौसम अनुकूल है तो 7 भी आ जाएंगी, अगर मौसम अनुकूल नहीं रहा तो 5 पे भी मतलब समाप्ति हो जाएगी।
1: तो इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती आप कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है कि कुछ फायदा दिख रहा है इसमें?
0: ड्रैगन फ्रूट अगर मार्केट की दिक्कत ना आए तो बहुत फायदे का पौधा है ये,
1: जी।
0: और एक अलग तरह का फल है और पौष्टिक फल है, लोगों को फायदे भी कर रहा है, जो लोग
1: जी।
0: इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी फायदा हुआ है, तो मार्केटिंग की फिलहाल दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, तो लोगों को पता लगेगा, तो बिकना भी शुरू हो जाएगा, बढ़िया रहेगा कुल मिलाकर।
1: खाने में किस तरीके का होता है अगर बात करें तो?
0: खाने में एक अलग ही टेस्ट है, मतलब बोल के तो नहीं बता सकता, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसमें, और खाने में इतना अच्छा है, एक बार खाना शुरू कर देंगे तो आप ये सोचेंगे मैं खाता रहूं।
1: जी।
0: जी जी
1: अच्छा, अंत में अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहोगे?
0: मैं अपने किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूंगा कि जितनी परंपरागत खेती पहले से करते चले आए हैं, इसमें लगातार घाटे का सौदा रही है, धीरे धीरे अगर कुछ नया करने की सोचेंगे, कुछ नया करेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकलेंगे, और जितनी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन फ्रूट या कोई भी और खेती होगी तो उसकी मार्केट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, तो बिक्री भी शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग अलग हटके काम करने की कोशिश करें जैसा हमने सोचा है। मैं तो चाहूंगा कि और भी किसान हमारे साथ जुड़े, अगर वो चाहेंगे कि उन्हें पौध भी मिले तो हम पौध भी तैयार करके उन्हें देंगे।
1: जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको इसके लिए धन्यवाद।
2: भाइयों बहनों, अभी आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में विस्तार से जानो श्री हरदीप सिंह गिल से, और आपसे बातचीत करी हमारे भैया प्रवीण ने। हमें उम्मीद है साथियों आपको जो जानकारी जरूर पसंद आई होगी।
3: और भैया देखो, जानकारी जब पसंद आती है और लाभ की जानकारी होती है तो मन करता है मनोरंजन को, तो अब वो देर न करते हुए सुनते हैं जो प्यारो सो लोकगीत, जिसे आवाज़ दी है ससी लता ने।

0: भैया बहनों, अभी आपने जो लोकगीत सुनो ससीलता की आवाज़ में, हम उम्मीद है आपको पसंद आए हो। भैया बहनों देखो, जैसे कि ससीलता ने जो लोकगीत गाओ कि गांव में जो पानी उनी भरने जात भरने पड़ता ना कुआं वगैरह से,
1: हाँ
0: बाकी बातें कुछ करी गई हैं, पुरानी बातें कुछ करी गई हैं, तो हम अपनी बहनन से यह कहना चाहेंगे, देखो पहले के ज़माने, अब पहले ज़माने से अब जमानो बदल गया हुआ है। पहले जो कुआं वहाँ से पानी भरे जाते हैं, अब कहाँ भरे जाते हैं, तो गाँव से आप बिल्कुल ना डरें, और पानी उनी अब ना भर हो जाता है, अब तो हर जगह टंकी हैं, मोटर हैं, समरसेबल हैं, तो गाँव से आप बिल्कुल ना डरें। और कुछ सच्चाई हुई जो लोकगीत में, अब भैया अगले कार्यक्रम को और बढ़ाओ।
1: देखो भैया, हमारे किसान भैया खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ ना कुछ सहायक धंधे भी करते हैं, और जिससे उनको उद्देश्य यह रहता है कि हम ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और ऐसे ही बहुत से किसान हमारे ऐसे हैं जो अच्छी खेती बाड़ी करके अच्छे मुनाफा कमा रहे हैं, उनके अनुभव भी हम अपने कार्यक्रम में सुनवाते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई उनके अनुभव को जानें, सीखें और वैसे ही वे काम करके अच्छे मुनाफा कमा सकें। आज इसी क्रम में हम अपने कार्यक्रम में सफल कृषक से भेंट, जो कि श्री छेदालाल जी हैं, ग्राम व ब्लॉक सेरगढ़ जिला बरेली के, जिनसे बातचीत हमारे हेमपाल भैया ने करी है। तो आइए सुनते हैं उनसे करी गई ये बातचीत।
2: राम राम भैया।
3: राम राम।
2: और घर परिवार में सब लोग बढ़िया हैं?
3: सब बढ़िया, अपने सुनाओ, ठीक है सब?
2: हाँ सब बढ़िया है। सबसे पहले तो अपनो नाम और पतो बता दो हमारे भैया बहनन के लिए।
3: मेरा नाम छेदालाल, ग्राम सेरगढ़ से।
2: तो आपके खेतन में इस समय का कहा है?
3: सुनो तो भैया, सब्जी वाली फसल है हमारे बैगन की।
2: वो तो हम देख ही रहे हैं, आप जो इस समय सिंचाई कर रहे हो बैंगन।

0: इस समय टूट रहे होंगे?
1: हाँ हाँ ये टूट गए, दो बार टूट गए।
0: तो कब लगाए आपने ये?
1: 12 अप्रैल में लगा दे।
0: अच्छा, कहता कि इन दिन वाले बैंगन में कुछ बीमारी और कीड़ा उड़ा ज्यादा लगता है।
1: हाँ, सुनी के प्रो भैया ज्यादा लगते हैं।
0: तो बाकी लगा करते हैं,
1: स्प्रे करने पड़ती है। अच्छा। जो है रस चूसक कीट वगैरह लग जाते हैं, जैसे थ्रिप्स है, जेसिड या मकड़ी वगैरह, ये भी लग जाती है। अगर सुई ज्यादा लगती है तो उसको इवेमेक्टिन नामक दवा आती है, भुनका वगैरह या मकड़ी वगैरह, तो उसको अमीडा क्लोराफ्लेड आती है दवा।
0: हाँ
1: हाँ, थॉक्सम आती है, तो इसकी मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव करते रहते हैं।
0: अच्छा, कहते हैं कि बैंगन में एक काला रोग बहुत लगता है, सुकन में ना आता है, तो आपके बैंगन में लागू ना लागू?
1: अभी तो भैया ना लागू है, वैसे लग जाता है। कभी पिछले साल हमने करे तो लगो, सड़ निकलता है बैंगन में।
0: अच्छा,
1: फंगस लगता है तो पूरा फल सड़न निकलता है।
0: तो बाकी रोकथाम में क्या करना चाहिए?
1: रोकथाम के लिए फंगीसाइड दवा बहुत सारी आती है, मैन को जो कार्बन डाइजेशन भी आती है।
0: सब्जी वाली फसलों के अलावा और भी फसलें करते हैं आप?
1: इन दिनों में खासतौर से बैगन की ज्यादा करते हैं। वैसे तो भिंडी की है, आधे पौन बीघा हमने भिंडी भी लगा रखी है इस समय।
0: अच्छा।
1: उसमें दवा और पानी का काम चल रहा
0: है। हाँ, वो तो है, बारिश ना हुई तो पानी तो लगाना ही पड़ा है। अच्छा, जो सब्जी वाली फसलें हैं उसमें गेहूं धान गन्ना के अलावा या फिर और फसलें जो हम करते हैं उनके मुकाबले कुछ अच्छा मुनाफा होता है?
1: सब्जी में अगर रेट बाजार भाव अगर अच्छे मिल जाते हैं, गेहूँ धान की अपेक्षा अच्छा मुनाफा हो जाता है।
0: लेकिन कहते हैं कि सब्जी वाली फसलों में मेहनत बहुत ज्यादा होती है।
1: हाँ, मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ती है, किसान का काम ही है मेहनत करना।
0: हाँ, वो तो है,
1: मेहनत तो करनी पड़ती है तभी फल मिले इससे ज्यादा।
0: क्योंकि जो है गेहूँ है गन्ना है उनके लिए तो जो है कि खुदाई उदाई कर दो एक बार में, दवाई वाई छिड़क दो घास वगैरह की, तो जाम है तो खुरपी ये चलाने पड़ती है,
1: लगातार देखरेख करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रलाल जी, देखो हमारी सरकार कह रही है कि जो हम रसायनों को अपने प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतन में तो उससे हम बचें, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान दे रही है, तो और हम जैविक खेती की तरफ और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाएं, तो इसमें आपको क्या मानना है? आप कुछ हमारी सरकार की या फिर हमारे जो वैज्ञानिक है उनकी बातों को मान के जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हो ना?
1: हाँ, वैसे सब लोगों की राय तो यही है कि रासायनिक दवाओं से बचे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए नुकसानदायक बहुत है। जानवर घास खा रहा है तो उसको भी नुकसान है, जानवर पालते हैं उसमें तो, भैंस के दूध में भी यूरिया की मात्रा पाई जा रही है। अगर जैविक खेती करें तो उससे फायदा है, लेकिन इसकी तरफ अभी किसान का रुझान कम है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग प्रचार वगैरह न कर, अगर इसका प्रचार करें और सरकार भी इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे जैसे, तो लोग इसके तरफ मुड़ सके कि फायदा हुआ। लोगों का अभाव है, लोगों जानकारी कम है,
0: जानकारी कम है। लेकिन कुछ हमारे जो भैया बहन है उनसे जब हमारी बातचीत होती है, हमने कई जगह बातचीत करी, तो वे कहते हैं कि अगर हम जैविक विधि से खेती करें तो उसमें जो है लाग तो ज्यादा आ जाती है और अच्छी पैदावार ना मिलती है, तो इसमें आप हमारे भैया बहन से क्या कहना चाहेंगे?
1: लागत तो कहीं ना कहीं कम या ज्यादा हो ही सकती है, लेकिन अगर हम इस प्रकार से जैविक खेती से करते हैं तो फायदा तो है हमारे शरीर के लिए या फिर हमारे पशुओं के शरीर के लिए, फायदा तो है।
0: सही बात है, अगर मान लो उत्पादन कम मिल रहा हो या फिर थोड़ी बहुत लागत ज्यादा आ रही है, जरूरी ना है ज्यादा आवे लागत, अगर पूरी तरह का जैविक आप करोगे तो लागत कम आवेगी।
1: अगर हमें रेट बाजार रेट अच्छे मिल जाता है तो हम कहते हैं कि हमें लागत कम आई, ऑटोमेटिक जो लगती है हमें लागत बहुत आएगी।
0: और अगर हम जैविक खेती करेंगे तो उसको मूल भी हमें बाजार में अच्छा मिला है, क्योंकि हर जगह जो जैविक तरीका से खेती करी जा रही है उसको जो उत्पादन है उस बाजार में जो भाव है वो तेज रहता है,
1: कान में शुद्ध मानी आती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने खेतन में देसी खाद वगैरह या फिर और कोई जैविक प्रयोग कर दो
1: इसमें? हाँ, हमने पहले ढेचा पड़ दो, उसके बाद हमने एक डाली गोबर की कड़ी खाद डाली, क्योंकि हमारे पास पशु है जिसमें दो भैंस हैं और दोनों ब्याने वाली हैं, इसमें दो कचरा उनके लवारे और एक पड़िया जो वो गाभिन होने वाली है।
0: तो खेती बाड़ी के संग संग आप पशुपालन कर ले तो आसानी से,
1: क्योंकि बच्चे ये हाथ बटाता हमारे साथ में, अकेले तो मुश्किल है। देखो ये सब काम करना,
0: जो बात बिल्कुल सही कही कि अकेले मुश्किल है। देखो खेती बाड़ी काम ऐसा हो, अगर परिवार में जितने लोग हैं अगर सब लोग मिलकर अगर काम धाम ना करेंगे तो फायदा होना बिल्कुल भी संभव ना है। अगर सब लोग मिलकर हाथ बटाकर पशुवन में और खेती में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फायदा होगा ही होगा। अच्छा, आप हमारे किसान साथियों से क्या कहना चाहेंगे सब्जी वाली फसलों के बारे में, कि सब्जी वाली फसलें हमारे किसान साथी कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर ना पा रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं वे छोड़ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो भैया किसान भाई से ये कहना चाहूंगा, अगर जानकारी का अभाव है तो किसी गोष्ठी जहाँ तक कहीं ना कहीं लगती रहती है, पूरी जानकारी में रहे, अपने पास में जो लोग आते हैं किसी विभाग से, हमारे यहाँ सरकार भेजती है लोगों को, तो उस गोष्ठी में जाए, वहाँ पूरी जानकारी मिलती है और कहीं ना कहीं से जानकारी जरूर लें, जिससे हमें पूरी जानकारी होगी तो हम खेती जब करेंगे तो उससे मुनाफा हमें मिले और साथ में पशुपालन भी करते रहें, जिससे कि दुगना लाभ उधर से हो और खाद भी मिले, जिससे फसल भी अच्छी हो, हमारे घर का भी स्वास्थ्य अच्छा हो और खेती

0: का विश्वास अच्छे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने चंद्रलाल जी। देखो आपने बताई कि अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम कृषि गोष्ठियों के माध्यम से जानकारी लें और जो हमारे अधिकारी हैं कृषि अधिकारी उनके माध्यमों से जानकारी लें और हम पशुपालन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रलाल जी, आपसे बात हुई और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।
2: भाइयों बहनों, अभी हमने श्री छेदालाल सियरगढ़ बरेली से जो कृषक थे उनसे बातचीत करी, वो आपको सुनवाई। हमें उम्मीद है साथियों आपको जो बातचीत पसंद आई होगी।
3: और भैया देखो, हमारे किसान भैया जो है ना खाली अनाज वाली फसलें उगाते हैं तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, जैसे हमने पहले ही बात करी इस बारे में। और अगर वे बदल बदल के फसलें बोएं, या जैसे कि कुछ भैया हमारे थोड़ी जगह में सब्जियां करें, थोड़ी जगह में जैसे टमाटर हैं, मिर्च करें, मसाले वाली फसलें कर लें, इसके साथ साथ फूलों की खेती भी करें, तो अच्छा लाभ उनको मिल सकता है।
2: बिल्कुल भैया, देखो अगर बात करें फूलों की खेती में गेंदा की खेती की, तो गेंदा की खेती जो बारिश को समय है जामे बड़ी अच्छी होती है और अच्छो पैदावार भी मिलती है, खूब उत्पादन मिलता है जिससे, और भाव भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा कुछ किसान साथी अन्य फसलें भी करते हैं फूलों की, जैसे गुलाब की है।
3: और भैया देखो, गुलाब की अगर हम बात करें ना, तो गुलाब को जो है फूलों को राजा कहा जाता है, और जाकी मांग जो है पूरे वर्ष हमेशा रहती है, और अच्छी इससे आमदनी हमारे किसान भाइयों को हो सकती है। और हम अपने किसान भाइयों को बता दें कि ये सुंदरता, सुगंध और आर्थिक लाभ का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। और गुलाब की ना विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में होती हैं। जैसे हम फूलों की बात करें तो लाल होता है, गुलाबी है, सफ़ेद है, पीला है, नारंगी है, तो ये गुलाब के फल जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और अच्छी तरह से बिक भी जाते हैं।
2: भैया देखो, गुलाब की खेती में एक सबसे बड़ा फायदा जो है ना, जैसे गेंदा की हमने खेती की बात करी, गेंदा की खेती है हर साल बार बार बोने पड़ती है, लेकिन गुलाब की ऐसी खेती है एक बार लगा लो वो कई सालों तक चलती रहती है, यानी उत्पादन देती रहती है।
3: और हमारे बहुत से भैया ऐसे हैं जो गुलाब की खेती एक तो खुले आसमान में करते हैं, कुछ भैया ऐसे भी हैं जो पॉली हाउस में भी गुलाब की खेती कर रहे हैं और अच्छे मुनाफा उनसे मिलते हैं। अगर हम बात करें गुलाब की खेती करने से क्या क्या लाभ हो रहे हैं, हमारे किसान भाइयों के मन में बात आ रही होगी, तो देखो कम समय में फसल तैयार ही जाती है, इसके साथ साथ साल भर बाजार में इसकी मांग रहती है, इसलिए भैया जा मानो आप रोजाना जो है कमाई होना शुरू हो जाती है, कम जमीन में अधिक मुनाफा हमारे किसान साथियों को मिल जाता है।
2: जाके अलावा गुलाब के फूलन से गुलाब जल बनाओ जाता है, गुलकंद बनाओ जाता है, इत्र जैसे जो है सेंट वगैरह कहते हैं वो भी इसी से बनाओ जाता है। जाके संग संग अनेक उत्पाद जो कॉस्मेटिक के हैं वे भी गुलाब के फूलन से बनाओ जाते हैं, और साथ ही साथ छोटे और बड़े किसान के लिए तो गुलाब की खेती बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि क्या होता है, अगर आजकल देखी जा रही हमारे बहुत से किसान साथी कहते हैं कि जो जंगली जानवर हैं बहुत परेशान कर रहे हैं, गुलाब की खेती में बेहू कोई
3: भाई, इसीलिए हमारे भैया बहुत से ऐसे हैं जो हाइब्रिड गुलाब है ना बाकी खेती ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी फूल जड़ा कुछ बड़े होते हैं और अच्छे लाभ उन्हें इस तरह से मिल जाते हैं। और भैया खाली जो है लाभ की बात ना है, जैसे हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, अगर जाके स्वास्थ्य हमारे से जुड़े हुआ जो हम बाकी बात करें तो पेट की गर्मी को शांत करता है, साथ ही साथ पाचन तंत्र को मजबूत करता है,
2: और इसके अलावा जो स्किन रोग यानी त्वचा रोग होता है उनमें भी लाभकारी होता है, तनाव और मानसिक थकान को भी कम करता है। और गुलाब जल जैसे अभी हमने जिक्र करी वो तो इतना अच्छा है कि हाथ शरीर पर लगावो, साथ ही साथ आँखन में भी लगावोगे तो उससे भी आँखें हमारी अच्छी रहती हैं।
3: और अगर हम जाके उपयोग की बात करें तो पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में गुलाब का अच्छा उपयोग किया जाता है, शादी विवाह समारोह में भी इसका प्रयोग खूब किया जाता है, गुलाब जल और गुलाब इत्र बनाने के काम में तो जाको इस्तेमाल होते ही है, गुलकंद भी निर्माण इससे होते हैं।
2: बिल्कुल भैया, और जाके संग संग जे कॉस्मेटिक की चीज़ें तो बनाई जाती हैं, यानी सौंदर्य की प्रसाधन की जो चीज़ें वो तो बनाई जाती हैं, साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक दवाई हैं वो भी कई तरीके की दवाई गुलाब के फूलन से बनाई जाती है।
3: अब हमारे भैया के मन में आ रही होगी कि हमारे प्रवीण भैया और हेमपाल भैया जाके फायदा तो बता रहे हैं, कैसे करेंगे खेती जब बारे में ना बता रहे हैं। तो भैया देखो, जाके लिए रेतीली दोमट मिट्टी जो है सर्वोत्तम रहती है, जिसका पीएच मान 5.3 से लेकर 6.5 तक होता है, अच्छा रहता है। और भैया जल भराव ना हो ऐसी ज़मीन होनी चाहिए, इसके साथ साथ भारी चिकनी मिट्टी से बचें। और किस्मों की बात करें तो भैया देखो, इसकी हाइब्रिड गुलाब किस्म बहुत अच्छी है, और पूसा सोनिया है, पूसा गौरव है, सुपर स्टार है, ये किस्में अच्छी हैं, हमारे किसान भैया इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रमुख किस्में इसमें बंजारन भी है, चंद्रमा है, करिश्मा है, सदाबहार है, इनको ले सकते हैं। और भैया कुछ पौधे ऐसे भी बनाए वैज्ञानिकों ने ना, कि एक ही पौधा में कई रंग के पौधा भी हमारे फूलों को किसान भाई देख सकते हैं। और इसको लगाने के बाद में जो है एक बार लगा दो जैसा आपने कही थी और कई समय तक जो है कर चलता रहता है। और हम तो अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है, बस समय समय पर निराई गुड़ाई और खाद पानी देते रहें।
2: बिल्कुल भैया बहनों, हमें उम्मीद है आप समझ गए हुए कि हमें जो खाद्यान्न फसलें यानी परंपरागत जो फसलें हम कर रहे हैं उनसे हट के कोई ना कोई खेती करनी चाहिए। तो भैया बहनों, जो तो बात रही गुलाब की खेती के बारे में यानी फूलों की खेती के बारे में, अब हम आपको बता दें कि कल को मौसम को हाल कैसे रहा है।
3: कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है।
2: और वायुमंडलीय नमी 80% और हवा 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकता है।
3: और हवा की दिशा जो रहेगी वो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से रहने की संभावना व्यक्त करी गई है। भैया देखो, जातो ही मौसम की जानकारी और अब अपने कार्यक्रम को समय बिल्कुल ना है, तो चलत दोनों भैया कर लें। राम राम, राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए सकारात्मक पत्रकारिता आज की आवश्यकता। वार्ताकार हैं श्री आलमगीर मुजाहिद खान।
1: भारत में पत्रकारिता का आरंभ 18वीं सदी के अंत में 1780 के आसपास हुआ, जब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने हिकीज बंगाल गजट नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन किया। इसे भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है, जबकि हिंदी पत्रकारिता का आरंभ 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड के प्रकाशन से हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों ने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत की और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनमत तैयार किया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने पत्रकारिता को जन जागरण का माध्यम बनाया। देश की आज़ादी की लड़ाई मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही लड़ी गई। आज पत्रकारिता केवल समाचार पत्रों तक सीमित नहीं है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे व्यापक रूप प्रदान किया है। डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से समाचार कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता तक सही, निष्पक्ष और समयानुकूल जानकारी पहुंचाना है। आज सूचना और संचार के इस युग में समाचारों का प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और 24/7 समाचार चैनलों के लोगों तक हर प्रकार की खबर तुरंत पहुंच जाती है। ऐसे समय में सकारात्मक पत्रकारिता की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार गलत खबरों का भी प्रसारण किया जाता है, जो कि पत्रकारिता के मानकों के विरुद्ध है। लोग जल्दबाजी में खबर की पुष्टि किए बगैर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, जो कि आम जनता तक गलत मैसेज पहुंचता है। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाना भी है। सकारात्मक पत्रकारिता का अर्थ केवल अच्छी खबरें प्रकाशित करना नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ उनके समाधान, प्रेरणादायक प्रयासों और रचनात्मक कार्यों को भी सामने लाना है। यह पत्रकारिता समाज में आशा, जागरूकता और विश्वास का वातावरण निर्मित करती है। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है। आज अधिकांश समाचार अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार और विवादों पर केंद्रित रहते हैं। लगातार ऐसी खबरें देखने से लोगों में भय, तनाव और निराशा बढ़ सकती है। सकारात्मक पत्रकारिता समाज में संतुलन स्थापित करती है, लोगों को उम्मीद देती है और नकारात्मकता के बढ़ते प्रभाव को भी कम करती है। जब मीडिया लोगों की कहानियां प्रस्तुत करता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की, तो ये दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है और समाज में एक संदेश देती है। ऐसे समाचार युवाओं को सकारात्मक सोच और मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समाज में अनेक व्यक्ति और संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। सकारात्मक पत्रकारिता उन प्रयासों को पहचान दिलाती है और अधिक लोगों को ऐसे कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिक आवश्यक है। सकारात्मक पत्रकारिता केवल आलोचना नहीं करती, बल्कि समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करती है। इससे जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होता है। सकारात्मक पत्रकारिता विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग, भाईचारा और एकता की भावनाओं को भी मजबूत करती है। इससे समाज में सौहार्द और आपसी विश्वास बढ़ता है। सकारात्मक पत्रकारिता की विशेषताएं हैं सत्य और तथ्यपूरक रिपोर्टिंग, निष्पक्ष एवं जिम्मेदार दृष्टिकोण, समाधान केंद्रित समाचार, प्रेरणादायक और रचनात्मक विषयों पर ध्यान देना है, जनहित को प्राथमिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, सकारात्मक पत्रकारिता कहलाती है। सकारात्मक पत्रकारिता के सामने कई चुनौतियां भी हैं। आजकल टीआरपी और व्यूज बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में कई मीडिया संस्थान सनसनीखेज खबरों को अधिक महत्व देते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का प्रसार भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में पत्रकारों को सत्यता, नैतिकता और संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। सकारात्मक पत्रकारिता आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है। ये केवल समाचार देने का कार्य नहीं करती, बल्कि समाज में आशा, जागरूकता और परिवर्तन की भावनाओं को भी प्रोत्साहित करती है। यदि मीडिया समस्याओं के साथ साथ अनेक समाधान और प्रेरणादायक प्रयासों को भी प्रमुखता दे, तो राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इसलिए सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देना वर्तमान समय की मांग है। जीवन की विविधता और नए संसाधनों की प्रचुरता ने पत्रकारिता को बहुआयामी बना दिया है। आज पत्रकार अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार अपने लिए विशिष्ट क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में पूर्णतया विशिष्टीकरण की ओर अग्रसर है। पत्रकारिता और स्वतंत्रता का बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य की महिमा को कमजोर करने वाली हर प्रकार की पराधीनता के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाना ही पत्रकारिता का प्रमुख और मुख्य उद्देश्य है। जबकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो प्रसारित की जाती हैं और उसको जो गलत संदेश भी होते हैं, उसमें किसी भी बात की पुष्टि नहीं होती है और वो लोगों में एक गलत अवधारणा पैदा करती है और लोगों में विरोधाभास बढ़ता है। तो उस तरह की पत्रकारिता पर रोक लगना चाहिए और जो पत्रकारिता के मानक हैं और जो पत्रकारिता में पढ़ा गया है, उसी को प्रसारित करना चाहिए। सकारात्मक पत्रकारिता, पॉजिटिव जर्नलिज्म या कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म, वह दृष्टिकोण है जो समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ उनके समाधान, प्रगति, अवकाश और सकारात्मक पहलों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य केवल लोगों को निराशा या नकारात्मक देने के बजाय समाज में आशा, प्रेरणा और समाधान उन्मुख सोच को बढ़ावा देना है। सकारात्मक पत्रकारिता को मुख्य रूप से बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें केवल ये नहीं बताया जाता कि क्या गलत हो रहा है, बल्कि ये भी खोजा जाता है कि लोग, संस्थाएं या समुदाय उन समस्याओं से कैसे निपट रहे हैं और क्या बेहतर समाधान हो सकते हैं। संतुलित कवरेज करना। पारंपरिक पत्रकारिता अक्सर अपराध, विवाद और दुर्घटनाओं, नकारात्मक पर अधिक जोर देती है। सकारात्मक पत्रकारिता इस असंतुलन को दूर करती है और समाज में हो रही अच्छी घटनाओं और सफलताओं को भी प्रमुखता देती है। जनकल्याण और प्रेरणा। इसका उद्देश्य पाठकों या दर्शकों में समाचार थकान को कम करना है। जब लोग प्रेरित करने वाली कहानियां पढ़ते हैं, तो वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अधिक सक्रिय होते हैं। आलोचना का अभाव नहीं। सकारात्मक पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि कमियों या मुद्दों की अनदेखी की जाए। ये सच और पारदर्शिता को बनाए रखती है, लेकिन आलोचना को केवल एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत करती है। आजकल दुनिया भर के कई मीडिया संस्थान जैसे पॉजिटिव न्यूज़ इस विधा का उपयोग लोगों को वास्तविकता की एक पूर्ण तस्वीर दिखाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए कर रहे हैं। इसी तरह आज के दौर में पत्रकारिता को जिस तरह से समाचार पत्रों का, मीडिया का काम समाचार पहुंचाना है। मीडिया का जितना अधिकार आलोचना का है, उतना ही बड़ा दायित्व सकारात्मक खबरों को सामने लाने का भी है। बीते कई वर्षों से मीडिया के एक बड़े वर्ग ने राष्ट्र से जुड़े, समाज से जुड़े अभियानों को बढ़ चढ़कर अपनाया है। उसका सकारात्मक प्रभाव आज देश अनुभव कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से अगर देश के गांव और गरीब का जीवन, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, तो इसमें मीडिया के लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बल्कि मैं कहूँगा कि प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। आज भारत अगर डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अग्रणी है, तो लोक शिक्षा का जो अभियान मीडिया ने चलाया, उससे देश की मदद हुई। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि डिजिटल लेन देन में दुनिया का 40% कारोबार अकेला हिंदुस्तान करता है। मीडिया देश की विविधता और बहुलता को व्यक्त करते हुए उसमें एकत्व के सूत्र निकाल सकता है। ये देश डिबेट और डिस्कशन के माध्यमों से आगे बढ़ने वाली समृद्ध परिपाटी का देश है। हजारों वर्षों से हमने स्वस्थ बहस को, स्वस्थ आलोचना को, सही तर्क को सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी नीतियाँ बनाना एक पहलू है, लेकिन नीतियों को सफल बनाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो, समाज के सभी क्षेत्रों से सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है।
0: सकारात्मक पत्रकारिता आज की आवश्यकता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे श्री आलमगीर मुजाहिद खान के विचार। विविधा, ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
1: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
2: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
1: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध,
0: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
1: जागिए और जगाइए,
2: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
0: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
1: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
1: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
4: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
0: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: से नो टू प्लास्टिक।

सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं,
1: अमन के भाईचारे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज शेष सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण।

आज रात्रि 10 बजे श्रोता साथी जुड़ना ना भूले फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर के साथ 9:30 पर आप सुन सकेंगे सबरस। ये कार्यक्रम कलाकार होंगी गीतिका गुप्ता। रात्रि 8 बजे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। 7:31 पर हम आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रुचि शुक्ला के स्वर में भजन। श्रोताओं, ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से आज शेष सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कल सवेरे 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे आज का चिंतन। 6:35 पर आप सुन सकेंगे स्वास्थ्य संदेश। ये कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा दवा सेवन में सावधानियां। जानकारी आप तक पहुंचाएंगे असीम सक्सेना। श्री रामचरित मानस गान में भाग संख्या 344 आप सुन सकेंगे 6:45 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप तक पहुंचेगा सुबह 7:00। स्वर होंगे पूनम व साथियों के। फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे हम आप तक पहुंचाएंगे 7:31 पर। श्रोताओं, ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:19 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिसके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
2: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
1: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
3: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब जो कि भीड़ है तो करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
3: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
4: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
1: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
5: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जो यानी कि 4/6/2026 को इस जीरो में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम विस्तीर्ण गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार चल जा रहा है, और इस भ्रम को छोड़ को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो है उसको हम निरस्त करते हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देशभर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
6: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें 2 लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, और यहाँ से रोहित यादव, 2 लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश आए हैं, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
1: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेरा फेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
8: इतनी भी क्या जल्दी थी।
7: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना, और ये
8: मेरी गुड़िया की ना।
7: दादी
8: हाँ
7: आपके नाम
9: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
7: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या
9: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं रुचि शुक्ला के स्वर में भजन।

सुगम संगीत कार्यक्रम में सुनिए अंतिम भजन व्योम त्रिपाठी के स्वर में।

वी ओम त्रिपाठी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। सुगम संगीत कार्यक्रम था ये। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए रुचि शुक्ला और वी ओम त्रिपाठी के स्वर में लोकगीत, माफ कीजिएगा, भजन। सुगम संगीत, ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हम तक भेजिए अपना व्हाट्सएप संदेश। हमारा नंबर है 9410087876। कीजिए आप हमें इस नंबर पर अपना नाम, अपना एड्रेस और साथ ही लिख भेजिए अपना गीत। कार्यक्रम से हम जुड़े रहेंगे और साथ ही अब कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, परिचय इस फिल्म से।

आवाज होगी किशोर कुमार की और शब्द लिखे हैं गुलजार ने, संगीत है आरडी बर्मन का। कार्यक्रम का ये गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए। बोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर और ओम कुमार। चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राज दिलखुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक दिलखुश, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू दिलखुश, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल दिलखुश, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाड़कर, राही सरिता कवाड़कर, प्रिंस एकांश कवाड़कर, बदलापुर मुंबई से प्रणिता कवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, टुकटुक गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरिजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पू भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेम्मा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन, आरोही इशिका, अंजलि श्वेता वर्मा। मजनू का टीला से हमारे श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार गोट के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता गोट के, वैशाली गोट के, गायत्री गोट के और यगीश गोट के। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से हमारे श्रोता हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, शगन खनक, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा। भोईनापार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, कुमारी योगिता, कुमारी गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई साहू और त्रियांश कुमार साहू। रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी। वीरमगांव सिटी से अजीत मेहरा और सुनीता मेहरा। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक डिंगरा, विजय और अनुश्री डिंगरा। बिलाईगढ़ से देव डूकर, तुषार और अजय देव डूकर। डकिया केसरपुर मांसखेड़ा से हमारे श्रोता हैं एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, किरण, संतोषी प्रिया और छोटी गुड़िया चंचल। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से हमारे श्रोता जुड़े हैं दीपक सैनी, विजय श्री और अनुश्री। शिव मंदिर रुड़की से शीतल पांडे और नेहा पांडे। ग्राम गुरावा पोस्ट किलौद मध्य प्रदेश से नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मनुका बाई और इनके साथ हैं नंदनी बहन। पुराना तमलाव डुमराव से बलीउल्ला अंसारी, आसमान नाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी और फातिमा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर आदिबा। डोनी लोहारा से हमारी श्रोता हैं प्रभा रानी चमोरिया। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खंडवा से हैं राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन, उमा डोमीन और जानवी डोमीन। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव और सुरेश यादव के साथ हैं नरेंद्र यादव। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीना शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे श्रोता जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार और आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। सरगुर्जा मेन पार्ट से प्रभा डोमीन, प्रामिला डोमीन, आशा डोमीन, निशा डोमीन और पूरा ही डोमीन परिवार। तखतपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, अरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान।
कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार राय और हैप्पी राय दुबे हानिवादा गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी राय प्रांजल राय और शेरपुर कला गाजीपुर से हैं हमारे श्रोता अवधेश रॉय प्रीति रॉय और नवनीत रॉय आइए सुनते हैं आप सभी के लिए परिचय इस फिल्म का गीत आवाज है किशोर कुमार की

परिचय इस फिल्म का था ये गीत आपके रेडियो सेट पर। गीत का था चल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे अगला गीत वारिस फिल्म से। इस गीत के लिए शामिल हुए हैं आप सभी श्रोता साथी। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार।

वारिस फिल्म से इस गीत के लिए शामिल हुए हैं आप सभी श्रोता साथी, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा,

वारस फिल्म से इस गीत के लिए शामिल हुए हैं आप सभी श्रोता साथी। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा,

वर्मा। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा। सोनू रविराज, गुलशन लकी, ये श्रोता हैं हमारे जालंधर सिटी पंजाब से। एयरपोर्ट रोड वंद्रा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, लड्डू चौधरी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। बंडू लोहार पोपलघट से माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास और हरिभाव। संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी और नंदनी अंजलि। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और इनके साथ हैं आशिक हुसैन अंसारी। कासगंज से राधेश्याम शाक्या, ऋषभ जौली, मधु और इनके परिवार के सभी साथी। बोरखेड़ पित्रामर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूलत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूलत, चेतन नहाटा, दीक्षा कुश मूलत। बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी साथी। वार्ड नंबर एक पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता श्री। कोल्हापुर महाराष्ट्र से बबन चोंगले। मुंबई से अनुबड़ जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारी श्रोता जुड़ी हैं ममता डिंगिया और कुणाल डिंगिया। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद, तरुणा यादव और श्रीनिका के साथ हैं श्रीनिजा, ये श्रोता हैं हमारे जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। पीलीभीत ग्राम दोतपुर से धर्मेंद्र कुमार, राम खिलावन, बाबू राम राजपूत, दिव्यांशी, काव्या, शनि।

वारिस, इस फिल्म का था ये गीत। आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं के लिए करोला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया, शुएब खान नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरिजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राज जांधव, प्रशांत राजव

सिल, लकड़ बाजार खांडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगरांडे, विनीता और मोहम्मद हुसैन पवार। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, रोहिणी मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जंडाड़े। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए दादा, इस फिल्म का गीत। आवाज है यशुदास की और शब्द लिखे हैं कलवत जानी ने।

मोहंती सोपान और आशीष मोहरकेर। गांव फायर से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मुदीक्षक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। ये श्रोता साथी हमारे जुड़े हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना गुणाने, प्रणय और हीरामन चंदे। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रवैया रामटेके। छत्रपति

0: सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर।

के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया।

0: द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य

भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की

1 मई 2026 के दौरान भारत की सनअती पैदावार में सालाना बुनियाद पर 5.1% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल में सनअती पैदावार की शरह नमू 4.9% थी। मई के आदादोशुमार अप्रैल के आदादोशुमार के बाद जारी किए गए हैं, जो कि नए बुनियादी साल 2022-23 के तहत 8.9 तश्कील शुदा IIP सीरीज के पहले आदादोशुमार थे, जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त, वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जामे शमूलियत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ़ और समाजी मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम करने के से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मजकूरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए, जबकि मुखालफत में 41 वोट पड़े। वहीं 20 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से आवाम की सलामती, अमन अमान और नज्म नस्क को खतरा लाहक हो सकता हो, उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें

निजाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी काउंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निजाम के दरमियान राबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान की तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तजारत, सरमाकारी, सनती ताउन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इकतदी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया

सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलावा खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब

लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से। लोकगीतों में स्वर हैं गीतिका गुप्ता के।

इसी लोकगीत के साथ लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सबरस अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में कलाकार थी गीतिका कुमारी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर।

मिर्ची रेडियो साथी का नमस्कार। श्रोताओं, यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, करना चाहते हैं कार्यक्रम में अपनी फरमाइश, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0595-232-4326। कीजिए आप हमें कॉल, हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन का, ताकि हम कर सकें आपके फरमाइश की

0: ये मैं गया हूँ, आप यहीं तो आई बोलिए ना।
1: जी आपका फोन लगा है कार्यक्रम
0: हमारे
1: में,
0: सारे
1: बता
0: सब ठीक ठाक
1: जी, आपका फोन लगा है कार्यक्रम में, बताइए किस गीत की फरमाइश है।
0: फिल्म का नाम है अंदोलन, ठीक
1: जी
0: है, और गाने के बोले वो क्या, मैं कितने लोगों का बात मिली हो,
1: ठीक है
0: ठीक है, मैं कुछ लोगों नाम दे रही थी
1: जी, बिल्कुल
0: ये गाने गाने साहब हरी के पास जी है, ठकरवा साहब करके है, शहर और कुरान है, सबका गाइड पाए चावल है, इस्लाम में और तुम्हारा नब्बूबा पान वाले, हमारी लड़की दीपिका सगुन, पारस मनीषा और पम्मी और आप।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी रामपुर के हेलो रामपुर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए
0: जी नमस्ते
1: जी। नमस्ते, सुनिए अपनी
0: नमस्ते जी।
1: पसंद का गीत।

जी हाँ, और आप भी जहाँ कहीं हो झटपट उठाइए अपना मोबाइल और हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0595-232-4326।

0: हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन का और आपकी फरमाइशी गीत का। चलिए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: सर, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम में लखबुजपुरा सा बड़ी मस्जिद के पास से राजा हुसैन बोले मैम।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है मैम। आप सुनिए, आप कैसी है? आपके प्रोग्राम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए और अपनी भागीदारी हमें देने के लिए।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं हम खेती किसानी करते हैं और ऑटो भी चलाते हैं। वैसे तो मैं आज सुबह रामपुर गया था।

0: और राजू प्यार नगर दिल टूट जाए, कुछ नाम बोल दूँ?
1: जी, बिल्कुल।
0: मेरा भाई सईद हुसैन, छोटा भाई आदिल हुसैन और मकसूद हुसैन है, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी हैं, हाजी गफ्फर खान, लाल मोहम्मद अंसारी हैं, दोस्त आप और हम।
1: ठीक है, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए रजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक
1: और
0: यू मैम।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत आपकी पसंद का।

0: अकेले आप मेरी किन से बात हो रही है? आपका नाम क्या है? शुभ नाम क्या है मैडम जी?
1: जी मेरा नाम आकांक्षा है।
0: अच्छा आकांक्षा मैडम जी, आपसे मेरी कम से कम हो गई 3-4 महीने बाद बात हो गई है, क्योंकि एकदम मेरी हुई थी तो आप तो मुझे जानती होगी, मैं सचिव बात कर रहा हूँ फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से, कानपुर के पास में पड़ता है मेरा जिला है, तो आपसे मेरी बात होती रहती है। काफी दिन बाद आप अंतराल के बाद आई भाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम
1: जी।
0: और तो एक आपके इधर रामपुर का मौसम कैसा है?
1: जी रामपुर का मौसम बहुत गर्मी भरा है अभी इस समय, लेकिन हाँ उम्मीद है कि बहुत जल्द ही बरसात होगी। आप सुनाएं।
0: हाँ बरसात होगी क्योंकि उसमें जैसे, लेकिन जब बरसात भी होगी फिर ये बमीरी उड़ती हैं, जो कीड़ा मकोड़ा उड़ते हैं तब बहुत रोटी खाने में दिक्कत होती है, तो जब बमीरी उड़ती हैं तो कीड़े उड़ते हैं तो खाने में बहुत सबित्ते खाना खाना खाना चाहिए लाट से पहले, तो लगता है लेकिन जाए बरसते मौसम
1: तो
0: अभी तो धान की तैयारी चल रही है, हरी हरी पत्ते हरी फसलें तैयारी होने वाली हैं, अगर धान की खेती तो हरी भरी खेती हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक गाना सुनना चाहता था, मूवी का नाम है सोल्जर, गाने बोल रंग बल्ले बल्ले, और आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, और समीना परवीन है और अनुप कुमार भट्टाचार्य जी हैं और जितने तमाम सुनने वाले हैं आकाशवाणी रामपुर के रहो, क्यों आकाशवाणी रामपुर ने मैडम जी कहना चाहता हूँ, आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे कर चुकी है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात
0: करके। और 10 साल रह गई तो 70 हो जाएगी, 100 साल की आकाशवाणी होने में तो बहुत अच्छा लगेगा, क्यों 90 पूरे हो चुके हैं आकाशवाणी के अब।
1: जी ये सारा प्रेम आप सभी श्रोताओं के बल पर ही चला है और

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर मैम जी, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप बात कर रहा हूँ आपसे। मैम
0: जी कश्यप जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपको कॉल लगा रहे थे, कॉल लग गई तो और भी अच्छे हो गए। मैं
0: जी बहुत अच्छी बात है। घर परिवार
1: जी
0: में सब कैसे हैं।
1: सब कुशल मंगल है मैम, और हमारे यहाँ गर्मी बहुत है मैम।
0: जी, ये तो पूरे भारत देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई है इस समय पर।
1: जी मैम,
0: जी बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी चलाता हूँ और खेती बाड़ी भी करता हूँ, और आपके प्रोग्राम निरंतर सुनता रहता हूँ मोबाइल ऐप के जरिए। मैम
0: बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हैं हमारे सभी श्रोताओं से।
1: मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी रामपुर सुनते रहें, इससे अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, खेतों के मामले में भी मिलती है, और ड्राइविंग जो करते हैं लोग उनके मामले में भी मिलती है, और बहुत मनोरंजन होता है, अच्छे अच्छे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: जी कश्यप जी, अच्छा तो आप ड्राइविंग करते हैं, तो आप सभी जो रोड के नियम पालन होते हैं वो करते हैं।
1: बिल्कुल करते हैं मैम, फोन अगर आता है ना हमारे घर के आते समय तो
0: जी
1: हम गाड़ी रोक के ही बात करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे सभी सुनने वालों को।
1: बस मैम सावधानी बरते, मोटर मतलब कोई भी वाहन चलाते समय जैसे किसी का फोन आए तो गाड़ी रोक के ही बात करें, और एयरफोन लगा लेते हैं, कुछ लोग एयरफोन भी नहीं लगाने चाहिए और गाड़ी तेज भी नहीं चलानी चाहिए मैम।
0: जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि ट्रैफिक सिग्नल का इंतज़ार करें।
1: बिल्कुल मैम,
0: जी कौन सा गीत सुनेंगे आज, आपका कॉल लगा है तो।
1: फिल्म का नाम है जीत, जीत के बोला तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा,
0: क्या
1: कुछ
0: बात
1: नाम
0: है।
1: है मैम। जयपाल यादव जी हैं, और दानिश सिद्दीकी जी हैं, और ये मकसूद हुसैन जी हैं, और मेरी हमारी वाइफ है शीतल कश्यप, जो इस समय आपको मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम सुन रही है मैम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी का भी और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, और गीत रहा आपके रेडियो सेट पर।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: हेलो रामपुर, हेलो रामपुर
1: जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन से श्रोता साथी बात कर रहे हैं?
1: जी, मेरा नाम नईम मलिक है। मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गांव से हमारे गांव पड़ते हैं मैडम जी।
0: अच्छा जी, बहुत खूबसूरत जगह से आप बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप?
1: बस ऊपर वाले का प्रोग्राम होने चाहिए और आपकी बस मैं अच्छा हूँ। आपके प्रोग्राम हम सुनते हैं, फरमाइश प्रोग्राम जब हम रात के मोबाइल ऐप के जरिए सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गर्मी है, 25-26 डिग्री के आसपास गर्मी है, लेकिन जब हम रामपुर के प्रोग्राम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और आपका जो बोलने का अंदाज है ना मैडम जी, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपका कार्यक्रम में कॉल लगा है, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये खुददार फिल्म का नाम है, गाने की बोले वो तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है।
0: ठीक है
1: जी जी मैडम जी,
0: इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं?
1: बस अपने आसपास माहौल का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो नशा मुक्त है इससे दूर रहें और बुजुर्ग ज्यादा इज्जत करें और साथ ही साथ औरत को भी इज्जत करें।
0: जी, बहुत सुंदर संदेश आपका। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद। गुड नाइट जी।
0: गुड नाइट।

0: आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम। हेलो रामपुर जी।
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार,
1: मैं अबराम बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप?
1: जिला फल।
0: हेलो जी, बोलिए।
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा जी।
1: गांव धनेटा सूती है मेरा, इनके पास में।
0: आज आपका फोन लगा है, बताइए।

0: इस वजह से हम और इस पे लगा देते हैं फिर।
1: अच्छा अच्छा जब
0: आपसे नहीं बोलता हूँ बहुत गुस्सा आता है।
1: जी हम समझ सकते हैं,
0: ना अच्छा लगते हैं प्रोग्राम आपसे, पल भर भी नहीं रहते हम आपके प्रोग्राम।
1: जी हम समझ सकते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी टेक्निकल टीम और अधिकारियों तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी, आगे से ख्याल भी रखा जाएगा। इसके अलावा FM पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। जी न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़े रह सकते हैं और काम करते करते सुन सकते हैं। जी जी जी जी ठीक है, चलिए बताइए, आज आपका फ़ोन लगा है, जैसे कि आपने बताया कि हम आपको सुनवा दें सिर्फ तुम फिल्म का गीत, और कुछ कहना चाहते हैं आप?
0: बस नाम लेना चाहते हैं
1: जी, बताइए
0: अपने परिवार का, परिवार हमारा बैठ के सुन लेना प्रोग्राम आपके।
1: बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद और आभार आपका कि आप हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत।
0: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो रामपुर जी
1: आदा मैं।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: हाँ मैं ठकुरवा से बात कर रही हूँ।
0: जी
1: मैम कहते हैं कि भमरे तो करते हैं कलियों की चोरी, लेकिन दिल को चुराना काम है मेरा। भमरे तो करते हैं कलियों की चोरी, लेकिन दिल को चुराना काम है मेरा। हर शख्स को देती हूँ मोहब्बत की कली, यही तो इनाम है मेरा। और चांद सितारे करते हैं मुझसे बातें, इसीलिए सुषमा परवीन नाम है मेरा।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, और बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी तरह ही खूबसूरत है।
1: थैंक यू मैम, लेकिन आप भी बहुत खूबसूरत है, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है मैम।
0: बहुत शुक्रिया आपका। शमा जी बताइए कैसी हैं आप।
1: मैं बहुत ही अच्छी हूँ और 10 बजे से आपसे जुड़ी हूँ और आपकी काबिले तारीफ है मैम।
0: बहुत शुक्रिया आपका। शमा जी क्या करती हैं आप।
1: मैम मैं भी एक आपके जैसी रेडियो की होस्ट हूँ और मैं भी फोन ही प्रोग्राम का शो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है श्रोताओं से बात
0: अच्छा
1: करना।
0: जी, शमा जी कौन कौन है आपके घर परिवार में।
1: मैम मेरे 5 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं और मम्मी पापा भाभी भतीजी भतीजा, बहुत बड़ा परिवार है मेरा।
0: बहुत अच्छी बात है, तो यानी कि आप संयुक्त परिवार में रहती हैं। अच्छा, आजकल ये बहुत देखा गया है कि लोग संयुक्त परिवार के जो है वो रुझान उनका कम होता है और एकल परिवार की तरफ ज़्यादा होता है। क्या कहना चाहेंगी आप इस पर।
1: मैम एकल परिवार में वो मजा नहीं है जो फैमिली के साथ रहने में।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहकर ही हम अपनों का ख्याल भी रख पाते हैं और जो हमारे अपने होते हैं हर जगह हमारे साथ खड़े हो पाते हैं, लेकिन एकल परिवार में हम सिर्फ अकेले रह जाते हैं। जी बताइए शमा जी, कौन सा गीत सुनेंगी आज कार्यक्रम में।
1: मैम मैं रेडियो का शो करती हूँ, अगर श्रोता मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है रेडियो DFC।
0: शमा जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगी। ठीक है शम
1: आपसे
0: जी बताइए।
1: कहते हैं कि गुलाबों में तुम हमको गुलाब लगती हो, गुलाबों में तुम हमको गुलाब लगती हो, शराबों में तुम हमको शराब लगती हो, और बैठी रहो बस मेरी निगाहों के सामने, प्यारी तुम मुझको बेहिसाब लगती हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शमा जी आपका इस सुंदर सी और खूबसूरत सी शायरी के लिए। हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह बहुत सुंदर शायरियाँ और बहुत सुंदर जो बातें हैं वो करती रहें हमेशा और हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी रहें। बताइए, सुनवा रहे हैं आप ये गीत आपको, आपके लिए।
1: आकाशवाणी रामपुर से ही सीखा है, आकाशवाणी रामपुर की देन है मैम।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए आपका गीत आपके रेडियो सेट पर।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।

0: हेलो रामपुर
1: हाँ जी, हेलो रामपुर।
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: नाम बताइए।
1: जिला अमरोहा नई बस्ती पति खाकर से बाहर बोला।
0: जी सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं मैम। आपका प्रोग्राम सुनने में छत पे बैठे हुए थे और हवा कुछ ठंडी ठंडी लग रही है, तो आपका प्रोग्राम सुनने में तो अच्छा लग गया है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: सभी श्रोता आप बातचीत करते हैं तो अच्छा लग रहा है।
0: जी। सिद्दीकी साहब, क्या करते हैं आप?
1: वो अपने चांदी के वर्क का काम है, हर तरह का काम होता है, तो आकाशवाणी से बराबर जुड़े होते हैं, बराबर में रहकर मैं सुनते सुनते हैं।
0: अच्छा, सिद्दीकी साहब, आप कितने समय से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रामपुर से?
1: देखिए जहाँ तक समय की आपने बात की है, कम से कम 20-25 साल हो।
0: अरे वाह, एक लंबा समय हो
1: हाँ,
0: गया ये।
1: काफी हो गया है और प्रोग्राम जितने भी परिवर्तन इनमें हुए हैं वो ठीक ठाक है, अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं।
0: जी, और हम तो कहते हैं कि सिर्फ यदि परिवर्तन होते हैं तो अच्छाइयाँ ही नहीं, सिर्फ खामियाँ भी ज़रूर बताएं।
1: हाँ वो कहीं कुछ कमी होगी तो जरूर बताएंगे, आज नजर में कहीं कमी नहीं आई है। बाकी बिल्कुल जो परिवर्तन किया गया प्रोग्राम है तो अच्छा लग रहा है। तो
0: जी
1: जो
0: जी
1: सुबह का प्रोग्राम है अमृत गीत जो प्रोग्राम है सुबह 10 बजे आता है, और वो भी अगर ईमेल पे और व्हाट्सएप पे कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें जो है वहाँ पे अमरोहा करना चिट्ठा नहीं मिल रही, तो हम उस प्रोग्राम में चिट्ठा भी नहीं भेज रहे, और जो ईमेल का प्रोग्राम है और शाम को जो 8 बजे का प्रोग्राम आ रहा है उसमें ईमेल और व्हाट्सएप बराबर कर रहे हैं, चिट्ठियाँ ना मिलने की वजह से चिट्ठियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। तो वो
0: अच्छा।
1: सुबह का जो प्रोग्राम है अनुरोध तक जो आ रहा है सुबह 10 से 10:30 तक, तो उसमें काफी समय हो गया, चिट्ठी भी पहले भेजी थी लेकिन अब शामिल नहीं हो रही, और चिट्ठी जैसे मिलेंगी तो बराबर डालने का भी।
0: अच्छा, चलिए सिद्दीकी जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम रहेगा देश के गुलाम, गाने के बोल देंगे सारे गिले शिकवे भुला के कहो, देवी कहना है मुस्कुरा के कहो, ये गाने के बोल रहे हैं घर पे कुछ नहीं थे।
0: जी बताइए।
1: जैसे पहले तो मैंने 3 मोहल्ले से हैं, इरफान खान साहब, इकराम प्रेमी साहब हैं, और नवाबुद्दीन हैं, और मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बेटी अलीसा सिद्दीकी, सुल्तान सिद्दीकी, नादिया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुबेद चौहान, अतीक तौफीक, दानी सिद्दीकी, मेजर खान से, और रफत मोहन है रामपुर से, और इकराम तरीन साहब रामपुर से, और दूलापुर सब्जी है।
0: अच्छा, चलिए फिर सुनवाते हैं आपको ये गीत आपकी पसंद का और आपके सभी साथियों के लिए।
1: धन्यवाद मैम। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर, नमस्कार।
0: जी।
1: मैं
0: नमस्कार
1: वारसी किला सिंदौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी बात कर रहा हूँ।
0: जी। जीशान वारसी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा था। आज जितने भी दोस्तों की कॉल लगी है, सबने एक से बढ़कर एक गीत सुने हैं। प्रोग्राम सुनकर बहुत ही आनंद आ रहा है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। ये कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं के लिए है और आप सभी श्रोताओं से ही बनता है।
1: जी बिल्कुल।

0: जीशान जी कॉल लगा है, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मुझे गीत सुनना है साजन मूवी का, और गीत के बोले मेरा दिल भी कितना पागल है, और ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे हरदिल अजीज फ्रेंड ने करूला मुरादाबाद से अयुब खान, और बाकी आकाशवाणी रामपुर को जो लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए।
0: जी ठीक है जीशान जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद
1: जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी,
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी श्रोता साथी सुन रहे थे फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्ष

0: पक्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशंस की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशंस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishishth Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishishth Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishishth Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishishth Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। कल सवेरे 5:52 पर इन्हीं मीटर्स पर हम पुनः उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।